नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज है शुक्रवार, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 9 अक्टूबर 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने से बिना किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार सुनेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला तथा बाल विकास विभाग के दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इसमें सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किए जा रहे विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला में ये दूसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ये सम्मेलन कल शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी परिषद की सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने

0: कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने कहा है कि भारत एक संपूर्ण दूरसंचार मूल्य श्रृंखला की ओर अग्रसर है और नियमों, उपकरणों तथा नवाचार को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 10वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान उच्च स्तरीय सीईओ गोलमेज सम्मेलन में श्री सिंधिया ने देश के विस्तारित डिजिटल तंत्र और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार और आर्थिक विकास में दूरसंचार की बढ़ती भूमिका की चर्चा की। सरकार ने गैर अनुसूचित कैंसर की दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लगाए जाने वाले लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। यह अधिकतम खुदरा मूल्य एमआरपी पर 30% तक रहेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आशा व्यक्त की है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी, जिससे कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2026 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसरशिप या PhD के लिए वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर है। परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA को अप्रैल से सितंबर के बीच भारत के जैविक संसाधनों का उपयोग करने वालों से 9,68,00,000 रुपए मिल सकते हैं। ये राशि पहुंच और लाभ साझाकरण यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि कुल प्राप्त राशि में से 9,56,00,000 रुपए विभिन्न क्षेत्रों में जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए प्राप्त हुए हैं। भारत ने पिछले कुछ दिनों में आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले में कई नागरिकों की मौत हुई है तथा कई घायल हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना पूरी तरह अस्वीकार्य है। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के पुणे स्थित उनके फार्म हाउस नानाजी वाडी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशिष्ट योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। खेलों में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। उधर पीवी सिंधु आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की रीको गुंजी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
2: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। एक बड़े महान संत अपने हाइकू छंद में लिखते हैं, द्वेष से बचो, लवण दूर, दूध ना फटे। इसका अर्थ है कि हमें बुरा

भाइयों से द्वेष से बचना चाहिए, जैसे दूध अगर छार से या नींबू से दूर रखा है तो वो फटेगा नहीं। वैसे उन्होंने यह भी कहा है कि पाप से बचना भी तो पुण्य ही है।

हम सुन रहे थे हरिओम शरण की आवाज में। हरिओम शरण के द्वारा ही लिखे गए इस गीत को मुरली मनोहर स्वरूप ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज है दिनांक 9 अक्टूबर 2026, दिन है शुक्रवार। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोका के अंतर्गत। सुबह के 6:45 पर एवं शाम के 6:45 पर सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आज इसका 9वां भाग हम सुन सकेंगे आमंत्रित कलाकार गायक एवं संगीतकार पद्मश्री शेखर सेन, संवादिका ममता सिंह और प्रस्तुति है अनुश्री पाठक की। सुबह 7 बजे का समय होगा भूले बिसरे गीत का और 7:30 पर सुनेंगे हम कार्यक्रम हम है राही प्यार के। 8 बजे का समय होगा समाचार प्रभात का। सुबह के 8:15 पर सुनेंगे कार्यक्रम वंदे मातरम एक जय घोष, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। इसका 49वां भाग आज हम

सुन सकेंगे। 8:30 पर चित्रलोक, सुबह के 9:30 पर एवं रात्रि के 9:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार, जो कि केंद्रित होगा संगीतकार पार्श्व गायक रविंद्र जैन पर। प्रस्तुति रमेश गोखले। सुबह के 10 खुलेगा पिटारा हेलो फरमाइश, संवादक है मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी। 11 सुनेंगे रंग तरंग और 12 का समय होगा हिंदी समाचार का। 12:05 पर खुलेगी यादों की महफिल और दिन के ठीक 1 सुनेंगे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। 2:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। 3 का समय होगा श्रोताओं और सखियों के पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। 4 खुलेगा पिटारा गीतों भरी कहानी का, कहानी यादों की तपिश, इसका दूसरा भाग आज हम सुन सकेंगे। लेखिका हैं ममता सिंह, स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। शाम 5 का समय होगा छाया गीत का। 5:30 पर तराने नए पुराने, 6 का समय होगा समाचार का और 6:35 पर सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन। 7 फौजी भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम जयमाला और 7:45 पर सुनेंगे इंद्रधनुष गुलदस्ता। 8 हवा महल नाटिका आम्र मंजरी, लेखक हैं राममूर्ति चतुर्वेदी, निर्देशक रामा बाबा। 8:15 पर चित्रलोक कार्यक्रम हम सुनेंगे। 9 आपके लिए सुनेंगे यह कार्यक्रम। 10 छाया गीत और 10:30 पर ढलती जाए रात। 11 का समय होगा कार्यक्रम रंग तरंग का। 8 आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम श्री रामचरितमानस का, सुनते हैं 336वां भाग।

रावण का यज्ञ विध्वंस करने के लिए वानर भालू आ पहुंचे हैं, किंतु अपने उत्पात से जब वे उसे वेदी से नहीं उठा पाए तो उसके शरीर पर अपने भीमकाय दांतों और लातों का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, किंतु उसका ध्यान तब भी भंग नहीं हुआ। वानर भालुओं ने तब वहां की स्त्रियों के केश पकड़कर महल से बाहर घसीटना आरंभ किया। रावण अब अपना धैर्य खो बैठा।

और उठकर वानरों के पैर पकड़ पकड़ कर उन्हें धरती पर पटकने लगा, किंतु इस प्रकार उसका यज्ञ तो भंग हो ही गया। रावण अपनी सेना फिर से सजाकर युद्ध भूमि की ओर अग्रसर होता है। अब शकुन रूप में उसके सिर पर गीद मंडरा रहे हैं, किंतु इसकी अनदेखी करके वह युद्ध का डंका बजवाता है और एक बार फिर घमासान युद्ध होने लगता है। युद्ध के बाद युद्ध,

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की नौवीं कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। एक समय था जब भजन से दिन की शुरुआत होती थी और एक ऐसा स्वर हम सुनते थे, वो है अनुराग सेन। और अनुराग सेन के नाम से एक भजन बहुत प्रसिद्ध हुआ था, वृंदावन मत जाना। इस भजन को सुनते हैं तो हम सब अभिभूत होते हैं। अब ज्यादा हम नहीं बोलेंगे, शेखर दादा से अनुरोध कर रहे हैं कि वो जो ओरे पथिकुआ तुम जइयो मत वृंदावन की ओर, अपनी इस रचना के बारे में बताइए और इस रचना प्रक्रिया के बारे में बताइए और सुना दीजिए प्लीज।
2: ये दरअसल मेरे पहले भजन के एल्बम से समर्पण उसका नाम था
1: जी,
2: और उसमें से था। मैंने दरअसल विद्यापति जी का एक मैथिली में गीत सुना था, अब वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। उसमें एक व्याज निंदा, व्याज स्तुति कहते हैं जब आप किसी की निंदा करते हैं
1: जी,
2: जो साहित्यिक हो तो उसको हम कहते हैं व्याज स्तुति, और जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसको हम कहते हैं व्याज निंदा। जैसे जब कोई पत्नी

0: अपने पति से कहती है अरे आप तो बहुत खराब हैं, तो इसका मतलब है वो कहना चाह रही कि आप बहुत अच्छे हैं, पर मैं खराब इसलिए बोल रही हूँ ताकि मेरी नजर ना लग जाए।
1: क्या बात है।
0: या हम किसी की तारीफ करते हैं उसमें बुराई छुपी होती है, कि एक लड़का देर से आया तो टीचर कहता है कि सी द मोस्ट पंक्चुअल बॉय ऑफ द क्लास।
1: हाँ
0: एक्चुअली वो बोल तो रहे हैं कि पंक्चुअल है, पर वो
1: हाँ
0: बता रहे हैं कि बेटा तुम पंक्चुअल नहीं हो, तुम 20 मिनट
1: नहीं,
0: देर से आए।
1: जी
0: तो वैसे ही इस भजन में ये था कि वृंदावन के बाहर एक साधु बैठा हुआ है और हर एक वृंदावन जाने वाले से कह रहा है कि और कोई भी भूल करना पर वृंदावन मत कभी जाना,
1: जी
0: और अगर कभी चले गए तो कृष्ण से मित्रता ना करना, अगर मित्र भी हो गए तो फिर उनकी बांसुरी ना सुनना। तो इस तरह का ही वो पूरा प्रसंग
1: जी
0: है जो हर कड़ी में प्रश्न
1: जी
0: उछालता
1: जी
0: है। तो ये मैं आपको सुना रहा हूँ, इसमें राग मांड है
1: जी
0: जो हमारे राजस्थान की लोक परंपरा से निकल करके शास्त्रीय संगीत में आए।

0: वाह, बहुत बढ़िया। बस ऐसे लग रहा है कि मंत्रमुग्ध कर दिया पूरे विविध भारती के स्टूडियो को और यहाँ मौजूद लोगों को। शेखर दादा, अब बताइए इस कड़ी में
1: मैं
0: और
1: चाह
0: क्या
1: रहा हूं कि
0: सुनूंगा।
1: एक और महान गायक जिनको हम मन्ना दा के नाम से जानते हैं,
0: जी
1: एक्चुअली उनका भी नाम मन्ना दा जो है, ये उनके घर का नाम है मन्ना, क्योंकि बंगला में इस तरह के नाम, मन्ना जैसे हमारे यहाँ मुन्ना कहते हैं, उस
0: जी
1: तरह का नाम है। उनका जो मूल नाम था वो था प्रबोध चंद्र डे,
0: जी जी
1: और मन्ना दा के नाम से

या मन्ना डे के नाम से वो प्रसिद्ध हुए, और उनकी एक रचना मैं चाहता हूँ फिल्म वसंत बहार की आप सुने, बहुत ही सुंदर, भय भंजना वंदना सुन हमारी।

0: अब इसके बाद दादा क्या सुनवाएंगे हमारे श्रोताओं?
1: मैं चाह रहा था कि जो भक्ति संगीत में एक और अद्भुत परंपरा है
0: जी,
1: और वो है प्रार्थना की। और इसके लिए जो सबसे अच्छा उदाहरण हमारे पास है वो भी एक अमर गीत है, 1957 की एक फिल्म दो आंखें 12 हाथ, और उसमें लता जी और साथियों के स्वर में ये एक अमर रचना है वी शांताराम जी की फिल्म, भरत व्यास जी के शब्द और वसंत देसाई जी का संगीत। मैं चाहूंगा हम लोग एक बार फिर से इस प्रार्थना में अपने भी स्वर जोड़ लें
0: जी।
1: ऐ मालिक तेरे बंदे हम,

0: अब इस गीत के बाद संगीत सरिता के इस कड़ी को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। तबला संगत आशीष बिस्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। भूले बिस्तरे गीत प्रस्तुत होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में।

हम सुन रहे थे यह गीत फिल्म सुबह का तारा से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, गीतकार नूर लखनवी और संगीतकार सी रामचंद्र। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में, जिसमें आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म शबाब से यह गीत है, जिसे लिखा है शकील बदायूनी ने और संगीतकार है नौशाद।

0: आइए सुनते हैं झुमरू फिल्म से यह गीत किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल और किशोर कुमार के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत।
1: বাইকুম তাড়া তুণি যদুর মাস্টার ছছর বাড়ি রে লগম ঝমা ঝম পা পিছলে আলু দম আলু দম আলু দম ডিং পটা পটা ডিং ডি পাকো
2: এই জমে রে জমে।

0: घबराहट कोई जाती है तुझे, हर रे रे हंसी आती है मुझे।
1: मेरी उल्फत ओ सनम बड़ी मुश्किल में फंसी, मैं कहूँ

0: 人报告。
1: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
2: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
1: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
2: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं।

0: अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं आर बार फिल्म से गीता दत्त की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी के द्वारा लिखा गया और ओपी नैयर के संगीत के साथ यह गीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं अगला गीत कार्यक्रम भोले बिसरे गीत में, नौकरी फिल्म से। इसे गाया है गीता दत्त ने, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार सलिल चौधरी।
1: लगी जो टक्कर, अरे खा गए चक्कर।

0: आवाज में इस गीत को लिखा कवि प्रदीप ने और संगीतबद्ध किया सी रामचंद्र ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
4: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
3: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
5: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में सुनते हैं अगला गीत।

0: हम सुन रहे थे ये गीत सोने की चिड़िया फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, गीतकार साहिर लुधियानवी के बोल और संगीतबद्ध किया ओपी नैयर ने।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100-100 साल की जिंदगी होती है।
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत, मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
0: और कार्यक्रम भूले बिसरे गीत यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम सुनेंगे कार्यक्रम हम है राही प्यार के बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हम है राही प्यार के में। शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के का इस गीत के साथ, जिसे गाया है जसपाल सिंह और हेमलता ने। हमने इसे लिया है नदिया के पार फिल्म से, जिसके गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार के। आइए सुनते हैं ये अगला गीत जिसे गाया है आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह और साथ दिया है साथियों ने। श्याम तेरे कितने नाम फिल्म से यह गीत है। अनजान ने इसे लिखा है और संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हम हैं राही प्यार के। आइए सुनते हैं अगला गीत गोपाल कृष्णा फिल्म से, जिस गीत को लिखा है और संगीतबद्ध किया है रविंद्र जैन ने, यशुदास और हेमलता की आवाजें।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ

0: रात कहाँ थे तुम यार? अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है, तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
3: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
2: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
3: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
2: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
4: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
2: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
5: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
2: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हम है राही प्यार के।

हम सुन रहे थे ये गीत राजा हरिश्चंद्र फिल्म से महेंद्र कपूर, हिमलता और साथियों की आवाज में। इसके गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। कार्यक्रम हम है राही प्यार की यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजने वाले हैं और अब हम सुनेंगे थोड़ी ही देर में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% की गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा और असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास विभाग क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल है। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके साथ ही बेहतर कार्य प्रणालियों को साझा करने, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली चुनौतियों का समाधान तलाशने और सुशासन तथा सेवा वितरण में सुधार के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर सहमति बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारों के नए दौर का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिरफ्तारी प्रावधानों को हटाने, अपराध की श्रेणी से बाहर करने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी सिफारिशों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। श्री मोदी ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय, अनुपालन लागत में कमी, स्वचालित धन वापसी और विश्वास आधारित प्रशासन है। उन्होंने कहा कि ये सुधार जीएसटी को अधिक कुशल, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों के अनुरूप किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के देश सेवा मंत्र के साथ सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा निरंतर जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल के साथ आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी सोच से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रतिबद्धता लोगों के जीवन में

0: सकारात्मक बदलाव ला रही है। आज हम विशेष श्रृंखला में एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि कैसे त्रिपुरा में आकांक्षी जिलों और जीवंत गांवों की योजनाओं के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कार्य रूप में परिवर्तित किया गया है।
1: नीति आयोग के आकांक्षी जिला अभियान के तहत त्रिपुरा के धलाई जिले में उल्लेखनीय बदलाव आया है। मातृ स्वास्थ्य सेवाओं, प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के सीखने के स्तर, सूक्ष्म सिंचाई और ग्रामीण सड़कों की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान देने से जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास में लगातार सुधार हुआ है। वास्तविक समय में प्रदर्शन की रैंकिंग और बेहतर काम के लिए प्रोत्साहन ने धलाई को देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल होने में सहायता की है। ये इस बात का उदाहरण है कि आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बनाने और स्थानीय संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने से जनजातियों, पिछड़े क्षेत्रों में भी विकास को गति दी जा सकती है। बांग्लादेश के साथ त्रिपुरा की 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर आकांक्षी जिला अभियान सीमावर्ती गांवों की तस्वीर बदल रहा है। आधुनिक डिजिटल नेटवर्क, हर मौसम में उपयोग होने वाली सड़कें, पाइप से जलापूर्ति और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं से बुनियादी ढांचे की कमियां दूर हो रही हैं। स्थानीय हथकरघा, पर्यावरण, पर्यटन और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलने से कारोबार के नए अवसर मिल रहे हैं और पलायन रोकने में सहायता मिल रही है। इससे सीमावर्ती समुदाय मजबूत हो रहे हैं। ऋषिमुख पंचायत समिति के अध्यक्ष हमें बताते हैं,
2: दूर दूराज गांव में भी आज 4G 5G मोबाइल पूरी सेवा, हर मौसम में चलने के लिए पक्के सड़कें, पीने का पानी, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर, पक्के शौचालय, सौर विद्युत, गांव के युवा लोगों के लिए स्किल इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण और गांव की महिला लोगों के लिए रसोई का गैस उपलब्ध कराने जैसा काम हो रहा है। मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के माध्यम से स्थानीय सीमांत पर्यटन और हैंडलूम आधारित समूहों को भी सहायता देने जैसा काम हो रहा है।
1: ये दोनों केंद्रीय योजनाएं मिलकर त्रिपुरा के दूरदराज के अंदरूनी इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास की खाई को पाट रही हैं। एक ओर पिछड़े इलाकों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है तो दूसरी ओर सीमावर्ती गाँव में कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दूरदराज के गाँवों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गाँवों तक हर नागरिक राज्य की विकास यात्रा में भागीदार बने। अगरतला से आदित्य दत्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रांची में गढ़खटंगा में भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। इनमें प्रशासनिक भवन, बिरसा मुंडा बहुउद्देशीय हॉल, जयपाल सिंह मुंडा खेल परिसर और अगली पीढ़ी के जैव प्रजनन सुविधा केंद्र शामिल हैं। उन्होंने संस्थान में एक नए अतिथि गृह की आधारशिला भी रखी। इस परियोजना पर 119 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ प्रतिशत की सीमा तय कर दी है। ये सीमा अधिकतम खुदरा मूल्य पर 30% तक रहेगी। एक रिपोर्ट।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय को आशा है कि इससे दवाओं की कीमतों में 70% तक की कमी आएगी और कैंसर रोगियों को सालाना 2,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। ये नया निर्णय लाभ प्रतिशत सीमित करने, गैर अनुसूचित कैंसर दवाओं को भी मूल संरक्षण प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति द्वारा शामिल की जाने वाली दवाओं की सूची को अंतिम रूप देने के बाद राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण आधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा। मंत्रालय ने कहा कि नई सीमा अत्यधिक मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाएगी और रोगियों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करेगी। इससे पहले फरवरी 2019 में सरकार के निर्देश अनुसार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधिकरण ने 42 चुनिंदा गैर सूचीबद्ध कैंसर की दवाओं पर लाभ प्रतिशत सीमित किया था, जिससे उन दवाओं के एमआरपी में 91% तक की कमी आई थी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना शुरू हो गई है। इनमें पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर, तमिलनाडु की मदुरा

0: अनंतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टन चावड़ी विधानसभा सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट भी शामिल है। इन सीट पर मतदान मंगलवार को हुआ था। पुदुचेरी में थट्टन चावड़ी विधानसभा में डाक मतपत्रों की गिनती से मतगणना की शुरुआत हुई। इसके बाद सवेरे 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। शुरुआती रुझान सवेरे 9:30 बजे तक आने की संभावना है। उधर तमिलनाडु में मदुरंतकम विधानसभा क्षेत्र में 27 तथा धारापुरम विधानसभा सीट पर 30 उम्मीदवार मैदान में हैं। टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार के लिए पहला उपचुनाव है। हुती विद्रोहियों ने कल सऊदी अरब पर मिसाइल हमले करने का दावा किया है। इन हमलों में रियाद का किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नजरान हवाई अड्डा और खमिस मुशैत स्थित एक एयरबेस निशाने पर थे। एक रिपोर्ट।
1: हुती विद्रोहियों ने कर्मचारियों को सऊदी अरब की तेल सुविधाओं और हवाई अड्डों से दूर रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन ठिकानों को संभावित निशाना बताया। इसके जवाब में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। इन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा सहित कई विमानन कंपनियों ने रियाद के लिए अपनी उड़ानें अस्थायी रूप से रोक दी हैं। संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, मिस्र, कुवैत और बहरीन ने इन हमलों की निंदा की है। इस बीच रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर घरों के अंदर रहने की अपील की है। प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र की 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा भी चालू है। इसका टोल फ्री नंबर है 800-2471-234। दुबई से मनीष शिवा झोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने 8 प्रमुख प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग कंपनियों के लिए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इनमें भारतीय कंपनियां इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो और एससीएल के अलावा कॉग्निजेंट, कैंप जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब शामिल हैं। अमेरिका के श्रम मंत्री कीत सोडरलिंग ने कहा कि इन कंपनियों के खिलाफ जारी संघीय जांच के बाद यह कदम उठाया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका केवल असाधारण प्रतिभा वाले विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवर्जन कार्यक्रमों का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विदेशी पेशेवरों के आवेदनों पर विचार करते समय आवर्जन अधिकारियों को 2 कसौटियों पर ध्यान देना होगा। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार महाराष्ट्र में पुणे के फार्म हाउस नानाची वाड़ी में रात करीब 11:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाना पाटेकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर के विशेष योगदान को पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। नाना पाटेकर का पार्थिव शरीर पुणे हवाई अड्डे पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के दौरान फिल्म जगत की कई हस्तियां भी उपस्थित थीं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच 7:00 बजे से शुरू होगा। 12 श्रृंखला में 1-0 से आगे है। आर्कटिक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु का सामना थाईलैंड की रच्चानोक इंतानोन से होगा। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में कल जापान की रीको गुंजी को हराया था। मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रह सकती है। उत्तराखंड में आज देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की आशंका है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिए गए वक्तव्य को सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी का आह्वान, साइबर सुरक्षा पर साथ आएं, दुनिया के देश ठगी होने से पहले ही रोकने वाला तंत्र बनाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, डीप फेक रोकने के लिए साथ आएं देश और कंपनियां। अमर उजाला के अनुसार मोदी बोले, 5,00,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी रोकी तभी हो रहा मेरा विरोध। पंजाब केसरी के मुताबिक जिनके मुफ्त की कमाई बंद हुई चीखते चिल्लाते रहे। दैनिक जागरण के अनुसार जीएसटी अधिकारियों से

0: गई गिरफ्तारी की शक्तियां, जीएसटी काउंसिल की बैठक में छोटे कारोबारियों को राहत। अमर उजाला लिखता है, अब कोर्ट के आदेश पर ही गिरफ्तारी, 10,000 रुपए से कम के मामलों में नोटिस नहीं। वन नेशन वन टैक्स पर विचार, ऑनलाइन सामान महंगा मांगना होगा सस्ता। जनसत्ता का शीर्षक है, सस्ती होगी कैंसर की दवाएं, व्यापारी 30% ले सकेंगे मुनाफा। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का असर, कैंसर दवाओं में मुनाफे की डकैती रुकेगी। लोकसत्य की सुर्खी है, यूपीआई शुल्क पर त्योहारों में राहत, जनवरी तक टल सकता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। दैनिक जागरण का शीर्षक है, सैटकॉम नीति पूरी तरह निष्पक्ष, भारत ने स्टारलिंक के प्रमुख एलन मस्क के आरोप किए खारिज, बैकफुट पर मस्क, कहा भारत के लिए बहुत मददगार साबित होगी स्टारलिंक।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में आज महिला और बाल विकास विभाग के शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। सरकार ने कैंसर दवाओं की आपूर्ति और बिक्री पर लाभ की सीमा 30% तय की, कीमतों में 70% गिरावट की संभावना। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनावों की मतगणना जारी। दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ हुआ। हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों पर हमले किए, भारत का अपने नागरिकों से सतर्क और सावधान रहने का आग्रह। और भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ, नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवादक जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 49वीं कड़ी।

0: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह राष्ट्र मंत्र अपना सा लगा। क्रांतिकारियों से लेकर सत्याग्रहियों तक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हर किसी में वंदे मातरम शब्द के प्रति एक आकर्षण पैदा हो गया। इससे यहां के कलाकार भी अछूते नहीं रहे। अवनींद्रनाथ ठाकुर, राव बहादुर धुरंधर, दीननाथ दलाल, रघुवीर मुड़गांवकर और अल्लाह बख्श जैसे अनेक चित्रकारों ने भारत माता के चित्र बनाकर वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। फिर संगीत क्षेत्र का इसमें पीछे रहना संभव ही नहीं था। संगीत क्षेत्र के दिग्गजों को राष्ट्रीय आंदोलन का आकर्षण होने लगा। इस क्षेत्र के अनेक कलाकारों की राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी की शुरुआत वंदे मातरम से ही हुई। वंदे मातरम के निर्माण से लेकर पिछले 150 वर्षों में भारतीय संगीत क्षेत्र के लगभग सभी नामी कलाकारों ने वंदे मातरम का गायन किया है या उसे संगीतबद्ध किया है। इसमें शास्त्रीय संगीत के नामी घरानेदार गायकों से लेकर आज के रॉक, पॉप, आधुनिक संगीत तक के सभी संगीतकर्मी शामिल हैं। वंदे मातरम ने जिस तरह इतिहास रचा है, उसी तरह वंदे मातरम की संगीत यात्रा भी हैरान करने वाली है।
1: इन सभी रिकॉर्डिंग्स को कालक्रम के अनुसार सुना जाए तो इसमें पिछले 150 वर्षों में भारतीय संगीत के बदलते स्वरूप को सुना जा सकता है। एक ही गीत की इतनी संगीत रचनाएं और इतनी बड़ी संख्या में नामी कलाकारों द्वारा गाया गया

0: वो गीत ऐसा उदाहरण पूरे विश्व के संगीत इतिहास में किसी अन्य गीत के बारे में देखने को नहीं मिलता है। ऐसा संगीत में सौभाग्य और एकमात्र अद्वितीय गौरवपूर्ण स्थान केवल वंदे मातरम गीत को ही प्राप्त हुआ है। वंदे मातरम की ये संगीत यात्रा मनोरंजक और रोमांचक है। ये कलाकारों द्वारा देश प्रेम के लिए दिखाए गए स्वाभिमान का प्रतीक है।
1: इस गीत को लिखने वाले ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अंग्रेजों की सेवा में डेप्यूटी मजिस्ट्रेट जैसे न्याय विभाग के उच्च पद पर काम कर रहे थे। उसी समय साहित्य के क्षेत्र में उनका काम ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था। उनके उपन्यास बेहद लोकप्रिय हो रहे थे। बंकिम चंद्र की गिनती बांग्ला के श्रेष्ठ लेखकों में होने लगी थी। उन्हें संगीत में भी अच्छी रुचि थी। वे उत्तम हारमोनियम बजाते थे, ऐसा उनके मित्रों ने लिख कर रखा है। 1875 में यह गीत लिखा गया। उस समय बंकिम चंद्र जी को संगीत सिखाने के लिए आने वाले यदुनाथ भट्टाचार्य ने वंदे मातरम की पहली संगीत रचना की। जिस आनंदमठ उपन्यास में वंदे मातरम पिरोया गया है, उस आनंदमठ के पहले संस्करण में इस रचना का उल्लेख राग मल्हार ताल कव्वाली के रूप में किया गया है। दुर्भाग्य से इसकी स्वर लिपि उपलब्ध नहीं है। यही यदुनाथ भट्टाचार्य आगे चलकर रविंद्रनाथ के भी संगीत में मार्गदर्शक बने।

उसी दौरान बंकिम चंद्र की तरह ही सरकारी अधिकारी रहे उनके संगीतज्ञ मित्र क्षेत्रनाथ मुखोपाध्याय ने भी वंदे मातरम की एक संगीत रचना की थी। 1882 में नेपाल चंद्र धर नामक युवा गायक ने राग देश और राग मल्हार के मिश्रण वाले देश मल्हार राग में वंदे मातरम की संगीत रचना की थी। 1882 में ही आनंद मठ नाटक में तिलक कामोद राग और छपताल में निबद्ध वंदे मातरम भवानंद की भूमिका करने वाले देवचंद्र बागची इस अभिनेता ने गाया था। संगीत रचना भी उन्हीं की थी। रंगमंच पर हुआ ये पहला सार्वजनिक गायन था। बंकिम चंद्र के निधन के दो ही साल बाद 28 दिसंबर 1896 को कलकत्ता में हुए राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन की शुरुआत रविन्द्रनाथ द्वारा गाए गए वंदे मातरम से हुई। वंदे मातरम का ये सार्वजनिक कार्यक्रम में पहला गायन था। सन 1900 से राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन में नियमित रूप से वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ। 1905 में रविंद्रनाथ ठाकुर की आवाज में वंदे मातरम का पहला रिकॉर्डिंग जारी हुआ। के बनारस अधिवेशन में सरला देवी चौधुरानी द्वारा गाया गया वंदे मातरम बहुत प्रसिद्ध हुआ।

1905 से 1910 के दौरान नरेंद्र चंद्र मुखर्जी, आर एन बोस, नारायण चंद्र मुखर्जी, हेमचंद्र सेन और सत्यभूषण गुप्ता जैसे बंगाली गायकों की आवाज में वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग्स जारी की गई। विशेष आश्चर्य की बात यह है कि इसी काल में राष्ट्रीय सभा के प्रसिद्ध नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की आवाज में भी वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग निकाली गई। दुर्भाग्य से समय के साथ आज ये रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध नहीं है। वंदे मातरम के उपलब्ध ध्वनि मुद्रणों में सबसे पुरानी नारायण चंद्र मुखर्जी की आवाज में 120 साल पहले की दुर्लभ रिकॉर्डिंग ये है।

0: वंदे मातरम की संगीत यात्रा को देखते हुए पिछली सदी के भारतीय संगीत के बदलते प्रवाह उसमें सुनने को मिलते हैं। वंदे मातरम के प्रसार में बंगाल जितना ही महाराष्ट्र का योगदान भी बड़ा रहा है। जैसे शास्त्रीय संगीत के घराने दिखते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र और बंगाली ऐसे दो संगीत प्रवाह इस यात्रा में स्पष्ट दिखते हैं।
1: बंगाल शैली। वंदे मातरम के संदर्भ में बंगाल शैली को हम बंगाली स्कूल कह सकते हैं, क्योंकि वंदे मातरम का निर्माण जैसे बंगाल में हुआ, वैसे ही वंदे मातरम के संगीत प्रचार की शुरुआत भी बंगाल से यदुभट्ट और रविंद्रनाथ के रूप में ही हुई। रविंद्रनाथ ने संगीत क्षेत्र में जो काम किया है वो उनके नाम से यानी रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम के बिल्कुल शुरुआती दिनों में वंदे मातरम गाने वाले सभी बंगाली गायकों पर रविंद्रनाथ की शैली की छाप स्पष्ट दिखती है।
0: १९२० के बाद भी अनेक बंगाली संगीतकारों ने वंदे मातरम की संगीत रचनाएं की। हरिपद चटर्जी, भवानी चरण दास, कमल दास गुप्ता, आर एन भट्टाचार्य, सूर सागर, जगमोहन, राजन सरकार, अनादि दस्तीदार जैसे बंगाली संगीत निर्देशकों ने अपने अपने तरीके से वंदे मातरम को संगीतबद्ध किया, फिर भी उसमें रविंद्रनाथ के संगीत की छाप को कोई भी ज्यादा मिटा नहीं पाया। इसमें अपवाद रहे संगीतकार हैं तिमिर बरन भट्टाचार्य, सुबल दास गुप्ता और हेमंत कुमार मुखर्जी। कमल दास गुप्ता के मातृसेवक दल के नाम से प्रकाशित इस रिकॉर्डिंग में बंगाली खोल और पखावज जैसे वाद्यों का उपयोग करते हुए ध्रुपद गायकी का प्रभाव दिखता है।

विख्यात बंगाली संगीत निर्देशक पंकज मल्लिक द्वारा की गई संगीत रचना तो तत्कालीन फिल्मी रचना जैसी है। उसके वाद्य वृंद के कारण फिल्मिस्तान कंपनी के फिल्मी गीतों की याद आती है। अत्यंत बड़े संगीतकार होने के बावजूद वंदे मातरम की उनकी यह रचना राष्ट्रगीत को न्याय देने वाली नहीं बन पाई है।

इसके अलावा 1950 के दशक की विख्यात गायिका गीता दत्त का जीएम दुर्रानी के साथ गाया हुआ रिकॉर्ड भी कुछ अलग है। इसका संगीत ज्ञान

0: वंदे मातरम को अत्यंत अलग संगीत रचना में प्रस्तुत करने वाले हेमंत कुमार और तिमिर बरन भट्टाचार्य भी बंगाली ही हैं। वंदे मातरम की संगीत यात्रा में बंगाली संगीतकारों के समान ही मराठी गायकों और संगीतकारों का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
1: सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 49वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रेकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रेकर और मंदाकिनी जोशी। वंदे मातरम की दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स मिलिंद सबनीस जी के संग्रह से साभार। तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में। मैं हूं विधि प्रवीण जैन। नमस्कार।

0: हम सुन रहे थे ओ माय गॉड फिल्म से यह गीत मोहम्मद इरफान की आवाज़ में। इस गीत को लिखा समीर अंजान ने और संगीतबद्ध किया हिमेश रेशमिया ने। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
1: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। आज है प्रादेशिक सेना दिवस। यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने 9 अक्टूबर 1949 को औपचारिक रूप से प्रादेशिक सेना का उद्घाटन किया था। यह नियमित भारतीय सेना की एक द्वितीय रक्षा पंक्ति बल है। यह उन कामकाजी नागरिकों को देश सेवा का अवसर प्रदान करता है जो सैन्य प्रशिक्षण लेकर आवश्यकता पड़ने पर देश की सुरक्षा में योगदान देना चाहते हैं। इनकी भूमिका होती है जब युद्ध या आपातकाल के समय नियमित सेना को यह सहयोग देते हैं, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नागरिक प्रशासन की मदद करते हैं, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ भूकंप आदि में राहत और बचाव कार्य का कार्य करते हैं, पर्यावरणीय कार्यबल के रूप में भी वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देते हैं। और इनके जीवन का आदर्श वाक्य है सावधानी व शूरता।

0: हम सुन रहे थे उरी फिल्म का यह गीत, देव नेगी शाश्वत सचदेव, अरुण हरिदास कामत, रोमी विवेक हरिहरन, इन सभी ने इसे गाया, कुमार के बोल हैं और शाश्वत सचदेव ने इसे संगीत दिया है।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध, बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये गीत।

हम सुन रहे थे यह गीत द डर्टी पिक्चर से सुनिधि चौहान की आवाज में, जिसके गीतकार रजत अरोरा और संगीतकार विशाल शेखर। आइए कार्यक्रम चित्रलोक में लेते हैं एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक, और आज है एक प्रश्न है आप सभी से। चिट्ठी कब से नहीं डाली अपनों को? जरूर डालिएगा, क्योंकि कई सारे संदेश इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तहत पहुंच सकते हैं, लेकिन चिट्ठी, उसमें छुपे हुए आपके आंसू और आपका प्यार, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं पहुंचा पाता। तो चलिए, चिट्ठी जरूर डालिए। और आज है विश्व डाक दिवस। प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को दुनिया भर में डाक सेवाओं के महत्व और वैश्विक संचार तंत्र में उनकी भूमिका को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है ये दिन। स्थापना हुई थी 9 अक्टूबर 1874 को स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना के साथ में एक बर्न संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1969 में टोक्यो जापान में आयोजित यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में एक आधिकारिक रूप से 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के रूप में स्वीकृत किया गया था और इस दिवस को घोषित किया गया था।

हम सुन रहे थे प्यार के गीत से, यह गीत शुभा मुद्गल की आवाज में। इस गीत को लिखा प्रशन वसल ने और संदेश सांडिल्य ने इसे संगीतबद्ध किया। हम बात कर रहे थे आज के दिवस के बारे में, और आज दिवस है विश्व डाक दिवस। डाक नेटवर्क को दुनिया के सबसे बड़े भौतिक संचार नेटवर्क के रूप में स्थापित करना उद्देश्य है, और इसके साथ ही लोगों के दैनिक जीवन, व्यापार और वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग, पार्सल डिलीवरी, बीमा में डाक प्रणाली के योगदान को रेखांकित करना है। आज का युग बदल चुका है, डिजिटल युग है। ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के साथ डाक तंत्र का समन्वय बढ़ा है। भारत में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय डाक सप्ताह भी मनाते हैं 9 से 15 अक्टूबर तक, जिसमें मेल दिवस, वित्तीय सशक्तिकरण दिवस और फिलेटली यानी डाक टिकट संग्रह दिवस आदि सभी मनाए जाते हैं, और अलग अलग जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। फिर से एक बार चिट्ठी लिखिए अपनों को, क्योंकि डाक सेवा आपकी चिट्ठियों के लिए है और कोई दूर बैठकर आपकी चिट्ठी का इंतजार कर रहा है।

0: हम सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में अमित भट्टाचार्य के द्वारा लिखे गए इस गीत को, जिसे संगीत दिया अजय अतुल ने, फिल्म अग्निपथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
2: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
1: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
2: जो कल्की का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई

और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है चित्रलोक। आज जरीन दारूवाला यानी जरीन शर्मा का दिवस है, इन्हें हम याद कर रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन जरीन दारूवाला का जन्म हुआ था। आज के दिन इनका नाम इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि ये सरोद जैसे पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान वाद्य पर महारत हासिल करने वाली शुरुआती महिला कलाकारों में से एक है। यह बहुत सुंदर सरोद वादन किया करती थी। इन्होंने मैहर और ग्वालियर घराने से तालीम ली। वादन में गायकी, अंग और द्रुत तंत्रकारी का एक अनूठा संगम प्रस्तुत किया। सिनेमा में अगर इनके योगदान को याद किया जाए तो मदन मोहन, नौशाद और खयाम जैसे संगीतकारों के साथ पाकीज़ा सहित कई सारी फिल्मों में पार्श्व संगीत में सरोद वादन का कार्य इन्होंने किया। इसके साथ ही ये अपने पति सितार वादक पंडित अशोक शर्मा जी के साथ में देश विदेश में कई सारी प्रस्तुतियां भी इन्होंने दी। 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी यह सम्मानित रही हैं। याद करते हैं उन्हें और सुनते हैं ये गीत।

0: हम सुन रहे थे ये गीत बर्फी फिल्म से। श्रेया घोषाल और निखिल पॉल जॉर्ज ने इसे गाया, स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा और प्रीतम ने संगीत दिया। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। किसी ने सही कहा है कि चिंता करने से क्या फायदा, अपनी सारी परेशानियों को पीछे छोड़कर बस मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना वह तोहफा है जो बिना खर्च किए दिया जा सकता है और पाने वाले की पूरी दुनिया को बदल सकता है। तो फिर हमारे पास दिन की शुरुआत करने के लिए केवल एक चीज बचती है, वह है मुस्कुराना। तो मुस्कुराहट के साथ दिन की शुरुआत कीजिए और आधी सफलता तो यही मिल जाएगी।

हम सुन रहे थे रॉकस्टार फिल्म से यह गीत मोहित चौहान एआर रहमान की आवाजों में। इशात कामिल ने इसे बोल दिए और एआर रहमान के संगीत के साथ सुना हमने यह गीत। आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में हम सुनते हैं नए गीतों को और उसके साथ याद करते हैं कुछ विशेष लोगों को। आज का दिन एक बार और विशेष हो जाता है क्योंकि आज के दिन जन्म हुआ उत्कल मणि पंडित गोप बंधु दास का। ये उड़ीसा के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, शिक्षाविद और साहित्यकार थे। उन्हें उड़ीसा का रत्न यानी उत्कल मणि कहा जाता है। इन्होंने 1909 में साखी गोपाल में गुरुकुल शैली की प्रसिद्ध सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की, जहां पर चरित्र निर्माण और राष्ट्रप्रेम की शिक्षा दी जाती थी। 1919 में उन्होंने द समाज समाचार पत्र की शुरुआत की, जो जन जागरण का प्रमुख माध्यम बना और आज भी उड़ीसा का प्रतिष्ठित दैनिक है। इसके साथ ही वे उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जेल भी गए थे। बाढ़, सूखे, महामारी के समय उन्होंने पीड़ितों की निस्वार्थ सेवा की। वे लाला लाजपत राय की संस्था सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी के उपाध्यक्ष भी रहे। जेल में रहते हुए उन्होंने बंदिर आत्मकथा, कारा कविता और धर्मपद जैसी प्रमुख कृतियां भी लिखी। उनका पूरा जीवन त्याग, लोक कल्याण के लिए समर्पित रहा और 50 वर्ष की आयु में 1928 में आपका निधन हो गया। हम आपके जन्मदिवस पर आपको हमारी स्वतंत्रता के लिए, आपके किए गए कार्यों के लिए याद करते हैं और सुनते हैं ये गीत।

0: हम सुन रहे थे ये गीत फिल्म सिंघम से, सुखविंदर सिंह की आवाज में। स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा, अजय अतुल ने इसे संगीतबद्ध किया।
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
2: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।

0: स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। आइए चलते हैं चित्रलोक के अंतिम गीत की तरफ। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए और नृत्य से अच्छा व्यायाम क्या हो सकता है। तो मन करे तो सुनिए ये गीत और साथ में ताल से ताल मिला लीजिए।
3: नवराई माझी लाडाची लाडाची ग आवडतीला चंद्राची चंद्राची ग।

हम सुन रहे थे इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का यगी, सुनिधि चौहान, स्वानंद किरकिरे, नीलांबरी किरकिरे और नेताली की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल और अमित त्रिवेदी ने इसे संगीतबद्ध किया। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। चित्रलोक कार्यक्रम

भारती देश की सुरीली धड़कन, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, देखिये मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा और लोगों ने कहा कि वाह।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

संगीतकार रविंद्र जैन की धुनों में रंग है भारतीयता का। वाद्यों का बड़ा ही सुंदर प्रयोग सुनाई देता है रविंद्र जैन की धुनों में। गीत की भावभूमि चाहे जो हो, रविंद्र जैन का संगीत उस मूड और दृश्य के साथ न्याय करता है। इसीलिए गीत को पर्दे पर न देखें तो भी उसे सुनते हुए हम उसका भरपूर आनंद

28 फरवरी सन 1944 को अलीगढ़ में जन्मे रविंद्र जैन को युवावस्था से ही संगीत में रुचि थी और वो भक्ति संगीत की रचनाएं गाया करते थे। संगीत की आरंभिक शिक्षा उन्होंने ली पंडित जी एल जैन, पंडित जनार्दन शर्मा और पंडित नाथुराम से। रविंद्र जैन की रचनात्मक सक्रियता का एक लंबा समय बीता कोलकाता में और फिर संयोग बना मुंबई आने का। सन 1972 के जनवरी महीने में रविंद्र जैन ने बतौर शुरुआत की स्वतंत्र रूप से संगीत देने की। फिल्म जगत में अपने करियर का पहला गीत उन्होंने महान गायक मोहम्मद रफी के स्वर में रिकॉर्ड करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म रिलीज न हो पाई। खैर, नसीब का पासा पलटा और 80 के दशक में रविंद्र जैन को उन फिल्मों में संगीत देने का मौका मिला जो कामयाब होने के साथ साथ बेहद लोकप्रिय भी हुई। उस दौर की ये मशहूर फिल्में हैं चोर मचाए शोर।

0: ले जाएंगे,
1: ले जाएंगे, ले जाएंगे।
2: गीत गाता चल
3: कहां से तू आए।

रविंद्र जैन की प्रतिभा इस मायने में दूसरे संगीतकारों से अलग है क्योंकि रविंद्र जैन फिल्मों में संगीत देने के साथ साथ गीत भी लिखते रहे और उन्होंने कई गीत गाए।

0: कट जाए।
1: रविंद्र जैन संगीत के मर्मज्ञ तो थे ही, भाषा और व्याकरण पर भी उनकी गहरी पकड़ थी। उनके संगीत में विशुद्ध भारतीय रंग था, इसलिए उसमें भारतीयता की आत्मा झलकती है। रविंद्र जैन उर्दू शायरी और कविता के गहरे जानकार थे। एक उम्दा संगीतकार होने के लिए ये जरूरी भी है। वो भारत की सांस्कृतिक धार्मिक लोक परंपरा की गहरी समझ रखते थे, इसलिए विषयानुकूल संगीत सृजन करने में

रविंद्र जैन की कई धुनें ऐसी हैं जो जब भी सुनाई पड़ती हैं अपने जादुई असर से हमें बांध लेती हैं। उनके शब्दों में, गीतों में कभी भी ओछापन या सस्ती तुकबंदी नहीं रही। रविंद्र जैन किसी भाव की मर्यादा क्या होगी इसके प्रति सजग थे। उनके गीतों में लालित्य है, भाषा और भावों का सौंदर्य है, और सौंदर्य है आंचलिकता का।

व्याकरण की मर्यादा तोड़ते, पहचान के लिए छटपटाते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भौंडे फूहड़ प्रयोगों में, सस्ती तुकबंदियों में करहाते, शिष्ट से अशिष्ट होते, चीखते चिल्लाते, शोर करते और स्मृतियों से स्खलित होते गीतों की भीड़ में रविंद्र जैन के रस भरे, भावपूर्ण, अर्थपूर्ण गीत लगातार हमें मंत्रमुग्ध करते चले जाते हैं।

रविंद्र जैन ने एक ओर जहां फिल्म जगत के प्रतिष्ठित बैनर राजश्री की कई स्तरीय फिल्मों में अपने संगीत का जादू बिखेरा, तो वहीं उन्होंने शोमैन राज कपूर के प्रतिष्ठित बैनर की फिल्मों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।

रविंद्र जैन की संगीत प्रतिभा केवल हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी परिधि और विराट थी। रविंद्र जैन ने गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, मलयालम, भोजपुरी, बांग्ला, उड़िया, राजस्थानी और तेलुगु भाषा की फिल्मों में भी संगीत दिया। इससे पता चलता है कि क्या थी उनकी प्रतिभा की ऊंचाई। हिंदी सिने संगीत को गायक येसुदास का अद्भुत स्वर मिला रविंद्र जैन जी के ही कारण। रविंद्र जैन गायक येसुदास को भारत का स्वर कहते थे। येसुदास जी ने रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में गाए कुछ बेहद लोकप्रिय और यादगार गीत।

0: आज से पहले।
1: संगीत और अपना काम रविंद्र जैन के लिए पूजा की तरह था। फिल्म सौदागर के गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान उनके पिता का देहांत हो गया। इस हृदय विदारक समाचार के मिलने के बाद भी रविंद्र

रविंद्र जैन पूरे समर्पण से रिकॉर्डिंग करते रहे। भीतर से बहुत विचलित, किंतु बाहर से वो यूं प्रदर्शित करते रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिल्म सौदागर रविंद्र जैन के सुरीले संगीत का एक और उदाहरण है।

फिल्मों के अलावा रविंद्र जैन ने कई गैर फिल्मी रचनाओं को भी संगीतबद्ध किया। इनमें भक्ति रचनाओं के अलावा कई दिलकश गजलें भी शामिल हैं। रविंद्र जैन ने फिल्मों के अलावा टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले अनेक लोकप्रिय धारावाहिकों को भी अपने संगीत से संवारा। इनमें से कुछ के नाम हैं अलिफ लैला, इतिहास की प्रेम कहानियां, लवकुश, दादा दादी की कहानियां और रामायण

कुछ प्रसिद्ध बैले कृतियां हैं महालक्ष्मी, दुर्गा, नृत्य मालिका, रामायण, कृष्ण बलराम और राधा कृष्ण। रविंद्र जैन के संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं नदिया के पार, सौदागर, चित्तचोर, गीत गाता चल, चोर मचाए शोर, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, तपस्या, पहेली, हिना, राम तेरी गंगा मैली, पति पत्नी और वो, फकीरा और विवाह।

एक टेलीविजन चैनल के संगीत कार्यक्रम में उन्होंने महागुरु का दायित्व भी संभाला था। उनकी शायरी का एक दीवान भी प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था उजालों का सिलसिला। उनकी

जीवनी का शीर्षक है सुनहरे पल। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों से साहित्य और संगीत में अपने अमूल्य योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनकी जीवन संगिनी बनकर आई दिव्या जैन, रविंद्र जैन जी के सुपुत्र का नाम है आयुष्मान। 9 अक्टूबर सन 2015 को संगीत के साधक रविंद्र जैन ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। रविंद्र जैन सदैव याद किए जाएंगे अपने मधुर संगीत के लिए, मीठे गीतों के लिए।

0: आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन पर केंद्रित ये कार्यक्रम। प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
1: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
1: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना।

अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, संगीत जब आपकी पसंद का हो तो गीत और भी खास हो जाता है ना? तो आइए आज के इस फरमाइशी सफर में शामिल होते हैं और सुनते हैं आपकी पसंद के गीत, आपकी प्यारी बातें और साथ ही हमारे एहसास। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का ही कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से
1: रहीम मिस्त्री बात कर रहे हैं, हुजूर साहिब नांदेड़ से।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रहीम जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। देखिए, और हेलो फरमाइश के जरिए और भी अच्छे हो जाते हैं आप सभी श्रोताओं से बात करके।
1: हाँ जी, हाँ सही, आपका हमारा मनोरंजन तो इतना बढ़िया, इतना भारी आता है विविध भारती, इतना अच्छा मजा आता है जब चलता है, तो ऐसा लगता नहीं कि हम कहीं और है, ऐसा है कि हम हमेशा रात के 11 बजे तक विविध भारती के प्रोग्राम सुनने में बड़ा मजा आता है।
0: अच्छा, तो क्या करते हैं साथ में आप विविध भारती का प्रोग्राम? हाँ, तो सुनते हैं
1: है, मिस्त्री के साथ में बांधा वगैरह बनाते हैं, घर बनाते हैं।
0: बहुत बड़ा काम करते हैं आप, है ना? सर्दी गर्मी धूप बरसात कोई भी मौसम हो और घरों में बनाने के लिए आप तैयार रहते हैं।
1: जी हाँ, सही। देखिए, हम तो अच्छा रहना चाहते हैं, प्यार से रहना चाहते हैं, जैसा सर्वधर्म संभाव बोल के चलते हैं, और हम सभी से कहते हैं कि अपने माता पिता के साथ रहो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता की सेवा में स्वर्ग है जन्नत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चे ऐसे हैं जो माता पिता को थोड़े थोड़े बातों पे दुख दे रहे हैं, कभी उन्हें थोड़ा दुख हो रहा है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम हमारे सबसे ज्यादा दुनिया में दूसरा रूप भगवान का माता पिता होते हैं, और माता पिताओं के साथ में रहना ये हमारा कर्तव्य है और ये हमारा भविष्य है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही, अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी होगी और निश्चित रूप से आपने भी अपने माता पिता का ख्याल रखा होगा।
1: जी
0: हाँ। जी बताइए, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: जिनका नाम है मिस्टर नटवर लाल, परदेश किया ये सच्चे किया, सब कहते हैं मैंने तुझको दिल दे दिया।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए, कौन बोल रही हैं?
1: जी दीदी, कहते हैं नफरत की तस्वीर मिटा दो, पी लो प्यार का जाम। नफरत की तस्वीर मिटा दो, पी लो प्यार का जाम। मैं तेरी खुशबू हूँ, आरजे शबनम अब्बासी है मेरा नाम दीदी।
0: क्या बात है, क्या बात है, शबनम जी बोल रही हैं, आरजे हैं आप?
1: जी जी दीदी। दीदी आज आपसे बहुत टाइम के बात हो रही है, मतलब लगभग एक साल हो चुका है मुझे कॉल करे हुए दीदी। जी दीदी, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्या करें दीदी, मतलब पार्लर में हम काम करते हैं तो थोड़ा बिजी रहते हैं, इसलिए हमें टाइम नहीं मिलता।
0: कोई बात नहीं, तो अपना काम पहले है ना, काम ही तो पूजा है। आप अपना काम कर रही हैं, वो आपकी रोजी रोटी होगी।
1: दीदी आपकी आवाज़ जब गूंजती है तो ये दिल करता है बस जल्दी से दीदी से बात हो जाए।
0: आवाज़ तो आपकी भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, मुझे भी लग रहा है कि मैं आपसे घंटों बात करती रहूं।
1: थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रम, हम बहुत ध्यान से सुनते हैं, हमारे पार्लर में रेडियो बजता रहता है, हम सुनते रहते हैं, कस्टमर भी सुनते हैं।
0: क्या बात है, तो एक बात बताइए, कस्टमर के साथ किस तरह से व्यवहार करती हैं आप?
1: जब हम प्यार से उनसे बात करते हैं, जैसे हमारे पास कस्टमर आते हैं, जब हम प्यार से बात करेंगे तो वो हमारे पास दोबारा आएंगे, हम उनका मतलब जैसे पहले आते हैं तो हम उनको पानी पिलाते हैं, फिर प्यार से बात करते हैं, पूछते हैं ठंडा लोगे या गर्म लोगे, तो हमें हमारे पास वो जरूर आते हैं दीदी।
0: क्या बात है, जब आप प्यार दोगे तो लोग आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि प्यार बांटने से आपको सम्मान और प्यार वापस मिलता है ना?
1: ये देखो बड़ा हो ये छोटा हो, जब हम प्यार देंगे तो प्यार लेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा। अब बताइए कौन सा गाना सुनेंगी आप?
1: ये फिल्म का नाम रहेगा दिल तेरा आशिक, उसका टाइटल सॉन्ग है, यही सुनवा देना दीदी।
0: आइए सुनते हैं ये बड़ा मस्ती भरा गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैम जी।
0: नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रही हैं?
1: हम राजेंद्र गंगवार, कस्बा कोड़िया, तहसील नवाबगंज, झुमका सिटी, बरेली, उत्तर प्रदेश से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: जी बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: मैम जी हम तो बस अभी तो ड्यूटी चल रही है हमारी।
0: ड्यूटी चल रही है कहाँ?
1: जो लाइसेंस बनते हैं, हाँ, गाड़ियों के वाहन के, चाहे चार पहिया हो या दो पहिया हो या जितने बड़े वाहन हो, सभी के जो बनते हैं
0: वो काम करते हैं?
1: नहीं, इसमें ड्यूटी चल रही है।
0: अच्छा, क्या टाइमिंग्स रहते हैं आपकी ड्यूटी के?
1: ड्यूटी तो खैर इसमें तो अभी तो चालू होने में बता रहे हैं कि इस महीने बाद चालू हो जाएगा, अभी तो हम अकेले ही हैं, बाकी 24 घंटे रहना पड़ता है मैम जी।
0: बहुत कठिन काम है ये तो, फिर परिवार के साथ समय बिता पाते हैं?
1: नहीं मैम जी, हम अकेली हैं, परिवार तो हमारा अंत है।
0: तो दैनिक दिनचर्या क्या रहती है आपकी?
1: दैनिक दिनचर्या यही रहती है कि सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, टहलते हैं, टहलने में और काम भी करते रहते हैं मैम जी।
0: और अपने स्वास्थ्य और अपनी दिनचर्या का कितना ख्याल रखते हैं?
1: वह बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं कि अगर जैसे अभी मौसम परिवर्तन हो रहा है तो ना ज्यादा धूप है, ना ज्यादा गर्मी है, ना ज्यादा सर्दी है, मीडियम सॉफ्ट है। जब मौसम बदलेगा तो हानिकारक तो होगा ही मैम जी। नींद भी पर्याप्त समय पे लेते हैं, जैसे 7 से 8 घंटे नींद तो जरूरी है मैम जी।
0: बिल्कुल अच्छी बात है। तो बताइए,
1: हाँ जी,
0: गाना कौन सा सुनना पसंद करेंगे आप?
1: मूवी का नाम है सौदागर, जाने के बोल है, तेरी याद आती है मैम जी, तो लाइने हैं, बोल दें इजाजत हो आपकी।
0: सुनाइए।
1: जिंदगी का हर दिन खास है, बस नजरिए की बात है, जो मुस्कुरा के जी ले आज को, उसका कल भी उसके साथ है।
0: तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: आपका जिंदा श्रोता नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी। मुंडा जी,
0: नाम क्या है आपका?
1: बालाजी दोनकले।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: नांदेड़ महाराष्ट्र से बोल रहे हैं। नांदेड़ से हमारा गांव 60 किलोमीटर है।
0: अच्छा, नांदेड़ से 60 किलोमीटर अंदर है आपका गाँव?
1: हो ग्राम विभाग का खेड़ गाँव है।
0: क्या नाम है?
1: खंडा गाँव।
0: अरे वाह, बड़ा सुंदर नाम है।
1: अभी तो नया तालुका है, नया गांव, इसमें खंडगांव गांव है।
0: अच्छा, तो बताइए अपने गांव के बारे में, कैसा है आपका गांव?
1: आखिर सब आदमी, सभी गांव, सभी किसी के सुख दुख है। कौन सा ही कुछ दुख आया शादी के लिए, कुछ अनेक अनेक जो अलग कार्यक्रम है कुछ है, तो सभी आदमी मिलके करते हैं। कोई वार नहीं, संटे नहीं, कोई नहीं। सभी आदमी इलेक्शन में हो या कौन सा ही कारण हो, एक दिन में न हो कि सभी आदमी एक तरफ बैठ के सभी कार्यक्रम करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम। बहुत अच्छे आदमी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो छोटे छोटे शहर हैं, गांव हैं, वहाँ पर आज भी ये मानवता जिंदा है, सब मिलकर रहते हैं।
1: वो मंडा जी,
0: जी
1: आपने जो आज के फंड करे ना कार्यक्रम, क्या बढ़िया कार्यक्रम है। और मंचे है जी,
0: वो भी अच्छा लगता है आपको?
1: हो, और सेहत नामा का डॉक्टर है ना, उसकी जानकारी मिलती है हर दवा के बारे में। हमारे ग्रामीण भाग में, हर ताजा वस्ती वाले में डॉक्टर का विचार क्या कर रहा है क्या नहीं, सब सुख दुख के कारण सब

0: भी पहुँचते है ना।
1: बहुत अच्छी बात कही, सेहत नामा में आपको पूरी जानकारी दी जाती है। और उस डॉक्टर से हम ये भी कहते हैं, जो भी डॉक्टर साहब आते हैं, कि हमारे ग्रामीण तबके के लोग भी इसे सुन रहे हैं, तो कृपया उस बात को इस तरीके से समझाइए कि हमारी ग्रामीण महिलाएं, ग्रामीण पुरुष, ग्रामीण बच्चे भी उस बात को समझ पाए।
0: और इसके लिए जो महिला का जो तुम्हारा सखी सहेली ना, हमारी महिला, हमारी पत्नी सभी मिलके वो कार्यक्रम सुनते हैं। हेलो सखी,
1: सखी सहेली भी सुनते हैं। अरे वाह क्या बात है, हेलो सहेली सुनते हैं, है ना।
0: तो
1: बहुत अच्छी
0: पूरा जानकारी मिलती है ना, हर आदमी की हर कहाँ से फोन लगा, कुछ मैडम ने हमारे जो बहन रहते हैं बहन, उन्हें कहाँ से बात कर रहे हैं क्या नहीं, सब मिलता है ना हमारे लेडीज को।
1: हाँ बिल्कुल मिलता है, खुराक मिलती है आपको, मानसिक खुराक देता है विविध भारती आपको, है ना।
0: वो भारत का सबसे बड़ा लोकप्रिय चैनल बोले तो देश में कहां भी जाओ।
1: चलिए आपकी खुशी को हम महसूस कर रहे हैं, आप कितने खुश हैं विविध भारती को सुन के। अब बताइए कौन सा गाना आपके लिए आज पेश करें।
0: गोरा और काला धीरे धीरे बोल कोई,
1: सुनिए ये प्यारा सा गीत, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी दीदी, हम ग्राम चिड़ावत कंजर डेरे से बात कर रहा हूँ। मैं देवास जिला मध्य प्रदेश से।
0: जी नाम बताइए अपना।
1: संतोष जी हाड़ा।
0: कैसे हैं आप? संतोष रखते हैं अपने जीवन में?
1: जी जी दीदी, आप लोगों का शुक्र है, बिल्कुल संतोषी है।
0: बस यही होना चाहिए ताकि जो है जीवन अच्छे से चले। क्या करते हैं आप संतोष जी, बताइए?
1: खेती गृहस्थी करते हैं दीदी।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में, क्या बोया है?
1: जी दीदी, सोयाबीन बोया था, अभी कटाई हुई है 4 दिन पहले।
0: और सोयाबीन के अलावा कुछ नहीं?
1: नहीं, अब सोयाबीन की कटाई हो गई है, हम अब गेहूं, चना, लहसुन, प्याज की तैयारी करेंगे।
0: अच्छा, गेहूं, चना, लहसुन, प्याज की तैयारी करने वाले हैं। तो इसके लिए पहले की तैयारी क्या होती है, जब आपको लगता है कि अब तो हमें खेत में ये बीज डालने हैं, तो किस तरह तैयार करते हैं आप अपने आप को?
1: दीदी इसमें क्या होता है, पहले तो 2 से 3 बार खेत को हाँकना पड़ता है, उसके बाद में रोडा रोटर एक मशीन है जो उसको मिट्टी को बिल्कुल एक में कर देती है, उसको ढाक के और फिर हम सरिया बना के पालियां, और उसमें जैसे लहसुन बोना है तो उसको चौपाई होती है, प्याज की चौपाई होती है, और गेहूं चना तो डायरेक्ट मशीन से डाल देते हैं और उसमें पानी छोड़ के पैदावार करते हैं।
0: मौसम खेती बाड़ी के लायक है?
1: हाँ, खुला है और हमारे इधर सूखा घोषित हो गया है दीदी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा पानी गिरा था बरसात में, हमारे सोयाबीन पैदा हो गए और होल अभी से ही कमजोर चल रहे हैं।
0: अच्छा,
1: ऊपर वाला यदि पानी गिरा देता है तो बहुत फायदा हो जाएगा, जो हमारा देवास जिला है उसमें बहुत पानी कम है।
0: अच्छा, पर हिम्मत नहीं हारनी है आपको, मन छोटा नहीं करना है।
1: नहीं, नहीं, नहीं।
0: हाँ। चलिए गाना बताइए, कौन सा सुनेंगे?
1: बंटवारा फिल्म का है दीदी, सारे वास्ते रे ढोला नैन मेरे जागे
0: जागे रे जागे। अरे वाह, ये गाना मुझे इतना पसंद है, आपने तो मेरी पसंद का गाना ही कह दिया यार। चलिए आपके साथ मैं भी इस गाने को जरूर सुनूंगी। आपको आपकी पसंद का गीत हम सुनवा देते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: जम्मू कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना बोल रहा हूँ।
0: लतीफ जी, स्वागत है आपका। मौसम कैसा है बताइए?
1: यहाँ आज तो मौसम लगे बहुत गर्मी है, दिन में तो गर्मी रहता है, सुबह शाम ठंड रहता है।
0: तो ठंड कितनी रहती है? स्वेटर पहनना पड़ता है, शॉल ओढ़ना होता है या चलता है थोड़ा सा?
1: नहीं, वार्मल तो पहनना पड़ता है सुबह शाम, तो दिन में तो बहुत गर्मी रहता है, पसीना आ जाता है इतना गर्मी।
0: दिन की गर्मी परेशान कर देती है। आप क्या करते हैं लतीफ जी?
1: बस मैं तो खेती किसानी करता हूँ मैडम।
0: अच्छा, क्या है आपके खेत में अभी?
1: आज तो सरसों का बुआई करते हैं यहाँ पे।
0: अच्छा, और कुछ नहीं होता?
1: होता है तो फसल की कटाई खत्म हो चुकी है ना सितंबर का महीने में, धान और मक्के की।
0: अच्छा, खेत में ही रहते हैं दिन भर?
1: नहीं, बाकी काम कर लेता है ना, जैसा अखरोट का अभी गिरी का मौका है, अभी गिरी निकालते हैं, अखरोट ये पैकिंग करते हैं, ऐसा
0: हाँ।
1: ऐसा रहता है।
0: कैसे निकालते हैं अखरोट
1: हाँ,
0: की गिरी, थोड़ा बताएंगे हमें?
1: ये थोड़ा निकालते हैं ना, अखरोट उठाते हैं, उसमें तो दो फाट गिरी निकालते हैं, वो निकालते हैं, तो फिर डब्बा में भरते हैं।
0: अच्छा, कोई मशीन होती है?
1: नहीं, हाथ से निकालते हैं,
0: अरे,
1: पत्थर पे। हाँ,
0: अच्छा, कितने अखरोट
1: पत्थर
0: को
1: पे
0: तोड़ लेते हैं?
1: बस ये लगभग 1 क्विंटल किसी को निकलता है, 1 क्विंटल किसी को निकल जाता है, 40-50 किलो ऐसा ऐसा रहता है।
0: तो एक बात बताइए, जैसे अखरोट को जब हम तोड़ते हैं, हल्का हल्का एक नट क्रैकर आता है, उससे हम दबाते हैं तो टूट जाता है ना? आप कह रहे हो
1: हाँ
0: हाथ
1: हाँ
0: से करते हैं?
1: हाँ हाथ ही, वो तो हल्का हो, उसको उतना ये नहीं होता है, ये छिलका पत्थर पे रखते हैं, फिर तो हथेड़ी से दब मारते वो तो तोड़ जाता है, फिर उसमें गिरी निकालते हैं।
0: तो गिरी चूरा भी नहीं होनी चाहिए निकालते समय, इस बात का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना?
1: बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
0: बहुत मुश्किल काम है ये भाई।
1: अब तो मशीन आया ना इसका, उससे भी तोड़ते हैं।
0: चलिए, बहुत
1: हाँ जी,
0: महत्वपूर्ण और बहुत ही मुश्किल काम करते हैं आप।
1: हाँ, बहुत मुश्किल मेहनत तो अब यही है, रोजगार
0: बिल्कुल, फिर
1: मेहनत
0: भी
1: करनी पड़ती।
0: आपने समय निकालकर विविध भारती आप सुनते हैं, हमें फोन करते हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है?
1: हाँ हाँ सही बात, सही बात, मैं दिल से सुनता हूँ, पिटारा ज्यादा सुनता हूँ, हेलो फरमाइश, सेहतनामा प्रोग्राम बहुत पसंद भी करता हूँ, सारे
0: बताइए।
1: प्रोग्राम सुबह से लेके शाम तक प्रोग्राम आते हैं वो मैं सुनता रहता हूँ, आज की फनकार भी सुनता हूँ।
0: अरे वाह, बहुत खूब। गाना बताइए जो हम आपको सुनवाएं, आपकी पसंद का।
1: फिल्म का नाम है किंग अंकल, लता मंगेशकर की आवाज में है वो, इन जहां की तुम्हारी आंखें।
0: तो बहुत ही प्यारा गीत सुनना चाहते हैं, हम मिलके सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते, कौन जनाब बोल रहे हैं?
1: जिलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से मुकेश जिंदल बोल रहा हूँ।
0: क्या करते हैं मुकेश जी?
1: भाई टू व्हीलर गाड़ी जो है सीट कवर के काम है।
0: तो क्या डिजाइन वाले बनाते हैं सीट कवर? आजकल तो कई तरह के डिजाइन आ गए हैं सीट कवर में मोटर बाइक के।
1: डिजाइन वाले बना देते हैं और ज्यादा प्लेन पसंद करते हैं।
0: प्लेन पसंद करते हैं
1: जी हाँ।
0: अच्छा, कपड़े का या वो जो वेलवेट आता है उसका या किस तरह?
1: वो लेदर के आते हैं अलग से, वो सीट कवर बनते हैं जो पानी वानी नहीं जाते हैं। लेदर वाले भी बनते हैं, सीट कवर वेलवेट वाले भी बनते हैं।
0: ज्यादा कौन से प्रचलन में है?
1: ये सीट कवर ही जो नॉर्मल आते हैं, ब्लैक कलर के आते हैं जो।
0: अच्छा,
1: पसंद करते हैं।
0: पर एक बात बताइए मुकेश जी, जब मैं स्कूटी चलाती थी तो उसमें ये जो सीट कवर नायलॉन के होते थे, या ये गर्मी के दिनों में तो हम बैठ ही नहीं पाते थे, जब बाहर आए ऑफिस से और हमने अपने स्कूटी या मोटर बाइक स्टार्ट की तो इतनी गर्म सीट हो जाती थी कि कई बार पानी डाल के ठंडा करना पड़ता था पहले उसे।
1: अभी क्या एक नेट वाला कवर आ रहा है, जाली वाला, वो लगाते हैं गर्मी के दिनों में, बरसात
0: हाँ,
1: के दिनों में।
0: हाँ,
1: तो जाली वाला आता है जो वो थोड़ा ठंडक रहता है, उसमें गर्म नहीं होती।
0: ये पते की बात कही है आपने, क्योंकि वो सीट कवर इतना गर्म हो जाता था कि उससे तो कई दिक्कतें आ जाती थी और आदमी ढंग से चला भी नहीं पाता था दुपहिया वाहन। तो ये बदलाव आ गए हैं और आप बनाते रहते हैं तरह तरह के, तो कितने बना लेते हैं एक दिन में सीट कवर?
1: ये मेरी दुकान है ना, गराज के ऊपर है, गराज जितने आए जितने। टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का काम करता हूँ, ऊँटों के हुड वुड में सीट कवर ये भी बनाता हूँ।
0: तो फोर व्हीलर की जो सीट कवर बनते हैं या टू व्हीलर, इसमें कुछ अंतर होता है जो आप नहीं बना पाते हैं या?
1: सीटें बड़ी होती है, गाड़ी खड़ी रखने की भी जगह होनी चाहिए। हमारी छोटी दुकान है, छोटी गाड़ी टू व्हीलर आराम से खड़ा रह जाता है, दो गाड़ियाँ तीन गाड़ियाँ चार गाड़ियाँ खड़ी रह जाती है आराम से। उसके लिए जगह की भी स्पेस चाहिए ज्यादा बड़ी गाड़ियों के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए, आप तो उदयपुर में रहते हैं झीलों की नगरी में, कैसा गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: उदयपुर में फिल्मा गया गाना है राजपूत का।
0: कौन सा?
1: मेरे संग संग आया यादों का मिला।
0: अरे वाह, ये उदयपुर में फिल्माया था?
1: उदयपुर में, राजस्थान, किशोर कुमार।
0: चलिए सुनते हैं।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासा कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, आप भी अच्छा है। मैं कम से कम एक महीने से प्रयास कर रहा था मैडम, तो इसके बाद इतना व्यस्त तो आज लगा है तो बड़ा मुश्किल से लगा था, चलो अच्छा हुआ लग गया मैडम। और सबसे पहले आपको दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, आने वाले छठ पूजा की ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: अरे इतने सारी शुभकामनाएं एक साथ दे दी, कहाँ रखेंगे हम?
1: क्या बोलते कि खुशी में रखिएगा, बांटते हैं।
0: जी जी जी बिल्कुल, आपको भी सभी शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की, पर्वों की। क्या करते हैं आप चंद्रभान जी?
1: मैं साउथ ईस्टर्न कोर्ट फील्ड में नौकरी करता हूं मैडम, और नौकरी पीरियड में कई केंद्रों में फोन करता हूं, लाइव फोनिंग कार्यक्रम में जुड़ता हूं, रिकॉर्डिंग में जुड़ता हूं, ईमेल में जुड़ता हूं, बड़ा मोबाइल में बात करता हूं, छोटा मोबाइल में प्रसारण सुनता हूं, सभी केंद्र का सुनते रहता हूं। बहुत केंद्र का मेरा प्रसारण आया मैडम, और आपके केंद्र में लगा बहुत अच्छा लगा। आज मैं दिशा मूर्ति में मनोरंजन के साथ अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम, और गीत के बोल है खींच मेरी फोटो, गायिका है नितिन मोहन, दर्शन रावल और अन्य गायक हैं।
0: तो आप सुनिएगा अपनी पसंद का ये।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हाँ नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
1: काइले नगर से बात कर रहा मच्छिंद्र हरिदास चांडवले। मैं को जो गाना देने का राजा और रंग चित्रपट का, तो पहली पहचान करने वाली अपनी गुरु होती है माताजी, उसके बाद पिताजी होते हैं, पिताजी के बाद शिक्षक होते हैं, शिक्षक के बाद जो अपने को आध्यात्म वाला जो गुरु मिलता है उसको हम बोलते हैं, जो आपने आंख पे जो मोती बिंदु की पट्टी रहती वो निकलने वाला गुरु मांगता जिंदगी में, तो वो सही रहती वो माँ, सब सुख दुख झेल के सब काम करके अपने को छोटे से बड़ा करती, तो आप उन सबका कर्ज अदा कर सकते, माँ का दूध का कर्ज जिंदगी में कभी अदा नहीं कर सकते।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो।
1: हमारे माँ से पिताजी से जो संस्कार आए ले, हमने हमारे माता जी पिताजी को कभी नहीं बोले।
0: बहुत अच्छी बात बताई आपने मच्छिंद्र जी।
1: अभी मेरा विद भारती का दुकान में कार्यक्रम चालू है, मेरा टेलर काम का बिजनेस है, तो मैं ये बिजनेस कर रहे ले 50 साल से,
0: बचपन
1: स्कूल में चौथी में से था जब तक, तो आज तक लेके हम विद भारती बचपन से सुन के बड़े होते आए ले। और आप जो लोग जो कार्यक्रम करते हैं एक से एक तक का सही सब कार्यक्रम, मेरा सबसे पसंदीदा कार्यक्रम त्रिवेणी में को जो गाना देने का राजा और रंग चित्रपट का।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी दीदी, सबसे पहले तो जबलपुर मध्य प्रदेश संस्कार धानी से प्यार भरा नमस्कार।
0: किसका?
1: अभिषेक सिंह ही बोल रहा हूँ मैडम। तो सबसे पहले तो दीदी, मैं सभी विविध भारती परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको मैं जो स्थापना दिवस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा।
0: चलिए, अच्छी बात है, हम आपकी शुभकामनाएं स्वीकार करते हैं। लेकिन ये बताइए, क्या आपने वो स्थापना दिवस का जो लाइव ब्रॉडकास्ट था 11 बजे से शाम 4 बजे तक?
1: बहुत ही शानदार प्रोग्राम थे, बहुत ही अच्छा लगा, दिन भर बहुत ही आनंद आता रहा। हम तो दिन भर चालू करके लगातार सुन ही रहे थे। जो प्रस्तुति थी और जिन कलाकारों को बुलाया गया दीदी, बहुत ही काबिले तारीफ। विविध भारती में राष्ट्रीय सेवा परिवार का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आगे भी ऐसी ही चीजें आती रहें बहुत ही अच्छा लगता है जी।
0: आपने उसमें अपने विचार प्रकट किए थे, कुछ लिखा किसी विशेष के लिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, शिरकत की थी?
1: जी, सभी प्रोग्राम में जितने भी लाइव चल रहे थे सभी में कमेंट और सभी में किया हुआ दीदी। मैं नियमित श्रोता फेसबुक से भी जुड़ा रहता हूँ, हर प्रोग्राम हर पोस्ट पे आपको कमेंट रहेगा दीदी।
0: हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे लगभग जो कार्यक्रम है वो श्रोताओं को फेसबुक से हम लोग जुड़े रहते हैं और तब करते हैं, तो आपकी जो टिप्पणियाँ हैं, संदेश हैं, वो बहुत जरूरी हो जाते हैं किसी खास प्रोग्राम के लिए जब वो लाइव हो।
1: जी दीदी, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम थे।
0: तो हम भी अपने सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने लगातार इस कार्यक्रम में शिरकत की, हमें संदेश भेजते रहे और हमारे इस खुशी में वो भी शामिल थे, क्योंकि उन्हीं की है विविध भारती। बताइए अभिषेक जी, कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: 1989 की पिक्चर है भ्रष्टाचार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीत दिया, आनंद बख्शी जी के बोल हैं, और अनुराधा पोरवाल और सुरेश वाडेकर जी ने गीत को गाया है। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं।
0: आइए सुने आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222860288, 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक का, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: पंकज उदास की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे। कलाम था राजेश रेड्डी का, मौसीकी पंकज उदास की, एल्बम का नाम था नबील।
1: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
2: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
1: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: तलत अजीज की आवाज में ये था कतील शिफाई का कलाम। सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4 plus 1 is equal to 100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस 1। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4 plus 1 मिलाएंगे तो 100-100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मिताली मुखर्जी की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।

0: को क्यों देखते हो और मेरे पांव की जंजीर को क्यों देखते हो। तुम तो कहते थे मेरी शक्ल से नफरत है तुम्हें, मुझसे छुपकर मेरी तस्वीर को क्यों देखते हो।
1: छुरी से तीर से तलवार से क्या होने वाला है, हमें तो इन हसीनों की नजर ने मार डाला है। नजर जो उठी तो दुआ बन गई, नजर जो झुकी तो हया बन गई, नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई। नजर जब उठी मेहरबान हो गई, नजर जब मिली तो जवां हो गई, जो पलटी तो दिल की जबां हो गई, जो बदली तो एक दास्तां हो गई। नजर से हमने नजर को एक दिन नजर मिलाते नजर से देखा, नजर जो पहुंची नजर तक उनकी, नजर झुकाते नजर से देखा।
2: क्या बात है,
1: दिल

झूठा तुम्हारा प्यार भी झूठा, तुम्हारी जात भी झूठी, तुम्हारे होंठ भी झूठे, तुम्हारी बात भी झूठी, तुम्हारा हर इरादा हर तमन्ना हर गिला झूठा, तुम्हारे फूल झूठे बाग झूठा, आशियां झूठा, वफा झूठी जफा झूठी, सितम झूठा करम झूठा, कसम है सर से लेकर पांव तक तू ऐ सनम झूठा, तुम्हारा नाम झूठा, तुम्हारा

कि अब हमको फुर्सत नहीं, मैं तुम्हें

0: नाज पर हर आदमी कुर्बान होता है, जो अच्छी चीज होती है उधर ही ध्यान होता है। किया था वादा कि कल आएंगे चराग जले और तमाम रात चरागों से दिल के दाग जले। ये दर्द भी दौलत है, ये दाग भी दौलत है, ये जितनी भी दौलत है सब तेरी बदौलत है। बराबर खफा हो बराबर मनाए, ना तुम बाज आओ ना हम बाज आए। क्योंकि भीगी जुल्फों को शानों पर झटक कर छोड़ देते हैं, बरसने वाले बादल अपना भी रुख मोड़ लेते हैं। और ये हुस्न वाले जब भी लेते हैं अंगड़ाई, तो खुदा वाले भी बरसों की इबादत छोड़ देते हैं।
1: क्या बात है,
0: याद आ जाओ तो भूल जाया करो, अपने पलकों के मोती छुपाया करो। आंसुओं से तो सब राज खुल जाएंगे और खयानत मोहब्बत में हो जाएगी। मेरे महबूब तुम हो अमानत।

0: दिलावर बाबू और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे ये कव्वाली।
1: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
2: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
1: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
2: जो कल्की का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना।

0: अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। रेखा भारद्वाज की आवाज है ये।

0: रेखा भारद्वाज की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार थे संजय आनंद झा। आइए अब सुनते हैं सनसेट पॉइंट एल्बम से भूपेंद्र की आवाज में ये रचना। रचना है गुलजार की, संगीतकार विशाल भारद्वाज।
1: रात कच्ची पड़ रही थी, कोई पंछी पास के पेड़ से उड़ा।
0: ये आवाज गुलजार की है।
1: मैं आसमान की तरफ निकल गया। वो पुल के उस किनारे पर आकर खड़ी हो गई जहां से अगला कदम जिंदगी का आखिरी कदम था। एक भोले भाले भेड़ के बच्चे ने उसे रोक लिया। गडरिये भटकी हुई भेड़ों को राह दिखाते हैं, ईसा भी यही करते थे। उसका हाथ पकड़ के वो उसे अपने घर ले गया। अरे ताल से पानी सूखा है, आसमान तो नहीं सूख गया? फिर मेघ आएगा, फिर जल भरेगा। चल

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो है संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: जगजीत सिंह की आवाज थी जावेद अख्तर के बोल थे। इसी के साथ आज का रंग तरंग प्रोग्राम खत्म होता है।
1: रंग तरंग
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनक लता।
1: आगे दिन के 12 बजे हैं और आज इस वक्त आपको हम सुनवा रहे हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। साथ ही साथ बहुत बहुत स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
2: तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, मेहनत हिम्मत और लगन से कल्पना और योजना साकार होती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम।

0: के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
1: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
0: और तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
1: गाँव ढाणी कुतुब जिला हांसी हरियाणा से रामधारी अवाना, अवनी, प्रियांशी, रियांशी, ओजस, अनाया, गुरदीप और बीबी किरत अवाना लिखते हैं।
0: कार्यक्रम उमंग की प्रस्तुतकर्ता आदरणीय विमलेश जी और अजीत जी को सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: 8 सितंबर 2026 को अरुणिमा सिन्हा के संघर्ष से सफलता की कहानी सुनकर वास्तव में बहुत प्रेरणा मिली
1: जी।
0: उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति यह सिखाती है कि निरंतर प्रयास और मजबूत संकल्प के सामने कोई भी शारीरिक बाधा सफलता की राह नहीं रोक सकती। साथ ही लुका छिपी कार्यक्रम ने बचपन की खूबसूरत यादें ताजा कर दी। आपका कार्यक्रम मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद भी है। आपकी कड़ी मेहनत और शानदार प्रस्तुति को दिल से सलाम
1: जी। आपने आगे लिखा है दिनांक 10 सितंबर 2026 को कार्यक्रम उमंग के अंतर्गत भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमी व्यारावाला के जीवन एवं उपलब्धियों की जानकारी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक रही। वहीं माउंटेन मैन दशरथ पांची के संघर्ष और दृढ़ संकल्प की प्रेरणादायक कहानी ने हमें सिखाया कि कठिन परिश्रम और अटूट संकल्प से बड़ा लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। आपका ये कार्यक्रम भारत की विविधता में एकता और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों से परिचित कराता है, जिसका मुझे अपने परिवार के साथ बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बेहतरीन प्रस्तुति के लिए दिल से धन्यवाद एवं हार्दिक आभार।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार, क्योंकि आप परिवार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं
1: जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
0: आप सबके संदेशों के लिए हमारा आभार। श्रोताओं, इसी तरह से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। पुरस्कारों और सम्मानों की चर्चा के इस पड़ाव पर आज हम बात करेंगे भारत के साहित्य जगत के अत्यंत प्रतिष्ठित सम्मान की, ज्ञानपीठ पुरस्कार की।
1: जी हाँ श्रोताओं, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को कम होती है। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: जी विमलेश जी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कब हुई और इसे देने का उद्देश्य क्या है, इसकी जानकारी अक्सर लोगों को नहीं होती। तो आइए अब जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
1: ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा की गई थी और पहला पुरस्कार 1965 में प्रदान किया गया।
0: तो हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला था।
1: जी बताती हूँ, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के महान कवि जी शंकर कुरुप को वर्ष 2065 में प्रदान किया गया था। उन्हें उनके काव्य संग्रह उड़क कुझल यानी बांसुरी के लिए सम्मानित किया गया था।
0: बहुत सुंदर, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ही भारतीय भाषाओं के साहित्य को सम्मान देने से हुई।
1: जी बिल्कुल श्रोताओं, जैसा कि हम जानते हैं हमारा भारत अनेक भाषाओं और साहित्यिक परंपराओं वाला देश है। ज्ञानपीठ पुरस्कार का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक सृजन को पहचान और सम्मान देना है। तो अजीत जी, किन किन भाषाओं के साहित्यकारों को ये पुरस्कार मिल सकता है?
0: विमलेश जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के साहित्य से संबंधित है
1: जी।
0: समय के साथ साथ इसका दायरा बढ़ा है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ओडिया, असमिया, पंजाबी, कश्मीरी, मैथिली और अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्यकार अब तक इस सम्मान से अलंकृत हो चुके हैं
1: जी। यानी ये पुरस्कार केवल किसी एक भाषा के साहित्य को नहीं, बल्कि भारत की विविध साहित्यिक सृजन एवं परंपराओं को सम्मान देता है।
0: जी हाँ बिल्कुल सही, यही इसकी सबसे सुंदर विशेषताओं में से एक है।
1: अजीत जी, अक्सर एक प्रश्न मेरे मन में आता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का नाम ज्ञानपीठ क्यों रखा गया?
0: बहुत सुंदर प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ का अर्थ है ज्ञान का स्थान या ज्ञान का आसन। नाम से ही स्पष्ट है कि यह पुरस्कार साहित्य और ज्ञान की साधना को सम्मान देने की भावना से जुड़ा हुआ है।
1: तो इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कुछ प्रसिद्ध साहित्यकारों के नाम भी तो बताइए, हमारे विद्यार्थी श्रोता जरूर इस जानकारी से लाभान्वित होंगे।
0: जी जरूर, हिंदी साहित्य में सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, कृष्ण सोबती और विनोद कुमार शुक्ल जैसे साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं
1: जी। तो चलिए अजीत जी, अब लगे हाथों आपसे भी एक प्रश्न। और वो प्रश्न ये है कि भारतीय साहित्य में ज्ञानपीठ पाने वाली पहली महिला कौन थी?
0: ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है विमलेश जी। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता पहली महिला आशापूर्णा देवी थी।

0: जिन्हें 1976 में बांग्ला साहित्य के लिए यह सम्मान मिला था।
1: जी
0: तो अब एक प्रश्न मेरी ओर से, क्या यह पुरस्कार केवल कविता के लिए दिया जाता है?
1: नहीं अजीत जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसमें कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य साहित्यिक रचनाएं भी शामिल होती हैं।
0: श्रोता, आपकी जिज्ञासा तो जरूर बढ़ रही होगी कि इस पुरस्कार में मिलता क्या है। तो आपको हम बता दें, इस पुरस्कार के साथ साथ प्रशस्ति पत्र, वाग्देवी की प्रतिमा और नकद राशि भी दी जाती है।
1: आपने कहा वाग्देवी की प्रतिमा यानी माँ सरस्वती की प्रतिमा।
0: जी हाँ, भारतीय परंपरा में माँ सरस्वती को ज्ञान, विद्या और वाणी की देवी माना जाता है।
1: जी
0: इसीलिए साहित्य के सर्वोच्च सम्मानों में वाग्देवी की प्रतिमा का होना तो बहुत ही अर्थपूर्ण है।
1: तो श्रोताओ, आज हमने जाना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरू हुआ, पहला पुरस्कार किसे मिला और इसका साहित्य में क्या महत्व है।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात श्रोताओ, भारत की विविध भाषा शिक्षक, मराठी हो या कन्नड़, हर भाषा अपने साथ एक समृद्ध साहित्यिक प्रवाह लेकर चलती है।
1: और ज्ञानपीठ पुरस्कार उस साहित्यिक विविधता को सम्मान देने वाली एक महत्वपूर्ण परंपरा है।
0: जी हाँ बिल्कुल। तो आइए श्रोताओ, हम भी अपनी मातृभाषा और स्थानीय भारतीय भाषाओं के साहित्य को पढ़ें, समझें और आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाएं।
1: क्योंकि भाषा केवल बोलने का माध्यम नहीं बल्कि हमारी स्मृतियों, विचारों और संस्कृति की पहचान भी है। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी आज की जानकारी, जरूर लिख लीजिएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की जानकारी से।
0: है श्रोताओ, भाषा का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला और उनकी भाषा का नाम बताइए।
0: तो 8800440559 हमारा IVRS नंबर है। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर हमारे प्रश्नों के उत्तर या प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो आप उमंग कार्यक्रम में सुनते हैं। तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है सीखो।
1: ये कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ सिंह जी द्वारा रचित कविता सीखो का संगीत रूपक है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि हमें प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए।
0: सीखो। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। फूलों से नित हंसना सीखो,
2: फूलों से नित हंसना सीखो,
0: भौरों से नित गाना,
2: भौरों से नित गाना,
0: तरु की झुकी डालियों से नित,
2: तरु की झुकी डालियों से नित,
0: सीखो शीश झुकाना,
2: सीखो शीश झुकाना,
0: सीख हवा के झोंकों से लो,
2: सीख हवा के झोंकों से लो,
0: कोमल भाव बहाना,
2: कोमल भाव बहाना,
0: दूध तथा पानी से सीखो,
2: दूध तथा पानी से सीखो,
0: मिलना और मिलाना,
2: मिलना और मिलाना,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: सूरज की किरणों से सीखो,
2: सूरज की किरणों से सीखो,
0: जगना और जगाना,
2: जगना और जगाना,
0: लता और पेड़ों से सीखो,
2: लता और पेड़ों से सीखो,
0: सबको गले लगाना,
2: सबको गले लगाना,
0: दीपक से सीखो जितना,
2: दीपक से सीखो जितना,
0: हो सके अंधेरा हरना,
2: हो सके अंधेरा हरना,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
2: पृथ्वी से सीखो प्राणी की,
0: सच्ची सेवा करना,
2: सच्ची सेवा।

0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जलधारा से सीखो आगे,
1: जलधारा से सीखो आगे,
0: जीवन पथ में बढ़ना,
1: जीवन पथ में बढ़ना,
0: और धुएं से सीखो हरदम,
1: और धुएं से सीखो हरदम,
0: ऊंचे ही पर चढ़ना,
1: ऊंचे ही पर चढ़ना।
0: अभी आपने सुना इस कविता का आदर्श वाचन। आइए अब सुनते हैं इस कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना बच्चों ये गीत कैसा लगा? अच्छा लगा ना? हमने सुना कि फूलों से, पक्षियों से, नदी से, दूध और पानी से और धुएं से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना? सच तो ये है कि पूरी प्रकृति से हम कुछ ना कुछ जरूर सीख सकते हैं, बस जरूरत है ध्यान से देखने और सोचने की, है ना? इतना ही नहीं, हम अपने मित्रों से और बड़ों से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पता है हम जिससे भी मिलते हैं ना, उसे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मालूम है जो शायद हमें मालूम नहीं है। तो बच्चों, अब आपके लिए एक काम, पूरी कविता एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए कि जिनका वर्णन कविता में है उन्हें छोड़कर

0: और कौन कौन सी चीजें प्रकृति में हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, तो जरा सोचिए और पता कीजिए और अपने बड़ों और मित्रों से साझा कीजिए। अभी आपने सुना कार्यक्रम सीखो, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
1: ये कार्यक्रम भारतीय सेना के महानायक और वीर योद्धा सूबेदार जोगिंदर सिंह जी के जीवन और भारत चीन युद्ध के समय उनके द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता और शौर्य का विवरण देता है। उन्हें मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: जब तुम लौट कर जाओ तो लोगों से हमारे बारे में कहना कि तुम्हारे कल के लिए हमने अपना आज कुर्बान कर दिया, अपना आज कुर्बान कर दिया। जरूर ये शब्द किसी ऐसे युद्ध वीर के होठों से निकले हैं जिसने देश की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आज हम भारत माता के एक ऐसे ही सपूत की चर्चा करेंगे जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध में अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया और देश का मस्तक गौरव से ऊंचा कर दिया।
1: वो युद्ध नायक है भारतीय सेना के सूबेदार जोगिंदर सिंह। उनका जन्म 28 सितंबर 1921 को पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव महाकला में हुआ था। बचपन से ही वो बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे और अपने स्कूल में एक मेधावी विद्यार्थी माने जाते थे। जोगिंदर सिंह सेना में भर्ती हो गए।
0: कार्य के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के प्रति सजगता के कारण यूनिट के सभी लोग उनका सम्मान करते थे। अधिकारी गण भी उनसे प्रसन्न थे। धीरे धीरे उन्नति करते हुए वो यूनिट इंस्ट्रक्टर बन गए।
1: सन 1962 जोगिंदर सिंह की यूनिट में खेल अभ्यास चल रहा था। उनकी टीम लखनऊ में संपन्न होने वाली बास्केटबॉल टूर्नामेंट की तैयारी कर रही थी।
2: अरे ये क्या, इसका मतलब क्या वॉर शुरू हो गई?
3: हाँ
1: ये था 1962 का वर्ष। भारत चीन सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। चीनी फौज बख्तरबंद गाड़ियों, तोपों और आधुनिक हथियारों के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ चली थी। लेकिन अब तक हमला नहीं हुआ था।
0: भारतीय सीमा की ओर चीनी फौज की बढ़त ने साफ संकेत दे दिया था कि युद्ध होकर रहेगा। जोगिंदर सिंह 16 रेजिमेंट में थे। उनकी बटालियन को तुरंत लखनऊ से वापस आने का संदेश दिया गया और फौरन उन्हें नेफा में मोर्चा संभालने का आदेश दिया गया।
1: नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आज ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश कहलाता है। सूबेदार जोगिंदर सिंह की पलटन को बूमला तवांग में तैनात किया गया। बूमला तवांग एक अत्यंत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जहां लगभग

0: हर समय बर्फ जमी रहती है। भारतीय सेना को ऐसे पर्वतीय और बर्फानी क्षेत्र में युद्ध करने का अनुभव ना के बराबर था। उनके पास वहाँ की भयंकर ठंड को झेलने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी नहीं थे।
1: इतना ही नहीं, भारतीय सेना के पास हथियारों और गोला बारूद की भी कमी थी। जोगिंदर सिंह पलटन के इंचार्ज थे। उन्होंने 1947-48 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। वो एक अनुभवी योद्धा थे। उनकी टुकड़ी में वो एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें सैन्य युद्ध का पूर्व और पर्याप्त अनुभव था।
0: जहां उनकी टुकड़ी में केवल 29 सैनिक ही थे, वहीं चीन की सेना में सैनिकों की संख्या तो बहुत थी ही। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बर्फीले क्षेत्र में युद्ध लड़ने का अनुभव, भारी मात्रा में रसद और ठंड से निपटने के लिए पर्याप्त गर्म कपड़े भी थे।
1: समय की गंभीरता को भांपते हुए सूबेदार जोगिंदर सिंह की टुकड़ी समझ चुकी थी कि ये युद्ध आसान नहीं होगा।
2: सैनिक भाइयों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि दुश्मन ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। वो हम पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो अब हमें भी फौरन खाइयां खोदना शुरू कर देना चाहिए। लग जाओ काम पे।
3: जी सूबेदार साहब।
2: हम 29 लोग हैं, तो कम से कम 4 खाइयां और 3 बंकरों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथियों, बेशक दुश्मन के पास बेहतर हथियार हैं और वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें याद रखना है कि आज भारत माता का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, तो हर एक हिम्मत बढ़ा के रखेगा।
3: जी सूबेदार साहब।
2: बोले सोनिहाल।
3: सत श्री अकाल।
0: दिन था 20 अक्टूबर 1962, सुबह 5:30 बजे का समय। कड़ाके की ठंड थी।
4: तेजा सिंह, और चाट बना दे यार, सवेर होगी।
5: साहब,

0: भीषण संग्राम हो रहा था। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस भारी संख्या में चीनी सेना, तो दूसरी ओर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में सिख रेजिमेंट के मात्र 29 सैनिक। चीनी सेना के पास बल था तो भारतीय सेना के पास मनोबल।
1: इस बीच जोगिंदर सिंह बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी लाइट मशीन गन से हमला जारी रखा और शत्रु पक्ष के बहुत से सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: और अब जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। भारतीय सैनिकों के पास गोलियां कम थी और वो बहुत देर तक गोला बारूद से चीनी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसलिए सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अब आमने सामने के युद्ध का रास्ता चुना।
1: सिख सैनिकों ने अपनी बंदूकों पर बायोनेट यानी संगीन लगाई और जो बोले सो निहाल के युद्ध घोष के साथ प्रचंड वेग से चीनी बंकरों पर टूट पड़े। संगीन के पहर ने शत्रु शिविरों में खलबली मचा दी।
2: जो बोले सो निहाल।

बोमला तवांग दर्रे के इस युद्ध में जोगिंदर सिंह के परम मित्र सूबेदार काला सिंह भी शामिल थे और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी भी। उन्होंने उस दिन के युद्ध की घटना को याद करते हुए बताया।

0: उस दिन हमारे सैनिकों के रौद्र रूप को देखकर चीनी सैनिक बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने सिख रेजिमेंट के जवानों को तूफान की तरह अपने कैंप की तरफ बढ़ते हुए देखा था। उनकी दाढ़ियां खुली हुई थी और हवा में लहरा रही थी। हालांकि वो तादाद में बहुत कम थे, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि चीनी कैंपों पर वो कह ठा देंगे।
1: इस आमने सामने के युद्ध में भी सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने असाधारण शौर्य का परिचय दिया। उनके रण कौशल से प्रतिपक्ष के बहुत से सैनिक खेत रहे। वो गंभीर रूप से घायल होने पर भी पूरी ऊर्जा के साथ लड़ते रहे और अंत में जमीन पर गिर गए।
2: इसके बाद भी उन्होंने धीरे धीरे रेंगना शुरू किया, लेकिन एक बर्फीली चट्टान से गिरकर खाई में बर्फ की परतों के नीचे दब गए।
1: इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा और ना ये पता चला कि वो कहां हैं। सूबेदार जोगिंदर सिंह को उनकी कर्तव्य निष्ठा, सशक्त और प्रेरणादायक सैन्य नेतृत्व और असाधारण वीरता के लिए देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: बाद में पता चला कि वो चीन की सेना द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया है। ये जानकर चीन ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को सूबेदार जोगिंदर सिंह की अस्थियां उनकी बटालियन के सुपुर्द कर दी। जी हां, सूबेदार जोगिंदर सिंह की अदम्य वीरता को देखकर चीन की सेना भी सम्मान से भर गई और चीन ने ससम्मान उनकी अंतिम क्रिया भी की थी।
1: उनका अस्थि कलश मेरठ के सिख रेजिमेंट सेंटर में लाया गया और वहां उनके सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया।
2: सूबेदार जोगिंदर सिंह, आपको हमारा शत शत नमन।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम सूबेदार जोगिंदर सिंह।
4: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार, इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
5: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
4: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी भी

0: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
1: श्रोताओ, इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को
2: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
1: कुसुमलता,
2: वीरेंद्र
1: और हमारी आज की विशेषज्ञ
2: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में

0: हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
1: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
3: जब आप

0: हीरो को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
1: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
0: जो कल्की का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी

और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: सौतन की बेटी इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के स्वर में। रचना थी सावन कुमार की, संगीतकार थे वेदपाल। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। तो दोस्तों, अब तक आपको पता चल ही चुका है सुरीला सफर का कंसेप्ट क्या है। इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं एक इबारत, और उस इबारत से आपको शब्द चुनने होते हैं, गाने चुनने होते हैं, और अपनी टिप्पणियां, अपनी यादें, अपनी बातें साझा करनी होती है। तो बहुत सारे श्रोताओं ने यादें बातें साझा की हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं की है वो अपना मोबाइल उठा ले और विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाएं और टाइप करें अपनी बात। तो आज की इबारत हम आप तक पहुंचा देते हैं जो लोग अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। दरवाजे पर कौन है? डाकिया। इस जमाने में डाकिया डाक लाया? हाँ। चिट्ठी? हाँ। क्या लिखा है? ख्वाब। साथ में है तोहफा। याद है बचपन में माँ पिता भाई बहन को चिट्ठी लिखते थे, कभी घर की खैरियत पूछते, कभी छुट्टियों में आने का वादा करते, कभी महबूब के नाम खत चुपके से लिखा जाता था, उसे किसी के हाथों पहुंचाया जाता था, रेडियो से गाने गूंजते, खत लिखते समरिया के नाम बाबू, और तेरा खत ले के सनम पाँव कहीं पड़ते हैं, वगैरह वगैरह। लिखा है तेरी आंखों में, लिखे जो खत तुझे। इन गानों को नोटबुक में नोट किया करते थे।

0: फिर कभी इन्हें पत्रों में लिखा जाता, कभी पत्रावली में भेजकर पढ़े जाने का इंतजार भी किया जाता था। आपने किया इंतजार? बहरहाल तो फिर अपनी चिट्ठी वाली याद साझा करो ना। वो खिलखिलाकर हंस दी और बोली, तुमने तो एक बार बिना शब्द लिखे कोरा लिफाफा भेज दिया था। वो बोला, उसमें सारे शब्द थे, बस तुम्हें पढ़ने नहीं आया था, तुम्हें पढ़ने थे वो शब्द। और खत में शेरो शायरी वाला लम्हा, वो फिर खिलखिला दी, आज मोबाइल पर संदेश आते हैं, नीली टिक लगती है जवाब भी आ जाता है, मगर वो खत की खुशबू, वो लिफाफे को बार बार खोलना, वो लिखावट में किसी को महसूस करना, किसी की छुअन को महसूस करना, सब कुछ कहीं पीछे छूट गया। दरवाजे पर अब डाकिया नहीं आता, मगर मन में आज भी किसी की चिट्ठी का इंतजार होता है। चिट्ठी आ जाए तो दौड़कर लगता है कि वो डाकिया सामने खड़ा है। तो बताइए दोस्तों, आज भी आप पत्र लिखते हैं? और पत्र में क्या कभी गुलाब का फूल भेजते हैं, बनाते हैं ग्रीटिंग कार्ड अपने हाथों से, ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं किसी खास मौके पर, जन्मदिन पर, दिवाली पर, दशहरे पर, और दशहरा तो करीब है ना, दिवाली भी करीब है, नए साल पर, तो कौन हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं आज के शब्द? अब तक तो आप बूझ ही चुके हैं, और इन शब्दों से जुड़े हुए गाने जरा बूझिए। लिखने से, डायरी लिखने से, किताबों में गुलाब के फूल रखने से, वो एक विद्या की पत्ती रखी जाती थी किताबों में, वो सब, वो सारी बातें आज याद कर डालिए और लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। अब हम शुरू करते हैं सिलसिला, देखिए ना डाकिया डाक लाया है, सुनिए और जरा हमें बता दीजिए कि कौन है डाकिया और कौन है अभिनेत्री इस फिल्म में। फिल्म है पलकों की छांव में, तो समझ गए ना, बूझिए डाकिया कौन है, अभिनेत्री का नाम, और साथ में अपनी बातें यादें साझा करते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai।
1: डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया।

0: क्या किया बाबू?
1: क्या री?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन? बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी का लिख दे।

हमारे घर तो आते हैं और हमें तो आज भी इंतजार रहता है, चिट्ठियों का, पत्रिकाओं का, किताबों का। आपको इंतजार रहता है क्या? इंतजार कीजिए और आप कुछ ऐसा कीजिए कि डाकिया आपके घर, आपके दरवाजे पर दस्तक दे। थोड़ी स्टाइल बदल गई है इस गाने में, डाकिया साइकिल से आ रहे हैं और लोग दौड़ रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। पैदल भी आते हैं, बाइक से आते हैं, ऑटो रिक्शा से आते हैं। बहरहाल इंतजार कीजिए तो डाकिया आया करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ चिट्ठियां आती रहें, तो पहले आप तो लिखिए चिट्ठियां। किसको लिखते हैं आप चिट्ठी, और क्या आज भी कभी किसी मौके पर चिट्ठी लिखते हैं? कुछ खास त्यौहार हैं जहां पर बगैर चिट्ठी के काम नहीं चलता है, जैसे कि राखी का त्यौहार है। बहन भाई को चिट्ठी जरूर लिखती है, भाई बहन को चिट्ठी जरूर लिखते हैं। आप कब किन मौकों पर लिखते हैं? एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो अतीत के गलियारे खोल दिए और मैं हॉस्टल की यादों में खो गई। कैसी चिट्ठियां सभी की आती थी और हम सब बेल बजाने का इंतजार करते थे, चिट्ठियां लेने के लिए उत्सुक रहते थे। जिनकी चिट्ठी नहीं आती थी वो निराश हो जाती थी। हॉस्टल वार्डन हमेशा आश्वासन देती थी कि कल जरूर पत्र आएगा। तो अब जरा बताइए कि ये जो इंतजार वाला लम्हा है, बहुत सारी फिल्मों में भी है, किस फिल्म में खत पढ़ने वाला दृश्य है? किस फिल्म में आपने देखी कोई फिल्म जिसमें कि पत्र का इंतजार हो रहा है? और वो गाने भी सुझाते चलिए, वो फिल्में भी सुझाते चलिए। और बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। राजेश खन्ना और हेमा मालिनी थे इस फिल्म में, बहुत त्वरित जवाब दिया है। एक श्रोता ने शिकायत लिखी है, भाई पत्र में शिकायतें भी लिखी जाती थी, जैसे कि बहुत सारी बातें, अरे आपने तो चिट्ठी का जवाब जल्द नहीं दिया, इतने दिन हो गए और आप तो आए नहीं, और हमने कितना इंतज़ार किया, और भी बहुत सारी शिकायतें होती है। आप कौन सी शिकायत किया करते थे? हमारी एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि दो बार डाला कमेंट लेकिन किसी को दिख ही नहीं रहा, शायद आपको भी नहीं दिख रहा है ममता जी। मैं क्या करूं, ऐसा दो तीन दिन में एक बार होता ही है। भाई हमें तो दिख गया, लेकिन शिकायत के अलावा कोई बात भी तो लिखिए कि हम श्रोताओं तक आपकी बात पहुंचा दें, चिट्ठी से जुड़ी हुई। एक श्रोता ने लिखा है कि तेरा खत लेके सनम पांव कहीं रखते हैं हम। फिल्म के इस गाने में नायिका चिट्ठी पढ़कर बेहद खुश है। कभी कभी किसी की चिट्ठी आने पर इस तरह की खुशी मिलती है, और दरवाजे बंद कर ऐसे ही हाव भाव हुआ करते थे और किसी के सामने नहीं पढ़ना होता था, उसे छुपाकर ही पढ़ा जाता था, क्योंकि चिट्ठियां भावनात्मक लगाव से जुड़ी होती थी और आंखों को पनीली कर देती थी। तो बताइए जरा कि आपने कौन सा पत्र ऐसा पढ़ा है कि आपको छुपाने की जरूरत पड़ी? किसको लिखा था वो पत्र कि आपने छुपाया? हालांकि बहुत सारे पत्र छुपाकर लिखे जाते थे। बहरहाल चिट्ठियों में फूल भी भेजे जाते थे और गुलाब की पंखड़ी चिपकाई जाती थी, और एक विद्यापत्ति आती थी वो भी चिपका दिया जाता था जब कुछ पढ़ने लिखने की बात होती थी। आपने कभी गुलाब या कोई फूल चिपकाकर भेजा है? जरा बताइए। ये तो फिल्म का नाम तो आप बूझ गए, सरस्वती चंद्र। इसमें कौन है हीरोइन? हीरोइन का नाम बूझना है आपको, चाहे तो हीरो का नाम भी बता सकते हैं।

फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। बहुत सारे श्रोताओं से हमने पूछा कि भाई आपने भी कभी फूल भेजा था, तो अभी तक तो जवाब नहीं आया, लेकिन अगर हाँ आपने कभी पत्र में फूल रखकर भेजा था तो ज़रूर बताइए। और फूल मुरझा जाते थे लेकिन उसकी खुशबू बाकी रहती थी। जब कभी कई साल बाद वो चिट्ठी निकाली तो उसमें मुरझाया हुआ फूल, लेकिन ऐसे लगता था वो ताजगी वापस लौट आई है, वो खुशबू वापस लौट आई है। हमने पूछा था कौन है हीरोइन, नूतन। सभी श्रोताओं ने इसका जवाब सही दिया, और मनीष और साथ में सुलोचना भी है इस फिल्म में। एक श्रोता ने लिखा है कि बस कुछ ही लम्हों के बाद लाजवाब प्रस्तुति में सुरीला सफर शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही शुरू होगा ममता जी द्वारा पूछे जाने वाले एक से बढ़कर एक दिलचस्प सवालों का सिलसिला। तो हम भी कमर कस के आपके पूछे जाने वाले हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो फिर दीजिए उत्तर फटाफट। और जब ये हम पहली पूछते हैं तो पहली का जवाब तो आप फटाफट दे ही देते हैं, साथ में ये भी बताते चलिए कि चिट्ठी आप अभी भी लिखते हैं या नहीं। किसका पत्र आपके नाम आया और बड़ा लंबा हुआ करता था पत्र, क्योंकि कई लोग पत्र लंबे लिखने के आदि होते हैं, कि जैसे किसी के घर में भाई होते हैं लंबा पत्र लिखते हैं, कुछ कविताएं भी उसमें लिख देते हैं, कुछ थोड़े से किस्से भी बयां कर देते हैं, बहुत तफसील से और फुर्सत से पत्र लिखते हैं। ऐसा कोई पत्र आपके पास है, संभाल कर रखा है, आपने कोई चिट्ठी संभाल कर रखी है तो ज़रूर बताइए। अब जो श्रोता हैं उन्होंने लिखा है कि आपके द्वारा पूछा जाने वाला पहला प्रश्न शायद यही होगा कि बताइए अपनी पहली बार सबसे पहले खत किसको लिखा था। क्या बात है भाई, ज़रूर बताइए। और अब दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि बताइए आपने विविध भारती में कभी कोई पत्र लिखा है। बिल्कुल, ये भी हम पूछ रहे हैं। और हमारी ओर से जो आप सवाल कर रहे हैं ये हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, तो ज़रूर बताइए, क्योंकि हमने तो विविध भारती के नाम पत्र लिखे थे, पत्रावली कार्यक्रम में शामिल भी हुआ था, तो आपकी कोई याद है तो ज़रूर साझा कीजिए। और मन चाहे गीत कार्यक्रम में भी आप पत्र लिखते ही होंगे, तो वो भी आप बता सकते हैं। और आगे इन्होंने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गीत सुनाए जा रहे होंगे और हम भी आनंदित होकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका कि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और शुरू से आखिरी तक इस कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि डाकिया जो खाकी वर्दी में होते थे, बरोठे की कुंडी खड़खड़ा कर जोर की आवाज लगाते थे, सारे घर के लोग सब काम छोड़कर घर के दरवाजे पर दौड़ पड़ते थे, किसकी चिट्ठी है, किसके नाम आई है, फिर डाकिया एक एक करके जो पोस्ट आती थी दे देकर चले जाते थे, फिर सब पहले चिट्ठी पढ़ते थे, बाद में बाकी काम, और बहुत अच्छी बुरी खबर देने का काम तार करता था। पति या घर के और आदमी जो बाहर काम करते थे तो पहली तारीख को मनी ऑर्डर का इंतजार बड़ी बेसब्री से होता था। वो हड़बड़ाहट, वो बेचैनी, वो सिर्फ एक डाकिया की वजह से ही संभव होता था। पर अब वो जमाना कहाँ, एक सेकंड भी नहीं लगते खबर पैसा और हालचाल आदान प्रदान करने में। बिल्कुल सही बात है, रक्षाबंधन में राखी हो या भाई दूज में टीका, सब डाकिया ही बाहर पहुंचाते थे, और डाकिया का बड़े बेसब्री से इंतजार होता था। डाकिया का लोग स्वागत करते थे उन्हें, गाँव में तो बाकायदा गुड़ की डली ले आते थे, गुड़ और पानी

लाया करते थे। कई लोग दरवाजे पर अपने खाट बिछाकर उनका स्वागत करते थे। अगर कोई अच्छी खबर ले आते थे तो उनके साथ देर तक गुफ्तगू होती थी। फिर पूरे परिवार के सदस्य एक साथ बैठकर सुनते थे पत्र। पढ़ने वाला कोई एक होता था, सुनने वाले सभी, और सबकी आंखें नम होती थी। कोई अपने आंचल से आंसू पोंछ रहा होता था, कोई रुमाल से। बहरहाल बहुत सारी यादें, आप अपनी यादें साझा कीजिए। और अब अगला गाना ये

फिल्म का नाम बता दीजिए। आसान सा सवाल है, फिल्म का नाम पूछना है आपको। और ये भी बताते चलिए किसके पत्र आपके नाम ज्यादा आते

अर्धांगिनी फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, वसंत देसाई का संगीत था। और श्रोताओं ने सही जवाब दिया, कुछ श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि हमें फिल्म का नाम नहीं पता, बता दिया हमने। और एक श्रोता ने लिखा है कि लंबा पत्र प्रेमिकाओं और पत्नी को लिखी जाती थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अपने गर्लफ्रेंड को गुलाब फूल दिया और वो फूल एक दिन अपने पिता के सामने मिल गया खोलते समय, मैंने बुक में दिया था, अब वो मेरे साथ है। और एक श्रोता ने लिखा है कि पत्रों में फूल आदि चिपका कर देने की असफल कोशिश मैंने भी बहुत बार की है, मगर बदले में हर बार मेरे मुंह पर किसी न किसी का हाथ ही चिपका है। और एक श्रोता ने लिखा है कि चिट्ठी न आने का दर्द बॉर्डर फिल्म में देखा था, और जब चिट्ठी आती है तो पढ़कर सुनाने का वाकया भी बड़ा मजेदार है। गाना बजता है, संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, ये पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। सचमुच ये चिट्ठी वाली बातें और चिट्ठी वाले गाने बेहद मार्मिक हो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो खुशबू से भरी चिट्ठियां महका देती थी, रोम रोम को संवेदनाओं से भरे शब्द कितने सुकून भरते थे, और हाँ, हर रोज 11 बजे पोस्टमैन का इंतजार सबको रहता था। और एक श्रोता ने बताया है कि उपन्यास गोवर्धन राम माधवराम त्रिपाठी के उपन्यास से बनी फिल्म थी सरस्वती चंद्र। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी मम्मी ज्यादातर खत मामा जी को राखी पर भेजती थी और मुझसे लिखवाती थी। उसमें सबसे पहली लाइन होती थी, आदरणीय मामा जी, यहाँ सब कुशल मंगल है, आशा करती हूँ वहाँ भी सब कुशल मंगल से होंगे, मुझे बहुत याद आता है वो सब। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं एक बंगालन हूँ, सिर्फ और सिर्फ विविध भारती के पत्रावली कार्यक्रम में चिट्ठी लिखने के लिए मैं अपने आप बगैर हिंदी की कोई औपचारिक तालीम के हिंदी सीखी, वो भी विविध भारती सुन सुन कर। क्या बात है भाई, बड़ा अच्छा लगा ये जानकर। एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत ज्यादा उस दौर में आने वाले हल्के पीले रंग का पोस्टकार्ड और उसके साथ जवाबी पोस्टकार्ड भी साथ में आते थे, जब पोस्टकार्ड को अन्य व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं। अंतर्देशीय पत्र जो नीले रंग का चारों तरफ से पैक हो जाता था, उसे दूसरा नहीं पढ़ सकता था। इसके अलावा बैरंग चिट्ठी, ये एक सफेद कागज पर लिखे जाने वाला अपनी

व्यवस्था का पत्र होता था जिसका पेमेंट पेनल्टी के रूप में पहुंचाने वाले जिसके पास पहुंचता था वो अदा करते थे। कई बार बहुत आर्थिक तंगी के कारण भी कुछ चिट्ठियां बैरंग आती थीं जो आपको अदा करना पड़ता था, जिसकी कीमत अदा करनी पड़ती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाम अभी भी पत्र आते हैं, वे बहुत अच्छे इंसान हैं, अपने कार्य में बहुत ही कुशल हैं वो जो चिट्ठी पहुंचाते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सगाई और शादी के बीच 6 माह का गैप होने के कारण हम दोनों का पत्रों का सिलसिला चला। वो चिट्ठियां हमने आज भी सहेज कर रखी, उस लिफाफे को हमने दिया है अमूल्य निधि और 36 बरस हो गए। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अमीन साहनी साहब को पत्र लिखा था। और भी बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं अपनी बातें, अपने जज्बात। तो आप भी अगर आपने नहीं लिखा तो लिखिए और जरा बताइए फिल्म का नाम और कौन है हीरो हीरोइन।

कन्यादान फिल्म का ये गाना था और हमने पूछा था कौन है हीरो कौन है हीरोइन। शशि कपूर और आशा पारेख हैं और सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द

जवाब दिया है। इधर हमने सवाल पूछा नहीं कि उधर जवाब आने शुरू हो गए। वही साथ में अपनी बातें और यादें भी साझा करते चलिए कि किनके पत्र आपने संभाल के रखे हैं। बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमने तो आज भी कुछ चिट्ठियां संभाल के रखी हैं, क्या आपने भी रखी हैं? वैसे जब ये बात आती है, संभाल के रखने की बात आती है, तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि अब जगह नहीं बची है। भाई, बाकी चीज़ों के लिए आपके पास जगह है, लेकिन किसी की लिखी चिट्ठी के लिए जगह नहीं है। किसके पत्र आपके पास ज्यादा आते थे, जरा ये बताइए। सहेलियों के पत्र, पिता के पत्र, पति का, या फिर किसी और का? क्या एक ही शहर में रहते हुए एक दूसरे को पत्र लिखा है? कई बार, एक जमाना था जब लड़कियां बहुत जल्द से घर से नहीं निकलने पाती थी, तो वो पत्रों से अपनी बात एक दूसरे से, अपनी सहेलियों से साझा करती थी। क्या आपने भी ऐसा किया है? एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पास मेरे पापा जी का पत्र है, अब वो नहीं है पर पत्र में उनकी यादें हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज छत्तीसगढ़ के एक डाकिये की याद आ गई, जो ठीक 11 बजे आया करता था। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मैंने विविध भारती के नाम पत्र लिखे मनचाहे गीत में, अब तो पोस्ट कार्ड आसानी से नहीं मिलते हैं और पत्र वाला डब्बा भी नहीं मिलता है, मतलब पोस्ट बॉक्स भी आसानी से नहीं मिलते हैं। भाई, अगर शौक है तो विविध भारती के नाम तो आप पत्र लिख ही सकते हैं। वैसे भी अभी लंबी तादाद में श्रोताओं के पत्र आज भी आते हैं मनचाहे गीत कार्यक्रम के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तो पहली बार और सिर्फ एक ही खत मेरी दीदी ने मेरे लिए भिजवाया था मेरी छोटी बहन के हाथों। वो खत आज भी मेरे पास है, पर अब न ही मेरी दीदी मेरे साथ है न छोटी बहन। मैं जब भी उसे पढ़ती हूँ आंखें नम हो जाती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आपका खत मिला फिल्म शारदा रामेश्वरी पर ये फिल्माया गया हुआ है, मतलब जो मैंने पूछा था कि कोई फिल्म की सिचुएशन जहां पर खत है, पत्र पढ़ा जा रहा है, हकीकत फिल्म में भी एक दृश्य आता है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये बात बहुत हंसी की है, मैं आप सबको लेकिन बताऊंगा। उस समय 16 बरस का रहा होऊंगा, मैंने एक लड़की को चुपके से एक पर्ची में कुछ लिखने के बाद उस पर्ची को किसी बच्चे के हाथों उस लड़की को देने के लिए कहा, लेकिन वो पर्ची लेकर उस लड़की की मम्मी को दे आया। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि ऐसे विषय को आज आपने छेड़ दिया है जिससे 90% श्रोताओं का अतीत जुड़ा हुआ है, अतः सभी अपने अतीत को खंगाल अनुभवों को साझा करने में जुटे हुए हैं। तो जरा जल्दी अतीत को साझा कीजिए, क्योंकि अब घड़ी की ओर देखिए 1:30 हो रहे हैं, तो अब आधे घंटे और हैं आपके पास। जल्दी जल्दी अपनी अतीत की बातें साझा कीजिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। एक श्रोता ने लिखा है कि जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है पत्र, गांव से शहर पढ़ने आया तब घर वालों से खत के द्वारा ही संदेश का आदान प्रदान होता था और तब उन संदेशों का बड़ी बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता था। चलिए अब अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। आपको बूझना है एक बार फिर कौन है हीरो कौन हीरोइन।

तीन देवियां फिल्म का गाना था और सभी श्रोताओं ने सही बूझा है, देव आनंद और नंदा पर फिल्माया गया था ये गाना, और सचिन देव बर्मन का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी का गीत था। और बहुत सारे श्रोता अपनी यादें साझा कर रहे हैं, सचमुच हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी यादें और बातें पढ़ते हुए और आपको पढ़कर सुनाते हुए। ऐसे लग रहा है कि हम भी कोई पत्र लिए हैं, पढ़कर सुना रहे हैं, और आप सभी हमारी आंखों के सामने, माइक्रोफोन के सामने बैठे हुए हैं विविध भारती के स्टूडियो में। सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो काफ़ी पत्र उनको लिखा है, मतलब हमारे एक श्रोता ने लिखा है, ये लिखी है ये बात बहुत पहले, पर वे उन्हें संभाल कर रखे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि ये एक तरफ डैश डैश डैश रहा है। भाई पता कर लेना चाहिए था ना चिट्ठियों के माध्यम से। एक श्रोता ने लिखा है कि आर्मी में ड्यूटी के दौरान अरुणाचल प्रदेश की बर्फीली इलाकों में घर वालों की चिट्ठियां बहुत देर से मिलती थी, पढ़ने के बाद सुकून मिल जाता था। और एक श्रोता ने लिखा है कि फरमाइशी कार्यक्रम में एकमात्र पत्र लिखा गया जो शामिल भी हुआ था आकाशवाणी ग्वालियर में। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे मेरे साथी दोस्तों के पत्र ज्यादा आते थे, हम जब पढ़ाई करते हुए स्कूल से कॉलेज गए तब बिछड़ गए थे। इस समय हम एक दूसरे को खत लिखा करते थे। एक श्रोता की टिप्पणी है, जब मेरी शादी होकर राजस्थान गई, दिल्ली से मम्मी पापा खत लिखते थे, मैं भी उन्हें लिखती। मेरी माँ बाबूजी के खत आज भी मेरे पास संभाल कर रखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक मेरे कमेंट ना पढ़ें कोई बात नहीं, पर विविध भारती से शिकायत वाला पत्र तो पढ़िए। दो अन्य बहनों ने भी विविध भारती के अक्षम में लापरवाही बताई है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि ये शिकायती प्रोग्राम नहीं है। अगर आपको विविध भारती के किसी कार्यक्रम से शिकायत है तो कृपया मेल पर आप शिकायत भेज सकते हैं। ये तो सुरीला सफ़र इसका नाम है, सुरीली बातें सुरीली गाने। अगर हाँ इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई कोई बात है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें हम शामिल करें ना करें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़रूरी है। कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई बात हम ज़रूर शामिल करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमने आज भी अपना अपॉइंटमेंट लेटर संभाल कर रखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि अब कोई पत्र नहीं भेजता है। एक श्रोता की टिप्पणी है, हमने तो सबसे ज़्यादा पत्र लिखे अपने दादाजी को, वो बहुत रोते थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैंने प्यार किया फिल्म देखी थी तो वो कबूतर वाले गाने को देखकर हमने पोस्ट कार्ड को कबूतर के आकार में काट कर चाचा चाची को पत्र लिखते थे। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, खत के बारे में मेरी एक याद है जो बहुत ही मजाकिया है। एक लड़के ने मुझे खत लिखा था और मैंने पढ़ने के बाद उसको जमीन में दबा दिया था। उसके बाद मैं भूल गई वो जगह कहाँ थी। क्या बात है भाई, लगता है घर वालों से छुपाई होगी बात। बेहतर होती

बेहतर बात ये होती कि आप घर वालों को बता देती कि ये पत्र आया है फलाने की ओर से या जो भी नाम था। बहरहाल चलिए, अब बहुत सारी बातें आ रही हैं और हम गानों के बीच बीच में पढ़ते जाएंगे। जरा ये गाना सुनिए और बूझिए कौन है हीरो कौन है हीरोइन। फिल्म का नाम तो बता ही सकते हैं आप।

शक्ति फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत था, अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल पर फिल्माया गया था ये गाना। सभी श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया है इसका भी। एक श्रोता ने लिखा है कि जब खत की बात होती है तो बशीर साहब का एक शेर याद आता है, जिस पर हमारी आंख ने मोती बिछाए रात भर, भेजा तुझे कागज वही हमने लिखा कुछ भी नहीं। क्या बात है भाई, अब जमाना और है, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए ही मोहब्बत का इजहार हो जाता है, लेकिन उसमें वो रूह नहीं। आज भी हम खत पर विश्वास करते हैं, माँ पिता का पत्र, प्रेमी या किसी सहेली का पत्र, क्योंकि उन पत्रों के शब्दों में होती है आत्मीयता, लिखावट से पता चलती है प्रेषक की तन्मयता, और पत्र पढ़ते समय पत्रों में से झांकता है चेहरा लिखने वाले का। क्या बात है भाई, अब तो मोबाइल के जरिए अगर प्रेम का इजहार होता है तो तुरंत इमोजी के जरिए पता चल जाता है, या तुरंत शब्दों के जरिए, वाक्यों के जरिए। तब जब पत्र लिखे जाते थे, प्रेम पत्र, तो इंतज़ार होता था, इंतज़ार में रात भर आँखें तकती थीं कि कब वो उस पत्र का जवाब आएगा। कभी ऐसा भी अनुभव आपके साथ हुआ होगा, और ये इंतज़ार होता था कि लिखने वाला कब लिखेगा, क्या लिखेगा, जाने कौन सी बात होगी, ये भी जिज्ञासा हुआ करती थी। एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र केवल कागज का टुकड़ा नहीं होते थे, उनमें लिखने वाले का प्यार, आशीर्वाद, भावनाओं और स्नेह का स्नेह छिपा होता था। उन पत्रों का इंतजार और उन्हें पढ़ना भी कितना खूबसूरत होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि खत में एक ऐसा शब्द है जो बरसों जैसे लगते हुए इंतजार की घड़ियों को खत्म कर देता जरूर है, पर आगे इंतजार को बहुत पीड़ादायक बना देता है। खत को लिखते हुए हर उस शख्स के उंगलियों का स्पर्श, उनके ख्वाब, उनके भाव और प्यार

फिल्म थी आए दिन बहार की, आशा भोसले की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत था और सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया। आशा पारिक हीरोइन होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि डाक प्रणाली का आविष्कार किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया बल्कि इसका विकास प्राचीन सभ्यताओं के साथ धीरे धीरे हुआ है। और बहुत सारे श्रोता अपनी बात लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि एक गजल याद आती है, प्यार का पहला खत लिखने में देर तो लगती है। सच में ऐसा ही होता था, कई पन्ने फाड़कर खत लिखे जाते थे, सचमुच संतुष्टि नहीं होती थी दोबारा तिबारा। अब तो ऐसा धीरज बचा ही नहीं है, जैसे तैसे एक पत्र लिख दिया बस काफ़ी है, फिर ये समझ में नहीं आता दो लाइन लिखने के बाद कि अब क्या लिखें। एक श्रोता ने लिखा है कि पत्र की शुरुआत हम करते थे अत्र कुशलम तत्रास्तु। बहुत सारे लोग ऐसे लिखा करते थे, हम भी ऐसे ही शुरुआत करते थे, पहले सामने वाले का नाम और संबोधन, प्रणाम नमस्कार, उसके बाद ये। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मेरा जन्म हुआ उस दिन मेरे दादा ने अपने घर के एड्रेस पर शुभकामना का पोस्ट कार्ड भेजा था, ताकि पोस्ट कार्ड पर जो तारीख का स्टैंप लगाया जाता है ये प्रूफ अपने पास रहे। क्या बात है भाई। एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने हेलो फरमाइश आपके अनुरोध पर कार्यक्रम में अपनी बातचीत और अपनी पसंद शामिल होने पर हर बार व्यक्तिगत आभार के पत्र लिखे थे, पर हाँ एक बात ज़रूर की थी कि किसी महिला प्रस्तुतकर्ता को पत्र लिखा था, तब पते में उनका नाम नहीं पर अन्य कोई साथी उद्घोषक का नाम लिखकर उनको पहली लाइन में विनती की थी। एक श्रोता ने लिखा है कि जब खत की बात होती है तो बशीर साहब का एक शेर याद आता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक इस रक्षाबंधन पर हमने 100 से ज़्यादा पोस्टकार्ड अपने सैनिक बंधुओं को लिखे और राखी भेजी थी। क्या बात है भाई, सलाम करते हैं आपकी इस बात को। और एक श्रोता ने लिखा है कि पहली बार जब पत्नी का खत मेरे कॉलेज के पते पर आया, दरअसल शादी के कुछ महीने बाद पत्नी की विदाई हो गई, वे मायके चली गई थी, मैं कॉलेज में पढ़ने में व्यस्त हो गया। अचानक एक दोस्त ने एक खत एक दिन दिया, तुम्हारा खत मेल काउंटर पर रखा है, ले आता हूँ। खत को ले जाकर लाइब्रेरी में कोने में बैठ कर पढ़ने लगा, तमाम शायरी दोहे पढ़ते ही मन ही बदल गया, उनकी याद ने माहौल ही

बदल दिया। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं इन्होंने। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का विषय बहुत ही बढ़िया लगा, सुरीला सफर का आज, खतों की बात, मुझे तो गाने भी बहुत सारे याद आ रहे हैं और गानों की फेरिस्त इन्होंने लिखी है। अब चलिए अगला गीत सुनते हैं, बूझिए जरा फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम भी बूझना है आपको।

हमने आपसे फिल्म का नाम पूछा था और संगीतकार का नाम पूछा था, सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया। फिल्म थी दुल्हन और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो सिर्फ नियुक्ति पत्र ही संभाल के मैंने रखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है निदा फाजली का शेर, सीधा सादा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। क्या बात है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि आज का सुरीला सफर बहुत बढ़िया लग रहा है, खतों की बात है, मुझे बहुत सारे गाने याद आ रहे हैं और गानों की लिस्ट इन्होंने लिखी है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज का प्रोग्राम खास है क्योंकि बहुत सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है कि हम मेरे घर आ रहे चिट्ठी डाकिया डाक लाया, एक डाक और डाकिया एक दूसरे के पर्याय हैं, दोनों को देखकर चेहरे पर चमक आ जाती थी। और मेरे घर आ रही चिट्ठी आए या ना आए, लेकिन हमें इंतज़ार रहता था, डाक वाले का पूरा शहर सम्मान करता था। अब वो ज़माना गुजरे ज़माने में सालों में तब्दील हो गया। दिवाली के ग्रीटिंग कार्ड, शादी के निमंत्रण, कुशलता का समाचार, कोई अन्य खबर, नौकरी से संबंधित सूचनाओं के पत्र भी, और भी बातें, बहुत कुछ यादें ताज़ा हो गई जब लोग चिट्ठी लिखने को कहते और आई चिट्ठी को पढ़कर सुनाया करते थे। तो ऐसी तमाम चिट्ठियां होती

थी जब, और ये भी आपको याद होगा कि अड़ोस पड़ोस की महिलाएं, जब जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, जिन्हें पत्र पढ़ने नहीं आता था, वो पत्र लेकर आती थी घर में और कहती थी कि जरा ये पत्र पढ़कर सुना दो। और उसमें कई बार मजाक भी होता था, बच्चे शरारत भी करते थे, चिट्ठी लेकर भागते थे इधर उधर, वो दादी काकी दौड़ती थी पीछे पीछे, वो भी एक अलग आनंद था। एक श्रोता ने लिखा है कि क्या वो खूबसूरत दौर था जब किसी अपने के नाम चिट्ठी लिखना अपने ही मन के आंगन में उतरने जैसा हुआ करता था। कलम की नोक से कागज पर उतरते शब्दों में न जाने कितनी भावनाएं घुल जाया करते थे। शब्द केवल पढ़े नहीं जाते थे बल्कि जिए जाते थे। आज तो डिजिटल युग में उंगलियों के एक स्पर्श से संदेश पहुंच जाते हैं, पलक झपकते ही जवाब आ जाते हैं, लेकिन वो चिट्ठी वाली स्पर्श कहाँ मिलती है। चलिए अब सुनिए ये गाना और बताइए हमें फिल्म का नाम, और गीतकार और संगीतकार का नाम भी पूछिए।

0: था लता मंगेशकर की आवाज। गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था नक्श लालपुरी और संगीतकार रविंद्र जैन, और आज उनकी याद का दिन है रविंद्र जैन साहब का। तो आज का ये प्रोग्राम का आखिरी गाना उन्हीं के नाम था। बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखा है और अभी भी टिप्पणियां आ ही रही हैं श्रोताओं की, पढ़े देते हैं, थोड़ा सा वक्त है। चिट्ठी लाने वाले डाकियों को हर बड़े त्यौहार जैसे होली दिवाली पर विशेष उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया जाता था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने आकाशवाणी जलगांव से प्राप्त ग्रीटिंग कार्ड कुछ दोस्तों के पत्र संभाल कर रखे हैं, और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने कुछ पुराने खत अभी रखे हैं संभाल कर, मेरी जेब में पड़ा मोबाइल बहुत जलता है इस बात से। क्या बात है भाई। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि चिट्ठियों का इंतजार रहता था, अब जमाना बदल गया है, विश्व डाक सेवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक श्रोता ने लिखा है, गाने की लंबी फेहरिस्त लिखी है इन्होंने, और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अत्र कुशलम तत्रास्तु से होती थी शुरुआत पत्र की, और चिट्ठी महज कागज का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हृदय की धड़कनों और आपसी प्रेम का लिखित जीवंत दस्तावेज हुआ करता था, जो प्रेम प्रतीक्षा धीरे के रंगों से जुगलबंदी करता हुआ एक भावुक और दिल से दिल को जोड़े रखने के एहसास लिए होता था। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रियतम प्रियजनों से भी ज्यादा प्रतीक्षा डाकिये की होती थी, पोस्टकार्ड अंतरदेशीय लिफाफों में सिमटे संवादों का आदान प्रदान ने डाकिये को प्रत्येक घर का सदस्य बना दिया था। गांव में माँ की सुनी आंखें, पत्नी की पलकों, पिता की आशा को, इंतजार को, खुशी और मायूसी दोनों डाकिये से ही होती थी। क्या बात है भाई, आप सब ने आज अपनी यादें खंगाली और ताज़ा की हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। अब प्रोग्राम का ये सुरीला सफ़र यहीं ख़त्म होता है। सुरीला सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवादक जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 49वीं कड़ी।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह राष्ट्र मंत्र अपना सा लगा। क्रांतिकारियों से लेकर सत्याग्रहियों तक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हर किसी में वंदे मातरम शब्द के प्रति एक आकर्षण पैदा हो गया। इससे यहाँ के कलाकार भी अछूते नहीं रहे। अवनींद्रनाथ ठाकुर, राव बहादुर धुरंधर, दीननाथ दलाल, रघुवीर मुड़गांवकर और अल्लाह बख्श जैसे अनेक चित्रकारों ने भारत माता की चित्र बनाकर वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। फिर संगीत क्षेत्र का इसमें पीछे रहना संभव ही नहीं था। संगीत क्षेत्र के दिग्गजों को राष्ट्रीय आंदोलन का आकर्षण होने लगा। इस क्षेत्र के अनेक कलाकारों की राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी की शुरुआत वंदे मातरम से ही हुई। वंदे मातरम के निर्माण से लेकर पिछले 150 वर्षों में भारतीय संगीत क्षेत्र के लगभग सभी नामी कलाकारों ने वंदे मातरम का गायन किया है या उसे संगीतबद्ध किया है। इसमें शास्त्रीय संगीत के नामी घरानेदार गायकों से लेकर आज के रॉक, पॉप, आधुनिक संगीत तक के सभी संगीतकर्मी शामिल हैं। वंदे मातरम ने जिस तरह इतिहास रचा है, उसी तरह वंदे मातरम की संगीत यात्रा भी है।

0: हैरान करने वाली है।
1: इन सभी रिकॉर्डिंग्स को कालक्रम के अनुसार सुना जाए तो इसमें पिछले 150 वर्षों में भारतीय संगीत के बदलते स्वरूप को सुना जा सकता है। एक ही गीत की इतनी संगीत रचनाएं और इतनी बड़ी संख्या में नामी कलाकारों द्वारा गाया गया वो गीत, ऐसा उदाहरण पूरे विश्व के संगीत इतिहास में किसी अन्य गीत के बारे में देखने को नहीं मिलता है। ऐसा संगीत में सौभाग्य और एकमात्र अद्वितीय गौरवपूर्ण स्थान केवल वंदे मातरम गीत को ही प्राप्त हुआ है। वंदे मातरम की ये संगीत यात्रा मनोरंजक और रोमांचक है। ये कलाकारों द्वारा देश प्रेम के लिए दिखाए गए स्वाभिमान का प्रतीक है।
0: इस गीत को लिखने वाले ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय अंग्रेजों की सेवा में डेप्यूटी मजिस्ट्रेट जैसे न्याय विभाग के उच्च पद पर काम कर रहे थे। उसी समय साहित्य के क्षेत्र में उनका काम ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था। उनके उपन्यास बेहद लोकप्रिय हो रहे थे। बंकिम चंद्र की गिनती बांग्ला के श्रेष्ठ लेखकों में होने लगी थी। उन्हें संगीत में भी अच्छी रुचि थी। वे उत्तम हारमोनियम बजाते थे, ऐसा उनके मित्रों ने लिख कर रखा है। 1875 में यह गीत लिखा गया। उस समय बंकिम चंद्र जी को संगीत सिखाने के लिए आने वाले यदुनाथ भट्टाचार्य ने वंदे मातरम की पहली संगीत रचना की। जिस आनंद मठ उपन्यास में वंदे मातरम पिरोया गया है, उस आनंद मठ के पहले संस्करण में इस रचना का उल्लेख राग मल्हार ताल कव्वाली के रूप में किया गया है। दुर्भाग्य से इसकी स्वर लिपि उपलब्ध नहीं है। यही यदुनाथ भट्टाचार्य आगे चलकर रविंद्रनाथ के भी संगीत में मार्गदर्शक बने।

उसी दौरान बंकिम चंद्र की तरह ही सरकारी अधिकारी रहे उनके संगीतज्ञ मित्र क्षेत्रनाथ मुखोपाध्याय ने भी वंदे मातरम की एक संगीत रचना की थी। 1882 में नेपाल चंद्र धर नामक युवा गायक ने राग देस और राग मल्हार के मिश्रण वाले देस मल्हार राग में वंदे मातरम की संगीत रचना की थी। 1882 में ही आनंद मठ नाटक में तिलक कामोद राग और छपताल में निबद्ध वंदे मातरम भवानंद की भूमिका करने वाले देवचंद्र बागची इस अभिनेता ने गाया था। संगीत रचना भी उन्हीं की थी। रंगमंच पर हुआ ये पहला सार्वजनिक गायन था। बंकिम चंद्र के निधन के 2 ही साल बाद 28 दिसंबर 1896 को कलकत्ता में हुए राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन की शुरुआत रविंद्रनाथ द्वारा गाए गए वंदे मातरम से हुई। वंदे मातरम का ये सार्वजनिक कार्यक्रम में पहला गायन था। सन 1900 से राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन में नियमित रूप से वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ। 1905 में रविंद्रनाथ ठाकुर की आवाज में वंदे मातरम का पहला रिकॉर्डिंग जारी हुआ। 1905 के बनारस अधिवेशन में सरला देवी चौधुरानी द्वारा गाया गया वंदे मातरम बहुत प्रसिद्ध हुआ।

1905 से 1910 के दौरान नरेंद्र चंद्र मुखर्जी, आर एन बोस, नारायण चंद्र मुखर्जी, हेमचंद्र सेन और सत्यभूषण गुप्ता जैसे बंगाली गायकों की आवाज में वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग्स जारी की गई। विशेष आश्चर्य की बात यह है कि इसी काल में राष्ट्रीय सभा के प्रसिद्ध नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की आवाज में भी वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग निकाली गई। दुर्भाग्य से समय के साथ आज ये रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध नहीं है। वंदे मातरम के उपलब्ध ध्वनि मुद्रणों में सबसे पुरानी नारायण चंद्र मुखर्जी की आवाज में 120 साल पहले की दुर्लभ रिकॉर्डिंग ये है।

0: वंदे मातरम की संगीत यात्रा को देखते हुए पिछली सदी के भारतीय संगीत के बदलते प्रवाह उसमें सुनने को मिलते हैं। वंदे मातरम के प्रसार में बंगाल जितना ही महाराष्ट्र का योगदान भी बड़ा रहा है। जैसे शास्त्रीय संगीत के घराने दिखते हैं, वैसे ही महाराष्ट्र और बंगाली ऐसे दो संगीत प्रवाह इस यात्रा में स्पष्ट दिखते हैं।
1: बंगाल शैली। वंदे मातरम के संदर्भ में बंगाल शैली को हम बंगाली स्कूल कह सकते हैं, क्योंकि वंदे मातरम का निर्माण जैसे बंगाल में हुआ, वैसे ही वंदे मातरम के संगीत प्रचार की शुरुआत भी बंगाल से यदुभट्ट और रविंद्रनाथ के रूप में ही हुई। रविंद्रनाथ ने संगीत क्षेत्र में जो काम किया है वो उनके नाम से, यानी रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम के बिल्कुल शुरुआती दिनों में वंदे मातरम गाने वाले सभी बंगाली गायकों पर रविंद्रनाथ की शैली की छाप स्पष्ट दिखती है।
0: १९२० के बाद भी अनेक बंगाली संगीतकारों ने वंदे मातरम की संगीत रचनाएं की। हरिपद चटर्जी, भवानी चरण दास, कमल दास गुप्ता, आर एन भट्टाचार्य, सूर सागर, जगमोहन, राजन सरकार, अनादि दस्तीदार जैसे बंगाली संगीत निर्देशकों ने अपने अपने तरीके से वंदे मातरम को संगीतबद्ध किया, फिर भी उसमें रविंद्रनाथ के संगीत की छाप को कोई भी ज्यादा मिटा नहीं पाया। इसमें अपवाद रहे संगीतकार हैं तिमिर बरन भट्टाचार्य, सुबल दास गुप्ता और हेमंत कुमार मुखर्जी। कमल दास गुप्ता के मातृसेवक दल के नाम से प्रकाशित इस रिकॉर्डिंग में बंगाली खोल और पखावज जैसे वाद्यों का उपयोग करते हुए ध्रुपद गायकी का प्रभाव दिखता है।

विख्यात बंगाली संगीत निर्देशक पंकज मल्लिक द्वारा की गई संगीत रचना तो तत्कालीन फिल्मी रचना जैसी है। उसके वाद्य वृंद के कारण फिल्मिस्तान कंपनी के फिल्मी गीतों की याद आती है। अत्यंत बड़े संगीतकार होने के बावजूद वंदे मातरम की उनकी यह रचना राष्ट्रगीत को न्याय देने वाली नहीं बन पाई है।

इसके अलावा 1950 के दशक की विख्यात गायिका गीता दत्त का जीएम दुर्रानी के साथ गाया हुआ रिकॉर्ड भी कुछ अलग है। इसका संगीत ज्ञान

0: बंगाली ही हैं। वंदे मातरम की संगीत यात्रा में बंगाली संगीतकारों के समान ही मराठी गायकों और संगीतकारों का योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 49वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रेकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रेकर और मंदाकिनी जोशी। वंदे मातरम की दुर्लभ रिकॉर्डिंग्स मिलिंद सबनीस जी के संग्रह से साभार। तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता। प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टांचावडी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। विदेश मंत्रालय ने कहा अमेरिका के पीईआरएम आवेदनों पर लगाए गए प्रतिबंध से मौजूदा H1B वीजा की वैधता प्रभावित नहीं होगी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नई दिल्ली में आज सुबह संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: संयुक्त पुलिस आयुक्त ने कहा कि पहले दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देशों और पार्टी की ओर से दिए गए आश्वासनों का पालन न किए जाने के साथ साथ मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अनुमति देने से इनकार करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ दिल्ली पुलिस उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आज रात 9 बजे से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का प्रस्ताव दिया है। पुलिस ने इस संबंध में दिल्ली मेट्रो रेल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजा है। पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में संवेदनशील स्थानों की ओर भीड़ के अनियंत्रित रूप से बढ़ने की आशंका व्यक्त करते हुए मेट्रो ट्रेनों की संख्या और फेरों को कम करने का भी अनुरोध किया।

0: है। जिन मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध का प्रस्ताव है उनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये प्रतिबंध आज से लागू करने का प्रस्ताव है और स्थिति सामान्य होने तक कल तक जारी रह सकते हैं। रेल मंत्रालय ने बताया है कि आज दोपहर 2 बजे के बाद अपने शुरुआती स्टेशनों से चलने वाली और कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। मंत्रालय ने बताया है कि निर्णय दोनों रेलवे स्टेशनों के आसपास के इलाकों में कल सड़क पर यातायात की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। इस बीच विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान मध्य दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़कें बंद होने से कल करीब 5,000 यात्री स्टेशन तक नहीं पहुंच सके। प्रभावित यात्रियों में आईआईटी जोधपुर के 56 छात्र भी शामिल थे जो शाम 4 बजे रवाना होने वाली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नहीं ले सके। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कनॉट प्लेस एक रेस्तरां में आयोजित दोपहर के भोज के बाद विपक्षी सांसद और कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए राजघाट पर एकत्र हुए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। कल से शुरू हुए सम्मेलन में सभी राज्यों के राजनीतिक नेतृत्व और महिला तथा बाल विकास क्षेत्र से जुड़े अधिकारी भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को मजबूत करना, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना और केंद्र तथा राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी लाना है। सम्मेलन में 4 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इनमें पोषण, प्रारंभिक शिक्षा, बाल संरक्षण तथा महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण शामिल हैं। विभागीय शिखर सम्मेलन की इस पहल के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न हितधारक एक मंच पर एकत्रित होकर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि पिछले 1 दशक में भारत के दूरसंचार और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है और देश ने वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंधिया ने कहा कि भारत स्वदेशी 4G तकनीक विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। उन्होंने बताया कि 1 GB डेटा की कीमत 268 रुपये से घटकर 8 रुपये से भी कम रह गई है।
3: 550 million users. भारत का लक्ष्य 2030 तक 5G उपयोगकर्ताओं की संख्या 55 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब करना है। इसके बाद भारत पूरी तरह 5G तकनीक पर आधारित नेटवर्क की ओर बढ़ेगा। ये तकनीक 6G की शुरुआत का रास्ता तैयार करेगी। 6G के लिए भारत पहली बार वैश्विक स्तर पर तकनीकी मानक तय करने की प्रक्रिया में शामिल होगा।
0: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज सूरत में वस्त्र उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान स्थानीय उद्योगपतियों ने उन्हें विभिन्न मांगों और सुझावों से जुड़े ज्ञापन सौंपे। श्री सिंह ने देश के प्रमुख विस्कोस वितरकों और बाजार विकास से जुड़ी कंपनियों के निदेशकों से भी मुलाकात की। पुदुचेरी में तट्टान चावड़ी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के अशोक आनंद ने जीत हासिल की है। अशोक आनंद ने करीबी प्रतिद्वंदी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार ई विनायगम को 8,482 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। तमिलनाडु के वदुरांतकम और दारापुरम सीटों पर सत्तारूढ़ टीवीके के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। असम की नगांव लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सीटों पर मंगलवार को मतदान हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे मोटर दुर्घटना दावों से जुड़े 4 डिजिटल प्लेटफॉर्म को 4 हफ्ते के अंदर आपस में जोड़े, जिससे फर्जी बीमा दावों पर रोक लगाई जा सके और मुआवजे के निपटारे में तेजी लाई जा सके। एक रिपोर्ट।
4: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट, EDAR, वाहन और

0: पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल है। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट, गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें, क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: सरकार ने डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवाओं के विज्ञापनों पर नियंत्रण करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत अनुसूची एच, HH1 और अनुसूची एक्स में शामिल दवाओं के विज्ञापन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की मौजूदा अनिवार्यता को दवाओं की बिक्री और वितरण का लाइसेंस रखने वाली संस्थाओं पर भी लागू करने का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें समान अवसर देने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की थी। पिछले एक दशक में यह अभियान जन आंदोलन का रूप ले चुका है।
2: भारत में लंबे समय तक कन्या भ्रूण हत्या, लिंग आधारित भेदभाव और बेटियों की शिक्षा में असमानता जैसी गंभीर सामाजिक चुनौतियां रही है। इनसे निपटने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया। इसका मूल मकसद केवल बेटी को बचाना नहीं बल्कि उसके जीवन, सुरक्षा, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना है। इसके तहत लिंग आधारित भ्रूण हत्या की रोकथाम, लिंगानुपात में सुधार, बेटियों के स्कूल में नामांकन और माध्यमिक स्तर और आगे की पढ़ाई जारी रखने को प्रोत्साहित करना, सुरक्षित मातृत्व तथा मासिक धर्म, स्वच्छता के प्रति जागरूकता जैसे विषयों पर काम करना है। योजना में सरकार, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कर्मी, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाओं और समुदाय को साथ लेकर व्यवहार एवं सामाजिक सोच में बदलाव पर जोर दिया जा रहा है। पिछले एक दशक में इस योजना से बेटियों के प्रति आम लोगों की सोच और उनके शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार देखने को मिला है। देश में जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 2014-15 में 918 थी, जो 2023-24 में बढ़कर 929 हो गई। वहीं माध्यमिक स्तर पर लड़कियों का ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 75.51% से बढ़कर 80.2% तक पहुंच गया है। संस्थागत प्रसव भी 61 से बढ़कर 98% से अधिक हो गया है। इस योजना से राजस्थान में भी व्यापक बदलाव आया है। प्रदेश में जन्म के समय लिंगानुपात 929 से बढ़कर बीते एक दशक में 941 हो गया है। राज्य में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाकर समाज में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार और समाज की ताकत है। 10 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान आज केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और समान अवसर का सामाजिक संदेश बन चुका है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विश्व डाक दिवस पर डाक सेवकों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राष्ट्र के प्रति उनकी समर्पित सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने दोहराया कि डाक सेवा जन सेवा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के श्रम विभाग द्वारा कुछ कंपनियों के स्थायी श्रम प्रमाणन PERM कार्यक्रम पर लगाई गई रोक H1B वीजा कार्यक्रम से पूरी तरह अलग है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि PERM आवेदनों पर रोक लगाने से मौजूदा H1B वीजा की वैधता या H1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि इससे प्रभावित कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को ग्रीन कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है। इस मामले में अमेरिका के उपराष्ट्रपति के टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी अनुचित है। भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छार को इसराइल के सर्वोच्च नागरिक

0: वीरता सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घोषणा की कि कैप्टन मच्छार के स्वस्थ होने के बाद उन्हें नागरिक वीरता के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 878 अंक बढ़कर 72,471 पर, जबकि निफ्टी 282 अंक के उछाल के साथ 22,514 पर था। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज रांची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में कल तक तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। दक्षिण आंध्रीय कर्नाटका और उत्तराखंड में भी आज ऐसी स्थिति रह सकती है। इस बीच कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस का कल जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार। दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन आज रात 9 बजे से कल तक बंद रह सकते हैं। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में महिला और बाल विकास पर सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी की तट्टांचावडी विधानसभा सीट जीती। 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम रांची में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

0: आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में राजा मेहदी अली खां का लिखा एक गाना. फिल्म थी वो कौन थी और संगीतकार थे मदन मोहन.
1: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र.
2: व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है. हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1. ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व. सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है.
1: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी.
2: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है. उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है.
1: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

0: आप सुन रहे थे फागुन फिल्म का गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। कमर जलालाबादी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती ही पार्वती ही पार्वती।
4: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
5: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
4: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नागिन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: प्रेम धवन का लिखा गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजों में। फिल्म थी सावन।
1: वो देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
2: जब आप चेहरों को

0: रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
1: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
0: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ये ट्राई भी नहीं करना है।
2: तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार।
1: कास्टिंग से जुड़े अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
3: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
3: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
3: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: तुम्हारी याद सताते हैं
3: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गुमराह फिल्म का गाना था महेंद्र कपूर की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। ये महुआ फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज।

महुआ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। कमर जलालाबादी के बोल थे सोनिक ओमी का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपनी दोस्त मंजरी वर्मा का कीजिए नमस्कार स्वीकार। हम सभी के जीवन में बचपन की प्यारी यादें जैसे दादी बाबा माता पिता के साथ बिताया वक्त यादों में जुड़ा होता है, और दादी बाबा से सुनी कहानियाँ या सीख, वही माँ के हाथ का बना खास व्यंजन जो आज तक आपको याद है, आपकी माँ को क्या पसंद है और पिताजी को क्या पसंद है, उस दौर के गलियारों में चलते हैं जहाँ अपनों की यादें आज भी दिल में बसी हैं, जिसे याद करते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है या नम आंखें हो जाती हैं। अब फोन की घंटी बज उठी है, लेते हैं पहली कॉल और देखते हैं किस सखी से होंगी बातें। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद सातुई से बोल रही है रेखा मुखर्जी।
0: रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में, और बहुत अच्छा लग रहा है आपकी पहली कॉल लगी है। तो बताइए आप कैसी हैं?
1: हम ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं। ये बताइए कि बचपन की जो यादें होती हैं प्यारी प्यारी से, दादी बाबा के संग माता पिता के संग, वो गुजरा हुआ जो दौर होता है, तो उसकी कुछ यादें आप ताजा कीजिए
1: हाँ,
0: हमारे।
1: याद आती तो है, लेकिन सब तो गुजर गया।
0: जी
1: दादा दादी मामी पापा सास ससुर जी सब गुजर गया।
0: तो ये बताइए कि आपको अपनी मम्मी के हाथों का बना हुआ कुछ खाना याद है? वो क्या अच्छा बनाती थी?
1: हाँ, जैसा पीछा का टाइम पीछा बनाता था, सब्जी
0: जी
1: बनाता था,
0: जी
1: ये सभी माँ का याद आता है।
0: आप बनाती भी होंगी फिर उनका सिखाया
1: हाँ
0: हुआ।
1: हाँ माँ माँ का पास, मेरा सासू माँ का पास, हम बहुत तरह तरह का खाना बनाने सीखे, और
0: अच्छा
1: हमको नया नया खाना बनाने बहुत अच्छा लगती है। जितना अपने से खा के खुश नहीं मिलता है, हम
0: जी,
1: दूसरे को खिला के हमको खुशी मिलता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जिनको खाना बनाने का शौक होता है तो वो

0: मन से बनाती हैं और सामने वाले को भी बहुत अच्छे से दिल से खिलाती हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई। और कुछ अपने पापा के बारे में बता सकती हैं, कुछ यादें उनकी?
1: पापा हमको बहुत कुछ समझाता था, कोई
0: जी
1: चीज का काम तुम करोगी
0: जी
1: तो 10 बार तुमको सोचना होगा, और एक बार कोई काम तुम कर लेगी तो वह दोबारा नहीं घूमेगा।
0: सही बात है। और ये बताइए, हमारा विविध भारती जो रेडियो स्टेशन है, वहाँ के प्रोग्राम आप कितने सारे सुनती हैं?
1: हाँ हाँ सुनते हैं जी, क्या बोलेंगे, 2 महीना हो जाता है तो मेरा पूरा मन छटपटाने लगती है। आज
0: जी
1: जो रात को जो विविध भारती का गाना होता है ना
0: जी
1: वो भी
0: जी
1: हम सुनते हैं, शुक्रवार को जो गीत होता है वो भी सुनते हैं हम।
0: अच्छा, क्या बात है, यानी आप बहुत पुरानी श्रोता हैं विविध भारती की।
1: हाँ।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और बताइए, आज आप फिर क्या सुनना चाहेंगी?
1: फिल्म का नाम तेरी मेहरबानियां,
0: जी
1: और गाना वैसे ही भी है, तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां। मेरे एक वो कुत्ता था,
0: जी
1: ये वही कुत्ता जब चल गया ना,
0: जी
1: एक हफ्ता हम लोग कुछ नहीं खाए,
0: हाँ,
1: और ये गाना मेरा दिल में बैठ गया।
0: ओहो, सही बात
1: मेरा
0: है।
1: बच्ची भी अभी तक तो कुत्ता का बारे में रोती है, हमको बोलती है कि माँ जब आप विविध भारती में आप फोन लगाइएगा तो
0: जी
1: माँ ये गाना को भी जरूर दीजिएगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम किसी पशु को पालते हैं तो हमारा उनसे बहुत जुड़ाव हो जाता है,
1: जी
0: उसकी यादें तो दिल से
1: जी
0: कभी जा नहीं सकती हैं। तो हम आपको आपकी पसंद का ये गाना सुनवाते हैं रेखा जी, और फोन कॉल करने के लिए आपको हेलो सहेली में बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं महाराष्ट्र से कोल्हापुर इचलकरंजी से जयश्री पाटिल बोल रही हूँ।
0: जयश्री जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपसे बात करने वाले हैं अपनी जो बचपन की यादें होती हैं, जो आपने दादी बाबा के संग गुजारी हैं या मम्मी पापा के संग गुजारी हैं, उन यादों को हम चाहते हैं कि आप आज हमसे साझा करें।
1: दादी तो नहीं थी हमारे बचपन में, हमारी दादी गुजर गई, लेकिन
0: जी
1: बाबा के साथ एक याद है कि सुबह हमारे बाबा कभी हमें उठाते नहीं थे। सुबह 5:30 बजे आकाशवाणी सांगली केंद्र लगता था ना, तब
0: जी
1: वो रेडियो ऑन करते तो हम सब जाग जाते थे।
0: अच्छा
1: और तब से लेकर आज तक रेडियो इतना भाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती।
0: क्या बात है, हम आपकी भावनाओं को समझते हैं कि आप रेडियो कितने प्यार से सुनती हैं और कितने समय तक सुनती हैं। ये बहुत अच्छी सी बात आपने बताई। और आप अपनी पसंद के बारे में बताइए कुछ, या आप क्या कहना चाहती हैं?
1: मैं तो इतना कहूंगी कि आपका वो गीतों भरी कहानी है ना, वो मुझे बहुत भाती है।
0: जी, बहुत अच्छा लगा आपने
1: इतना अच्छा लगता है वो कि आप बीच बीच में जो बोल लेते हो ना, वो मेरे मन को इतना भाता है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। और मुझे आज इतना आनंद हुआ है कि पूरे 6 महीने हो गए मैं इतना लगातार कोशिश कर रही हूँ, आज जाके मेरा कॉल लगा है अभी।
0: देखिए कितना अच्छा लग रहा है कि आपकी कॉल लग गई और आपकी मेरे से बात भी हो रही है।
1: और आपके लिए मुझे एक कहना है कि जब भी ऑन करोगे रेडियो तब कुछ भी नया ही पाओगे, ऐसा विविध भारती का है। और संगीत जो रहता है ना,
0: जी
1: सबके दिलों की धड़कन विविध भारती, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। दिन भर रेडियो के सिवा मेरा कोई सखा नहीं रहता, इसलिए सखी भी वही है और सखा भी मेरा रेडियो है। इसलिए
0: क्या बात है
1: मैं
0: जी,
1: दिल से यही कहूंगी, जब तक सूरज चांद रहे ना तब तक विविध भारती रेडियो हमेशा बजता रहे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी प्यारी सी बात कही है। और बताइए, और क्या आपके शौक हैं या क्या आप करना पसंद करती हैं?
1: मैं तो गेहूं और नाचनी का बिस्किट बना के देती हूँ, घर में छोटा सा उद्योग खोल रखा है मैंने। बिजनेस
0: क्या बात है, मतलब घर के लिए बनाती हैं या आप बिजनेस भी करती हैं इसका कुछ?
1: भी करती हूँ मैं, दूसरों को बना के देती हूँ।
0: हमारी तो यही शुभकामनाएं हैं दिल से आपके लिए कि आपका जो व्यवसाय है ये बहुत तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े।
1: दिल
0: जी,
1: खोल के आपके लिए धन्यवाद।
0: लेकिन ये बताइए कि आज आप हेलो सैली में कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: 16 बरस की बाली उम्र को सलाम।
0: क्या बात है, बहुत प्यारा सा गाना आपने चुना है और हमें ऐसा लग रहा है कि हम 16 साल में पहुंच गए, है ना?
1: पहुंच
0: जी तो चलिए जयश्री जी, आपको आपकी पसंद का गाना सुनाते हैं।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: मैं सोनिका बात कर रही हूँ मैडम, हिसार हरियाणा से।
0: सोनिका जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, आपका शहर कैसा है, वहाँ की क्या खास बात है?
1: जी, शहर मेरा बहुत अच्छा है मैडम, साफ सफाई बिल्कुल रहती है वहाँ पे।
0: जी
1: वैसे मैं गांव से हूँ,
0: अच्छा,
1: वैसे जिला तो मतलब मेरा हिसार है, गांव में रहते हैं मैडम। वैसे हम
0: गांव तो बहुत खूबसूरत होते हैं, बड़े हरे भरे खेत होते हैं, है ना?
1: जी मैडम,
0: तो आपके यहाँ क्या होता है काम?
1: हमारे यहाँ पे मैडम फसल में धान वगैरह होते हैं, और मैडम नरमा की कपास होती है,
0: अच्छा,
1: गेहूँ भी होती है मैडम। जी
0: जी दाल गेहूं वगैरह होता है।
1: मैडम,
0: और सोनिका जी, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके दादी बाबा या मम्मी पापा की यादों को ताजा करने वाले हैं। आपने जो वक्त गुजारा है उन लोगों के साथ में, तो कुछ उनकी यादें, किस्से, कहानियाँ, कुछ सीख, वो अगर आपको याद है तो आप हमें बताइए।
1: जी दादा दादी तो मैडम मैंने देखे नहीं,
0: जी
1: ये पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। पापा
0: जी
1: भी एक्सपायर हो चुके, और मम्मी है भी फिलहाल। तो
0: तो मम्मी से आपने क्या क्या चीजें सीखी?
1: खाना बनाने में जो डिश होती है मैडम वो सीखी
0: जी
1: है मैडम, जैसे आलू के परांठे है, मेरी मम्मी बहुत अच्छे बनाते हैं मैडम, उसी से मैंने सीखा मैडम। मतलब मैं यहाँ पे बनाती हूँ तो बहुत अच्छे बनाते हैं मैडम आलू के परांठे।
0: ये क्या बात है। और सोनिका जी, ये बताइए कि आपको भी कुछ कढ़ाई, कशीदाकारी का शौक वगैरह रखती हैं क्या आप?
1: नहीं मैडम, मैं ये नहीं करती, जैसे मैं ग्रुप में काम करती हूँ मैडम, हरियाणा में जैसे एक स्कीम है NRLM की तरफ से, तो उसमें जैसे 10 लेडीज होती है, 10 लेडीज इकट्ठा करके उनका समूह बनाते हैं हम,
0: जी
1: और उस समूह में जैसे लेडीज को बचत करना सिखाते हैं, जैसे हर महीने वो 100 रुपये जमा करे या 200 रुपये जमा करे,
0: जी
1: उनका एक अकाउंट खुलवा देते हैं मैडम किसी नाम से, तो उसका अकाउंट बैंक में खुलवा देते हैं, और बैंक से अगर लेडीजों को जरूरत होती है पैसों की तो उनका मतलब लोन वगैरह भी करवा देते हैं मैडम। मैं
0: क्या
1: ये
0: बात
1: काम करती हूँ मैडम,
0: जी
1: कढ़ाई बुनाई का नहीं करती।
0: जी सोनिका जी, जो आप काम करती हैं वो तो बहुत अच्छा है कि आप महिलाओं की मदद करती हैं, इस तरह से बचत भी करवाती हैं, खाते भी खुलवाती हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है कि आप लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करती हैं।
1: मैडम हमारी यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी यूपी में, अमेठी जिले में।
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आप हमारे विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: मैं मैडम सुबह से सुनती हूँ सखी सहेली और हेलो सहेली, तो मैडम फोन कार्यक्रम तो सुनती हूँ, और जैसे 1 बजे वो कमेंट वाला फेसबुक वाला आता है ना,
0: जी जी जी
1: वो भी कार्यक्रम मैडम सुनती हूँ,
0: क्या
1: और
0: बात,
1: उसमें कमेंट भी करती हूँ मैडम।
0: अच्छा, बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट भी करती हैं। और सोनिका जी,
1: जी मैडम,
0: आपको
1: जी
0: कुछ गाने वाने का भी शौक है क्या?
1: गीत मैं सुनती रहती हूँ मैडम, ज्यादातर ओल्ड गीत ही पसंद है मैडम।
0: तो आज जो आप मुझे गाना बताएंगी कि हेलो सहेली में आप ये गाना सुनना चाहती हैं, तो थोड़ा सा गुनगुना के बताइए तो मजा आ जाएगा।
1: एक पत्थर दिल को मैं दिल दे बैठी, यही गीत सुना दी।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हाँ मैम, मैं मरका खंडा से जिला गोंदिया महाराष्ट्र से बोल रही हूँ।
0: जी, आपका क्या नाम है?
1: वो मिंद्रा नोनारे।
0: तो इंदिरा जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताइए अपने बारे में कुछ मन की बातें।
1: हाँ मैम, हम ग्राम सालेकसा तहसील में रहते हैं।
0: जी
1: सालेकसा से लगभग 10 किलोमीटर दूर हमारा गांव है
0: जी
1: और
0: और
1: हम खेती किसानी का काम करते हैं मैम।
0: अच्छा, खेती किसानी में आपने खेत में क्या बोया है इस समय?
1: हमने खेत में धान बोया है मैम।
0: अच्छा, बहुत अच्छा है। तो यानी कि फिर आप उसको अपने लिए रख लेती होंगी कुछ, और कुछ भाग आप उसको बाजार में निकाल देती होंगी, बेच देती होंगी, है ना?
1: हाँ मैम, कुछ यानी आधी फसल बेचने के लिए रहती है और आधी फसल खाने के लिए घर में।
0: अच्छा, और बताइए आपके परिवार में कौन कौन है?
1: परिवार में सास है, दो बेटे हैं और हम पति पत्नी दो जन हैं।
0: क्या बात है, यानी कि भरा पूरा परिवार है। और आज हम बात करने वाले थे कि अपने माता पिता की और दादी बाबा की, या आपकी सास ससुर हैं जो परिवार में, उनकी कुछ यादें जो आप बताना चाहेंगी, क्या आपने उनसे सीखा?
1: हाँ मैम, सीखा तो बहुत कुछ है, काम वाम सीखा है, कुछ खेती किसान का काम सीखे है।
0: जी, बहुत अच्छा लगता है जब कोई बड़ा सिखाता है और हम उस काम को अच्छे से सीख जाते हैं और करने लग जाते हैं, है ना?
1: हाँ मैम,
0: तो आप अपने बच्चों को किस तरह से काम सिखाती हैं?
1: हाँ मैम, बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं,
0: अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे?
1: एक फाइनल ईयर में है, एक फर्स्ट ईयर में है।
0: अच्छा, तो बताइए आप विविध भारती के कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: मैम मेरे को हेलो फरमाइश सबसे अच्छा लगता है, और हेलो सहेली, सखी सहेली,
0: जी, क्या बात
1: मन
0: है।
1: चाहे गीत,
0: अच्छा,
1: और सबसे फेवरेट प्रोग्राम हेलो सहेली और हेलो फरमाइश।
0: क्या बात है, यानी कि आज आपके फेवरेट प्रोग्राम में आपकी कॉल लग गई है ना?
1: हाँ मैम,
0: तो बताइए आज आप क्या गाना सुनना चाहती हैं?
1: मुकद्दर का सिकद्दर का, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? प्रिया
1: मैं प्रिया बोल रही हूँ, दिल्ली से।
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। तो बताइए अपने बारे में कुछ हमें।
1: बस अपनी ऐसे ही प्राइवेट जॉब है,
0: अच्छा, तो किस तरह की आप
1: कपड़ों
0: जॉब करती हैं?
1: की दुकान है, जैसे छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ना, तो
0: जी जी
1: वो।
0: जी यानी कि आप शॉप पे काम करती हैं, तो बहुत अच्छी
1: हाँ जी
0: बात।
1: हाँ जी हाँ जी, वीर भारती के
0: जी
1: सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं
0: एक
1: मुझे,
0: मिनट।
1: इतना पसंद है। तो मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं रेडियो भी लेके आई एक नया।
0: अच्छा, कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनना पसंद करती हैं?
1: मैं सखी सहेली और जो प्रोग्राम सुनने को मिल जाते हैं तो सारे ही, लगभग रेडियो चलता ही रहता है।
0: क्या बात है। तो अपने बारे में और बताइए कि आपकी पढ़ाई आपने कितनी करी?
1: पढ़ाई तो मैंने बीए बीएड सब कुछ किया हुआ है
0: बीए और बीएड भी कर रखा है।
1: जी।
0: तो बीएड करने के बाद आपने ये नहीं सोचा कि आप टीचर बनने के लिए आगे जाएं?
1: बहुत कोशिश की लेकिन जिस क्षेत्र में जाना चाहते थे जा नहीं पाए।
0: कोई बात नहीं, आप जो काम कर रही हैं आप उससे खुश हैं, ये बहुत बड़ी
1: जी
0: बात
1: बिल्कुल।
0: है ना? बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: गाना अलका याग्निक का है, शायराना सी है जिंदगी।

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैम, मैं जयपुर से रहमाना बानो बोल रही हूँ।
0: रहमाना जी, आप जयपुर से बोल रही हैं, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए अपने
1: थैंक
0: बारे
1: यू मैम।
0: में, अपने शहर के बारे में बताइए, कैसा है आपका जयपुर शहर?
1: जयपुर बहुत अच्छा है मैडम, सब घूमने आते हैं यहाँ पे।
0: पिंक सिटी कहलाता है जयपुर।
1: हाँ, तस्वीर बढ़िया है, आप भी आइए।
0: बिल्कुल, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा बस जयपुर घूमने आएंगे।
1: हाँ मैडम,
0: और बताइए अपने बारे में, क्या करती हैं आप?
1: बस बच्चों को संभालना, घर का काम करना। हम 5 बहनें 1 भाई हैं।
0: जी, तो और आप क्या क्या करती हैं इसके अलावा? कुछ आप कढ़ाई वगैरह करती हूँ, कुछ ऐसा?
1: हाँ, कढ़ाई भी करती हूँ, साड़ी भी करती हूँ, साड़ी पे सितारे लगाना,
0: जी
1: और कड़े जो होते हैं कड़ों पे सितारे लगाना, कड़े पहनते हैं ना
0: जी जी जी
1: चूड़ियों के साथ,
0: लाख
1: वो
0: के कड़े
1: लगाती
0: होते
1: हूँ।
0: जो,
1: लाख के कड़े होते हैं जो, वो वाला काम करते हैं हम।
0: मुझे सुनकर के अच्छा लग रहा है कि रंग बिरंगे कड़े होते हैं और उनमें आप नग वगैरह
1: हाँ,
0: लगाती हैं।
1: और मैडम फराकों में ना बटन भी लगाते हैं हम, कमीज
0: जी जी
1: होती है ना जो पहनने
0: जी जी
1: की, और क्या कहते हैं कुर्ते होते हैं उस पर बटन लगाती हूँ मैं, निशान लगा के। तो
0: क्या बात है, तो एक
1: जैसे
0: दिन में कितनी कमीजों में आप बटन लगा सकती हैं?
1: मैंने 1,000 फराकों में निशान लगाए तो मेरे
0: जी
1: 800 रुपए हो गए।
0: क्या बात है। और खाना वाना क्या बनाती हैं आप? अच्छा,
1: खाना ग्रीन स्टू बनाती हूँ,
0: मीठे में क्या बनाती हैं?
1: मीठे में खीर,
0: अच्छा, खीर, यानी किस चीज की खीर बनाती हैं आप?
1: शान की, दूध की, और उसमें चावल डालते हैं मैडम।
0: अच्छा, चावल वाली खीर बनाती हैं, यानी कि
1: हाँ
0: तो उसमें मेवा वगैरह डाल के बड़ा स्वाद हो जाता होगा
1: हाँ
0: उसमें तो।
1: हाँ चाहे आप उसमें सवैया डाल लो।
0: हाँ जी, बड़ा अच्छा लगा, मैं तो स्वाद आ गया यहाँ पर बैठे बैठे।
1: आप आइए, खिलाएंगे आपको पता के। मैडम
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइए रहमाना जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं, अपनी पसंद बताइए।
1: मैं किरांति फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, जिंदगी की ना टूटे लड़ी।
0: क्या बात है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हेलो मैडम, मैं इंदौर से बोल रही हूँ। मैं दुर्गा नाम है मेरा
0: दुर्गा जी, हेलो सहेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये
1: जी। मैम,
0: बताइए कि और आप क्या करती हैं?
1: दोनों बच्चे जॉब करते हैं, हस्बैंड भी जॉब करते हैं।
0: जी
1: मैं ब्लाइंड हूँ, घर पे रहती हूँ, घर का काम कर लेती हूँ।
0: अच्छा, और साथ में रेडियो भी सुनती जाती हैं?
1: हाँ, रेडियो चलते रहता मेरा, अभी बंद कर दिया मैंने
0: अच्छा, यानी कि आप हमसे बात कर रही हैं इसलिए बंद किया है।
1: जी मैडम।
0: अच्छा, तो हमारे विविध भारती के बहुत सारे प्रोग्राम जो आप सुनती हैं, उनमें से आपको कौन कौन से प्रोग्राम सबसे पसंद आते हैं?
1: हेलो सहेली आता वो सुनती हूँ मैं, और रोज सखी सहेली आता वो भी सुनती हूँ,
0: जी
1: मन चाहे जीता था वो शनिवार रविवार वो भी सुनती हूँ।
0: जी जी बहुत अच्छा लगा।
1: तभी सुबह 6 बजे चालू करती है तो
0: जी
1: अपना काम भी हो जाता, तो रेडियो भी सुनती हूँ।
0: दुर्गा जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: 20 साल बाद का फिल्म का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे।
0: जी दुर्गा जी, चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गाना। और कॉल लगाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हाँ, मैं सिकंदरा से सुनीता उइके।
0: जी सुनीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। क्या करती हैं आप?
1: मैं ग्रहणी हूँ दीदी।
0: सुनीता जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी यादों को ताज़ा करना चाहते हैं। माता पिता के संग बिताई हुई, दादी बाबा के संग बिताई हुई, तो कुछ यादें हैं जो आप बता सकती हैं?
1: हाँ दीदी, बचपन में तो हम बहुत खेल कूदना ये सब करते थे। मतलब वो खेलते थे, वो जैसे डिब्बे वाला खेलते थे ना,
0: जी,
1: वो कबड्डी ये सब खेला करते थे। हाँ
0: जो सारे खेल होते हैं, लंगड़ी है या सिकड़ी है या रस्सी कूद है ना, इस टाइप के खेल।
1: रस्सी कूद है, हाँ छिपन छिपाई ये सब खेला करते थे। अभी भी मैं अपने बच्चों के साथ कभी कभी खेला खेलती हूँ।
0: जी
1: छोटे हैं तो उनको कभी ज्यादा टीवी नहीं देखना, आप छिप जाओ मैं आपको ढूंढती हूँ, ऐसा
0: बिल्कुल,
1: कभी।
0: अपने बच्चों के साथ आप उनको अपने समय में जो आप खेल खेला करती थी, वो बच्चों को बताइए कि टीवी बंद करो, मोबाइल हटाओ और अब मेरे साथ आके तुम लोग ये खेलो खेल। तो उससे क्या
1: हाँ
0: होगा, एक आपस में जो संबंध बनता है प्यार का बच्चों के बीच में, वो बहुत अच्छा
1: हाँ
0: बनेगा।
1: दीदी,
0: और दोस्त जैसा अगर आप बन के रहेंगी, उनके साथ खेलेंगी, इंजॉय करेंगी, तो वो बच्चे भी बहुत खुश होंगे, है ना?
1: हाँ दीदी दीदी दीदी, हम मेरे घर मोबाइल बहुत कम देखते हैं, बच्चे बहुत
0: जी
1: ज्यादा खेलते कूदते हैं।
0: सुनीता जी, ये तो बहुत अच्छा लगा कि आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारती हैं, और उससे क्या होता है, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा भी मिलती है।
1: हाँ जी, उनके साथ तो यहाँ पति की मतलब कभी कभी बैट बॉल खेल लेती हूँ ऐसे। हाँ
0: बिल्कुल, आप थोड़ी देर क्या, आप तो एक नियम बना दो कि 1 घंटे हमारे साथ तुम लोग को खेलना है ना? तो आप भी एक्टिव रहेंगी और बच्चे तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना?
1: मुझे
0: तो सुनीता जी, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करती हैं?
1: वो वाला

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं अहमदाबाद से जरीना बात कर रही हूँ
0: जरीना जी, और बताइए आप कैसी हैं?
1: जी। मैं अच्छी हूँ।
0: अहमदाबाद का मौसम कैसा है इस समय?
1: अहमदाबाद का मौसम तो अभी गर्मी ज्यादा पड़ रही है
0: अच्छा, और अपने बारे में और
1: जी।
0: कुछ बताइए।
1: मैं स्टोर चलाती हूँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस है मेरा।
0: अच्छा जरीना जी, तो इसमें क्या क्या चीजें आप बनवाती हैं?
1: बनवाती नहीं हूँ, होलसेल में लाती हूँ मुंबई से और यहाँ पे मार्केटिंग करती हूँ। हमारा जो नवरात्र आने वाला है ना, तो
0: जी
1: उसका सीजन चल रहा है, उसमें मैं बैंगल्स है, फिर
0: जी
1: नेकलेस है, वो सब लोग हम लाते हैं
0: जी
1: और उसको बिक्री करते हैं, स्टोर में रखते हैं।
0: क्या बात है, यानी कि सीजन आते ही बिजनेस बहुत तरक्की करता है ना?
1: जी। आप
0: जी
1: मंजरी जी बात कर रही है ना?
0: हाँ, मैं मंजरी वर्मा बोल रही हूँ
1: जी,
0: जी।
1: बहुत खुशी हुई आपसे बात करके।
0: चलिए धन्यवाद, अच्छा लगा। जरीना जी, आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: वो गीत नहीं है बल्कि वो भजन है, मैं अम्बे जगदम्बे, क्योंकि अभी नवरात्र आने वाला है ना,
0: जी जी जी जी
1: तो मैं वो गीत सुनना चाहूंगी।
0: जरीना जी, बिल्कुल, आपको हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना, और आपने कॉल किया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: मैं बबीता कुर्मी, जिला सागर।
0: बबीता जी, आपका हेलो सहेली में बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, सागर के क्या हाल हैं?
1: बस मैम जी बढ़िया है। आप सुनाओ, आपकी मुंबई की क्या हाल है मैम?
0: मुंबई बहुत अच्छी है, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो बबीता जी, अपने बारे में बताइए कि आप क्या करती हैं?
1: पढ़ाई करते हैं दीदी, और घर में रहते हैं तो माता पिता का हाथ बटाते हैं। जैसे खेती किसानी होती है हम लोगों को यहाँ
0: जी
1: पे, तो
0: जी
1: दीदी उसमें अभी हम लोगों के यहाँ पे वो करता है सोयाबीन और उड़दा बजाते हैं यहाँ पे उड़द। कभी आओ तो दीदी, यहाँ की मूंगफली है बहुत फेमस अर्जुनी की।
0: क्या बात है। फिर देखिए, जब कभी मौका मिलेगा, ऐसा सौभाग्य होगा, तो जरूर आएंगे और जरूर खाएंगे वहाँ की मूंगफली। मूंगफली के साथ में जो नमक मिलता है, उसका स्वाद भी अलग होता है ना?
1: हाँ दीदी, और दीदी देसी मूंगफली की तो बात ही अलग है दीदी। हम लोगों को यहाँ पे वैसे तो दीदी बुंदेली भाषा जानती हो आप?
0: हाँ जी, बोलिए बोलिए, बुंदेली में क्या कहना चाहती हैं आप?
1: तो बुंदेली में मतलब बोलती तो मूंगफली है जो हम लोगों को वो रहती है यहाँ पे हर खेतों में लगती है दीदी।
0: जी,
1: यहाँ के दीदी जो बेर होते हैं अभी तो मतलब नहीं फरे हैं, यहाँ पे फरने वाले हैं बस।
0: बेर जो उबाल के
1: दीदी
0: खाते हैं, छोटे वाले बेर होते हैं ना, लाल लाल।
1: हाँ, वो उबाल के दीदी जब वो फरते हैं, जब वो पक जाते हैं उनको तुरंत खाते दीदी, इतना अच्छा लगते हैं वो बेर।
0: जी। और बबीता जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। तो आप बुंदेली में कोई गीत गुनगुना सकती हैं?
1: जी दीदी, बुंदेली में एक छोटा सा गाना है दीदी, बेटी के ऊपर से। बिटिया
0: सुनाइए।
1: को अगर बच्चे होने तो बहू का सेना हो, नारी नारी की खान कहावे, बिटिया घर को नाम चलावे। आज की बिटिया बहू काल की, परसों माँ बन जे हो। यहाँ पे दीदी ऐसे गाना गाए जाते हैं लोग जी।
0: नहीं, बहुत प्यारा सा गाना है बिटिया के बारे में, कि बिटिया की क्या अहमियत होती है परिवार में।
1: जी दीदी, दीदी सबसे पहले तो आपके लिए और विविध भारती की पूरी टीम के लिए आने वाली नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: बिल्कुल, आपको भी हमारी तरफ से, विविध भारती परिवार की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी
0: तो
1: दीदी,
0: बबीता जी, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आज?
1: सुहाग फिल्म का गाना सुनवा देना, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम हो शेरोवाली।
0: बबीता जी, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: वो नंबर है 4002466 2, यानी 4002462। दूसरा नंबर है 2867 0288, यानी 2867 0288। तो बस हेलो सहेली में लगाइए ये नंबर्स और कीजिए अपनी दोस्त से बातें। प्रोग्राम हर शुक्रवार दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है। आप सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, कभी ना कभी आपकी कॉल लग जाएगी। जिन सखियों की कॉल आज लग गई है उनसे निवेदन है कि 2 महीने तक कॉल नहीं लगाएं। आज हेलो सहेली कार्यक्रम में सहयोग संपादन रहा झरना सोलंकी का और तकनीकी इंजीनियर समृद्धि नायक, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए अब मंजरी वर्मा को अनुमति। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: देते हैं कागज में लिखे किरदारों को शक्ल।
1: जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो आई थिंक।
0: कैसे होता है कई एक्टर्स में से एक का चुनाव?
1: जो कल्कि का पार्ट है चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी। वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ट्राई भी नहीं करना।

0: अनुभव और अपने जीवन की कई बातें हमसे साझा करने आ रहे हैं जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर गौतम किशन चंदानी। जरूर सुनिए बॉम्बे टॉकीज 10 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 11 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
1: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है
2: ना, बोलो, बोलो।
1: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा,
1: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर है ममता सिंह का।
2: अब तक आपने सुना आज अचानक ठंड बढ़ गई है, गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करती हुई लॉन में आ गई है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री एंटरटेनमेंट चैनल पर अप्रूव हो गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल जब मंच पर प्रणव सर ने सबके सामने हाथ मिलाकर उसे कॉन्ग्रेट्स किया तो कितना रोमांच हुआ था, मारे खुशी के जैसे पंख लगाकर वो उड़ चली हो आकाश में। हर इंसान अपनी बेहद खुशनुमा बात किसी आत्मीय अपने घर वालों से शेयर करना चाहता है, लेकिन दिव्या अपनी खुशी का इजहार किससे करे। जब साइबर क्राइम जैसे विषय पर उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने की सलाह दी गई थी तो वो कितना घबराई थी, लेकिन जब प्रणव सर ने उसे छोटी सी बाइट बनाने को कहा तो दोस्तों ने भी

कोर्स किया तो उसने ये प्रोजेक्ट ले लिया। प्रोजेक्ट बनाने के दौरान दिव्या को कितनी दिक्कतें पेश आई थीं, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। आखिरकार दिव्या के अथक परिश्रम ने रंग लाया और पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ। उसके सपनों की किताब का पहला अध्याय लिखा गया और उसके नाम डॉक्यूमेंट्री अलॉट हुई। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। सही मायनों में तो प्रणव सर, जो उसके मेन गाइड हैं, उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या, छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती। बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कॉम्पिटिशन उसके लिए सजा थी। वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन। वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठ कर कमरे में बंद हो गई थी। दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना। एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं। अरे, समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। विचार, उसूल, ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के महासागर में मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब। ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। अब सुनिए आगे की कहानी।

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था, वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। बारहवीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। तीन भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण दिया जाता था, सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला, हाँ आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला, अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही हैं। क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का, मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या सौम्या सौम्या, मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने, तूने कभी घर में किसी बात का विरोध

नहीं किया। गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है। तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में? दी, सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है। जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी। मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूं।

बारिश का मौसम था। वनडे पिकनिक पर कॉलेज की टीम माल्शेज घाट जा रही थी। कई दिनों की सिफारिश के बाद दिव्या को परमिशन तो मिल गई, पर उससे पहले उसे घर की अदालत के मुकदमे में तमाम जिरह पर खरा उतरना पड़ा था। कितने लोग, कौन कौन जा रहे हैं मां? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हा, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहाँ लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती, हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है, मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना। समझ गई बच्ची? बाइक पर तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी। चाची, जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको? लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो, वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था।

जन्म देने वाले मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थीं, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगीं। बेटी, कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा। हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना। हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला? वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना? यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में? सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता। दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली, आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं। वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूँ, पर अब नहीं। मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए पिछड़े घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, उबने लगी हूँ मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहाँ। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूँ, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना? इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है? इसमें बुराई क्या है? लड़की लड़के सब बराबर है आजकल। ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को मालशेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर। पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मालशेज घाट की गगन छूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पेड़ों के झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोस ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार गुलमोहर के पेड़ों को जूम मोड पर अपने कैमरे में जीवंत कर रही थी। फूलों की वादियों से आती चंपा चमेली की खुशबू को अपने भीतर वो समो लेना चाहती थी। उस वक्त दिव्या की आंखें गुलाब से खिली थी, टी टी करती टिटहरी का गान भी रिकॉर्ड कर रही थी। दिव्या इन वादियों में एक पंछी की तरह

0: मन से बहुत बिंदास अल्हड़ दिव्या के चेहरे के पीछे एक संवेदनशील रचनाशील सृजनकर्मी भी छिपा है। शायद उसकी संवेदनशीलता, उसकी रचनात्मकता ही उसे बार बार टेलीविजन की दुनिया में जाने को उकसा रही थी। पहले मास मीडिया की पढ़ाई पूरी करनी है और कम से कम इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट हो, ताकि बाद में पीएचडी की जाए और फिर तैयारी से टेलीविजन की दुनिया में काम किया जाए। उसकी तमन्ना है कि वो खुद लिखे और खुद ही प्रोड्यूस करे, सिर्फ धारावाहिक ही नहीं बल्कि एनिमेशन फिल्म भी बनाने के सपने का अंकुर उसके मन में फूट गया था। दिव्या की आंखों में अनगिनत चमकीले सपने परवाज लेते हैं। उसका हर सपना घर वालों के विचारों की वेदी पर झोंक दिया जाता है। उसके घर वालों के लिए ये सब कोरी बकवास के सिवा कुछ नहीं। उनका मानना है कि पढ़ाई कोई भी कर लो, पढ़ाई के बाद ब्याह करके घर गृहस्थी तो संभालनी है, जबकि दिव्या ने गृहस्थी को कहीं तीसरे या चौथे पायदान पर रखा था। पहाड़ों के सर्पीले रास्तों से गुजरते हुए जब दिव्या अपने दोस्तों के साथ लौटने लगी तो सामने से विनोद भैया आते दिखाई दिए। मन तो किया कि झटके से वो गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकी। विनोद भैया आकर दिव्या के कान में फुसफुसाकर बोले,
1: उस लंबू से सट सट कर ताली दे देकर इतना खींचे क्यों निपोर रही थी तू, हैं?
0: विनोद भैया, दिव्या को जलती आंखों से लिलोरते हुए विनोद भैया बाइक स्टार्ट करके पल भर में आंखों से ओझल हो गए। दिव्या तिलमिलाकर रह गई।

चाचा की जबान के जरिए घर में धधक रही थी। उनकी लाल आंखें शोले उगल रही थीं और उसमें वो जल रही थी। ऊपर से तो वो बुध बनी थी, लेकिन उसके मन में विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ रहा था। दिव्या अपने आप से ही पूछ रही थी कि आखिर उसका दोष क्या है, जमाना कहां पहुंच गया है। स्त्रियां धरती के हर छोर पर पहुंच गई हैं, स्पेस तक में अपना परचम लहरा रही हैं। ये संकुचित सोच के चाचा लड़कों के साथ घूमने क्या चली गई, घर सिर पर उठाए हुए हैं। खुद तो चाची की सहेलियों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर रस ले लेकर बतियाते हैं, हाँ, लेकिन दिव्या इस घर की बेटी है और वो लड़कों के साथ घूमने गई तो गलत करार दिया गया और उसे चाचा से बेवजह मार भी खानी पड़ी। इस आदर्श परिवार में बड़े होकर भी बात बात में पिट जाना आम बात है और ये उनके संस्कार में शुमार है। विनोद भैया ने दिव्या और इरफान को लेकर अफसाना गढ़कर चाचा और पापा से कह सुनाया था, वो भी इस तरह जैसे दिव्या कई दोस्तों के साथ न गई हो बल्कि अकेली इरफान के साथ गई हो, जबकि इरफान भी अन्य लड़कों की तरह महज एक दोस्त था। मम्मी ने भी चाचा पापा के पंचम सुर में अपना मंद्र सप्तक का सुर मिला दिया था। दिव्या, ए दिव्या, लड़की हो, इरफान से मिलना जुलना कम करो, समझी कि नहीं। लड़की का चरित्र सफेद चादर की तरह होता है, एक छींटा भी दाग लगा देता है उसमें। तुम जानती हो हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता है। उस दिन दिव्या का दिल दर्द से कराह रहा था, अनगिनत खरोंचे लगी थी, मानशेष घाट में देखे फूल मुरझा गए थे, बेचैन मन आंसुओं का झरना बन बहता रहा बहुत देर तक। कमरे का दरवाजा अंदर से उसने बंद कर लिया।

रोने के बाद मन हल्का हुआ तो दिव्या ने मोबाइल उठाया, फेसबुक पर मालशेज घाट की पहाड़ियों की तस्वीरें अपलोड की और व्हाट्सएप पर अपनी सहेलियों से बहुत देर तक चैट करती रही और तस्वीरें भेजती रही, इसी बहाने अपना जी बहलाती रही। दिव्या हमेशा ऐसा करती थी, जब उसे ज्यादा डांट पड़ती या मार पड़ती तो पहले खूब रोती थी, लेकिन उसके आंसू उसे सख्त बनाते थे और फिर इस तरह परिस्थितियों से जूझने का हौसला उसके भीतर पैदा हो जाता था। उस दिन के मार के बाद दिव्या ने अपने आप को काफी निसंग पाया, डांट और मार का असर भी अब कम होने लगा था। उस दिन वो चाचा की डांट और मार से पिकनिक का सुखद एहसास कसैला नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सोशल नेटवर्किंग का दामन थाम कर सुकून महसूस कर रही थी। उन दिनों घर में एक सिलसिला सा बन गया था, बात बात में दिव्या को एहसास कराया जाता कि वो एक लड़की है, उसे सलीके से रहना चाहिए। इसके उलट दिव्या कॉलेज के माहौल के अनुरूप खुद को बदल रही थी और ढाल रही थी। रायमा अक्सर उसे खुलेपन की तरफ खींचती, वो कहती, अरे यार थोड़ी आजाद ख्याल बनो, वरना किसी भी मर्द के पल्लू में बांधकर कैद कर दिया जाएगा और सारी जिंदगी गृहस्थी की चक्की पीसती रहोगी। समझ में आई बात?

दिव्या, ओ दिव्या, हाय हाय स्वीट हार्ट, तुझे क्या हुआ? किन ख्यालों में कहाँ खोई है तू? दिव्या, तुझे कब से आवाज दे रही हूं मैं? एवी रूम में सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। ड्रामा के रिहर्सल है और इस बार प्रणव सर और तानिया मैम भी ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? अच्छी बात, चल चल। ओ अरे हाँ, अरे तेरा लिखा अधूरा ड्रामा इरफान ने पूरा कर दिया। जानती है कितना अच्छा लिखा है उसने? तानिया मैम अपने रोल से इतनी खुश हैं कि उन्होंने इरफान को आज खूब कस के गले लगा लिया। दिव्या की आंखों के सामने वो दृश्य कौन गया जब उसे तुषार से हाई फाई करते हुए विनोद भैया ने देख लिया था। घर जाकर कैसी चुगली की थी उसने, और इस बात को लेकर भी घर में हंगामा हुआ था। चाचा का लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़ा था। चाचा की डांट एक अनपढ़ की तरह थी जिसे सुनना बुखार सी पीड़ा देता था। उस घर में विनोद भैया की भूमिका महज एक जासूस की थी। अगर घर वाले कॉलेज का ऐसा ओपन माहौल देख लें तो जाने क्या हो जाएगा, दिव्या सोचती है। घर और बाहर की दुनिया कितनी अलग है, कितनी अलग। घर में जो गलत है वही बाहर कॉलेज में नॉर्मल है, रूटीन है। इन सब बातों पर तो आजकल किसी का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन दिव्या के घर में ये एक तरह का अपराध है, बुराई है ये। चल चल दिव्या, चल, तू ड्रामा की हीरोइन है और जानती है हीरो का रोल कौन अदा कर रहा है, पता है? दिव्या ने कोई उत्साह नहीं दिखाया ये सुनने के बाद भी। अरे बाबा, पूछ तो सही, कौन है? पूछेगी नहीं? दिव्या अपनी पलकें प्रश्नवाचक मुद्रा में ऊपर उठा देती है। प्रणव सर, पता है? प्रणव सर। अनमनी सी दिव्या उठकर अपने रूम की ओर चल देती है। जाते जाते कहती है, राइमा सुनना, सर और मैम को मैसेज दे देना प्लीज, आज मैं रिहर्सल पर नहीं आ पाऊंगी प्लीज। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? चल ना चल। नहीं, मैं नहीं चलूंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कहते हुए दिव्या बरामदे की ओर मुड़ जाती है। रायमा उसका मन टटोलने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। हॉस्टल के कमरे में जाकर दिव्या ड्रामा के स्क्रिप्ट निकालती है। कल तो रिहर्सल में जाना ही होगा। रिहर्सल में नहीं जाऊंगी तो रीडिंग कैसे होगी, और एक रीडिंग बहुत जरूरी है, अपने आप से ही वो गुफ्तगू करती है। आखिर ये चमकीला सपना मैंने ही तो देखा है, मेरे ही सपने का हिस्सा है ये, फिर मेरा मन क्यों घबरा रहा है?

आज दिव्या का मन खुद से ही जद्दोजहद कर रहा है कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। अगर डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट नहीं हुई तो अगले सेमेस्टर के लिए फीस के पैसे कहाँ से आएंगे? पिछले सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप के पैसे से फीस पूरी नहीं हुई थी। इरफान और रायमा ने मिलकर बाकी फीस ऑनलाइन भर दी थी। उनका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं? अगले दोनों सेमेस्टर में ज्यादा फीस की जरूरत होगी, प्रोजेक्ट वर्क भी ज्यादा होगा। प्रोजेक्ट वर्क में लगने वाली सामग्री बहुत महंगी होती है, कहाँ से आएगी ये रकम? दिव्या का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वो जब मन से परेशान होती है तो अपने आप को अकेलेपन के महासागर में डुबो देती है। अपने एकाकीपन से खुद को बाहर नहीं निकालना चाहती। अपनी पीड़ा को वो तार तार महसूस करती है, अपनी बेचैनी को सहलाती है और उससे जूझती भी है। उसे अपने आप पर गुस्सा आता है, अपने हालात पर भी, घर वालों पर भी। लेकिन एकाकीपन के उसके ये लम्हे उसके प्रिय होते हैं। ऐसे में वो या तो अपनी डायरी उठाती है या फिर खिड़की से बाहर खाली खाली नजरों से दूर तक देखती है।

शून्य में देखती हुई वो अपनी डायरी उठाती है। पन्नों के बीच एक मुड़ा तुड़ा कागज मिलता है। मुंबई से वर्धा तक का टिकट होता है, वो भी जनरल टिकट। अजीब थी वो रात, ऊंची अट्टालिकाओं के ऊपर अंधा आसमान, जैसे कुछ नीचे सरक आया हो। आसमान में टंगे चांद और जगमग करते सितारे यूं लग रहे थे जैसे कि दिव्या हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने बैग में रख लेगी। खाली आंखों के सामने वो दृश्य तिर जाता है जब घर से अकेली निकल आई थी दिव्या। दिव्या ने बैग में थोड़ा सा सामान रखा था। इरफान और राइमा को भी उसने अपनी योजना के बारे में नहीं बताया था। एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई थी, लेटर आया, उसे मास कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन मिल गया था। टेलीविजन प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए उसे 5 साल के लिए वर्धा में रहना पड़ेगा। सुनते ही जैसे घर में तूफान आ गया। 5 साल पढ़ते पढ़ते बूढ़ी हो जाओगी, पराए शहर में जाकर कैसे गुजारा होगा तुम्हारा? और किसके साथ रहोगी हैं?

आ न कोई नातेदार न रिश्तेदार। हॉस्टल में रहने के नाम से पापा और चाचा ने ऐसे 10 हादसों का जिक्र किया था जिनकी खबर अखबार में छपी थी। हॉस्टल में रहना लड़कियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हम लोग तुम्हें दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाजत कतई नहीं देंगे। अगले दिन राइमा घर आई थी समझाने। इरफान और तुषार ने भी फोन पर मम्मी से बहुत इसरार किया था। आंटी, दिव्या को जाने दीजिए ना, हम सब साथ रहेंगे, उसकी देखभाल कर लेंगे। दिव्या ने घर वालों को बहुत समझाया, मम्मी मेरे साथ राइमा रहेगी, कोई भी परेशानी होगी तो हम दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। फिर मम्मी, आजकल तो फोन का जमाना है, मान जाओ ना बात। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हम दिन में कई कई बार बात कर सकते हैं। अरे वीडियो कॉल करेंगे, वेबकैम के जरिए हम एक दूसरे से चैट करेंगे। मम्मी अभी आप भी वीडियो कॉल कर लेती हो ना। मम्मी प्लीज एक बार इजाजत दे दो। बोझिल कदमों से चलती हुई दिव्या का मन अपने करियर के लिए उत्साहित था, लेकिन घर वालों को छोड़कर यूं चुपके से आना उसके कलेजे पर जैसे आरी चल रही थी और वो पीड़ा से कराह रही थी। रास्तों का पता नहीं, नदी के उस पार टिमटिमाते हुए दिए की मध्यम रोशनी, कैसे जाएगी वो उस पार? कोई साथ नहीं, कोई सहयोगी नहीं, सिर्फ एक स्कॉलरशिप के बूते पर पूरी पढ़ाई कैसी होगी? क्या होगा मेरा, कैसे रहूंगी मैं अपने घर वालों के बिना? वो विचारों की गहरी खाई में उतरती गई। चलते चलते दिव्या स्टेशन पहुंच गई थी। सीढ़ियां उतरकर उसने सामने खाली पड़ी एक बेंच पर अपनी काया को जैसे धकेलते हुए बिठा दिया था। प्लेटफॉर्म पर दूर टिकी आंखों के सामने रात का अंधेरा था, गुलाबी ठंड थी, मौसम पर धुंध छाई थी और दिव्या की आंखों पर भी गहरी धुंध थी। दिव्या खाली निचाट आंखों से दूर देख रही थी। डीजल इंजन वाली ट्रेनें आ रही थीं, जा रही थीं। सारी गाड़ियों का वक्त और गंतव्य बिल्कुल निर्धारित था, पर दिव्या की ट्रेन का ना तो नियत समय था और ना ही नियत मंजिल। किस शहर में जाना है ये तो पता है, लेकिन किस ट्रेन से जाना है ये तो दिव्या ने भी नहीं सोचा था। न तो उसके पास यात्रा का टिकट था और न ही पराए शहर में पहुंचने के बाद का कोई ठिकाना। मंजिल इतनी दूर थी कि वो उहापोह में थी। पता नहीं मंजिल मिलेगी भी या नहीं, क्या यूं ही मैं टूटकर घर लौटूंगी? नहीं, यूं टूटकर घर नहीं लौटना है। उस रात कई गाड़ियां आती और जाती रहीं। अंत में अपने भीतर हौसला पैदा करती हुई खुद ही हौसले से डग भरती हुई वो एक ट्रेन में बैठ गई। यही वो टिकट था जिसने उसे वर्धा पहुंचाया था। हाथ में पकड़ा हुआ टिकट कड़कड़ाती सर्दी में भी पसीने से गीला हो गया था। उसे घबराहट सी हो रही थी। वर्तमान की धूप और अतीत का कोहरा, उसने आंखें मिचमिचाकर कसकर अपनी हथेलियां रख ली थीं। हथेलियों पर कुछ सर्द बूंदें चिपक गई थीं। हॉस्टल की कैंटीन में बजने वाली बेल से दिव्या की तंद्रा टूटी। रोज शाम को चाय के वक्त यही बेल बजती है। कोहरे से डूबी शाम अब अंधेरे की काली चादर ओढ़ रही है। लॉन के लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी किलेटी के उस जोड़े पर झिलमिल कर रही है जिसने अभी अभी बसेरा लिया है। पक्षियों के झुंड पेड़ों की पत्तियों में छिप गए हैं। सोने से पहले का उनका संवेद गान बज रहा है और दिव्या के कान में नाटक के गीत का वो हिस्सा गूंज रहा है जो उसे मंच पर गाना है। इस नाटक की वीडियो रिकॉर्डिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में संग्रहित की जाएगी और उसके करियर में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ जाएगा।

गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब

शाम की ठंडी हवा और दोस्तों की खिलखिलाहट मिलकर जैसे दिन भर की थकान चुरा लेती है। कोई अपनी परेशानी बताता है, कोई बिना मांगे सलाह देता है और कोई बस मजाक करके माहौल हल्का कर देता है। सच्चे दोस्त शायद वही होते हैं जिनके सामने हमें खुद को बेहतर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके साथ चुप्पी भी बातचीत जैसी लगती है। कभी जीवन की बड़ी समस्याओं का हल किसी बड़ी किताब या भाषण में नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ बैठकर की गई एक सच्ची बातचीत में मिल जाता है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार दोस्तों। कार्यक्रम युववाणी में आज मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो हम सफर रानी राजश्री। कुछ विदाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में समेट पाना आसान नहीं होता। किसी अपने के जाने का खालीपन सिर्फ एक व्यक्ति के चले जाने से नहीं, बल्कि उससे जुड़ी अनगिनत यादों के पीछे छूट जाने से महसूस होता है। आज हम उस आत्मीय व्यक्तित्व को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिसकी मौजूदगी ने अपने जीवन को किसी न किसी रूप में छुआ। उनकी बातें, उनकी मुस्कान और उनके साथ बिताए पल हमेशा हमारी स्मृतियों में जीवित रहेंगे। और 8 अक्टूबर को नाना पाटेकर जी हमारे बीच नहीं रहे, हमेशा हमारी स्मृतियों में जीवित रहेंगे। नाना पाटेकर जी को याद करना दरअसल उन किरदारों को याद करना है जिन्होंने पर्दे से निकलकर सीधे हमारे दिल में जगह बनाई। कभी एक संवेदनशील इंसान बनकर, कभी संघर्ष से जूझते आम आदमी के रूप में, तो कभी व्यवस्था पर सवाल उठाती आवाज बनकर उन्होंने अभिनय को सिर्फ अभिनय नहीं रहने दिया। उनके किरदारों में जीवन की सच्चाई थी, दर्द था, गुस्सा था और सबसे बढ़कर इंसानियत थी। उनकी आवाज में एक ऐसी कशिश थी जो संवाद खत्म होने के बाद भी देर तक हमारे मन में गूंजती रहती है। उनका व्यक्तित्व भी उनकी कला की तरह सादगी और बेबाकी से भरा दिखाई देता है। यही वजह है कि नाना पाटेकर केवल एक अभिनेता नहीं बल्कि भावनाओं को आवाज देने वाले कलाकार थे। उनकी श्रद्धांजलि नहीं बल्कि दिल से उन्हें सलाम उस कला को, उस व्यक्तित्व को और उन यादगार किरदारों को जो हमेशा हमारे बीच जीवित रहेंगे।

0: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
1: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
2: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
1: आपका साइबर रक्षक।
3: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
4: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आकाशवाणी उबरस इस वक्त आप सुन रहे कार्यक्रम युवाणी। कार्यक्रम के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आइए वार्ता सुनते हैं जिसका विषय है अक्षय ऊर्जा। वार्ताकार है अर्पित देव पांडे, आइए सुनते हैं।
1: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, मैं हूं अर्पित देव पांडे और मैं आज मौजूद हूं ओबरा आकाशवाणी के स्टूडियो में आप सभी के साथ में एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए जो न सिर्फ आज के समय के लिए प्रासंगिक है, महत्वपूर्ण है, बल्कि उतना ही रोचक भी है। और वो विषय है अक्षय ऊर्जा, जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से जानते हैं। प्यारे साथियों, मैं अपनी बातों को चार लेवल पर करने का प्रयास करूँगा जिससे आप सभी को मेरी बात अच्छे से समझ में आए और अवधारणाओं को समझने में काफ़ी आसानी भी हो। तो पहला लेवल होगा, हम उसमें समझेंगे कि क्या है अक्षय ऊर्जा और इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। दूसरे लेवल पे हम बात करेंगे कि इसकी आवश्यकता क्या है, आखिर क्या ऐसा सिनेरियो बन रहा है जिसमें हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ रहा है। लेवल थ्री पे हम पहुंच के बात करेंगे कि वर्तमान परिदृश्य क्या है और सरकारी प्रयास क्या हो रहे हैं इसके लिए। लेवल चार पे हम बात करेंगे कि आगे की राह क्या हो सकती है और इसमें आम जन की भागीदारी क्या होगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले लेवल पे हम बात करने वाले हैं क्या है अक्षय ऊर्जा।

तो देखिए, इन्हें साधारण शब्दों में समझें तो अक्षय ऊर्जा उस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त ऊर्जा होती है जिसमें किसी भी प्राकृतिक घटक का हास ना हो, नुकसान ना हो, उन्हें हम अक्षय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त ऊर्जा जिसमें कार्बन एमिशन कम से कम हो। जैसे हम पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त करते हैं, फॉसिल्स फ्यूल से हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं, जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल, इन सब के अतिरिक्त जितने भी सोर्स हैं जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वे सभी अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। अब हम ये समझ सकते हैं कि अक्षय ऊर्जा क्या है। मैं आप सभी को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाना चाहूँगा, जैसे विंड एनर्जी, सोलार एनर्जी, ओशन एनर्जी, बायो एनर्जी और इसी तरीके की कुछ और ऊर्जाएं। तो हम लेवल 2 पे पहुंच गए हैं और हमने समझ लिया है कि क्या है अक्षय ऊर्जा और इसके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। दूसरे लेवल पर हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या आवश्यकता आन पड़ी है हमें रिन्यूएबल एनर्जी की, कि हम इसके तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें अपना भविष्य देख रहे हैं। तो प्यारे साथियों, हम इसे समझ लें कि रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा भविष्य की जरूरत नहीं है, ये हमारी आज की आवश्यकता है और इसे हमें आज ही इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। फिर भी मैं आप सभी को कुछ फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ जो आपको पूरे परिदृश्य को समझने में मदद करेगी। 2020 में आई रिपोर्ट जो कि IDMC की है, उसमें वो कहती है कि 5.4 मिलियन लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए। वहीं प्रति वर्ष हमारे देश में 1600 लोगों की मृत्यु हो जाती है। वहीं कुछ और फैक्ट्स की बात करें हम, तो हमारे देश में प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम, ग्लोबल वार्मिंग में कमी, क्लाइमेट चेंज के उन्मूलन, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो है ऊर्जा सुरक्षा की निश्चितता, इन सभी कारक जो हैं वो हमारे इस अक्षय ऊर्जा की जरूरत को बहुत ही महत्वपूर्ण बना देते हैं। ऊर्जा सुरक्षा को अगर हम इसे परिभाषित करें तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि ऊर्जा सुरक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर व्यक्ति को एक निश्चित दर पर, सस्ते दर पर ऊर्जा उपलब्ध हो, कभी भी कहीं भी। तो इस ऊर्जा सुरक्षा की सुनिश्चितता के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। साथ ही साथ हम आज अधिकतर देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं कैसे अपने चरम सीमा पर हैं, क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हो रहा है जो हमारे जीवन पर असर डाल रहा है, साथ ही साथ ग्लोबल वार्मिंग जो कि एक वैश्विक स्तर पर बहुत ही गंभीर मुद्दा बना हुआ है जिससे ना सिर्फ मानवता को नुकसान है अपितु हमारे पृथ्वी को भी उससे बहुत बड़ा खतरा है। तो हमने ये जाना इस पूरे परिघटना से कि आज हमें रिन्यूएबल एनर्जी की कितनी आवश्यकता है और क्यों आवश्यकता है। लेवल 3 पर हम पहुंच चुके हैं और अब हम बात करेंगे कि वर्तमान परिदृश्य क्या है, आज की रिन्यूएबल एनर्जी में हम कहां तक पहुंचे हैं और इसके लिए सरकार का क्या प्रयास रहा है। तो सरकार का प्रयास काफी सराहनीय है, उससे पहले हम बात करेंगे कि आज का हमारा सिनेरियो क्या है। सरकार द्वारा LPG कनेक्शंस को बढ़ावा मिल रहा है ग्रामीण इलाकों में, तो इससे रिन्यूएबल एनर्जी में हमें काफी अच्छी बढ़त मिलती है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने में बायोफ्यूल CNG को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही साथ और कई सारी योजनाएं जैसे कुसुम सोलर पार्क और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, सोलर रूफटॉप योजना, ये सभी जो मुहिम है ये काफी सराहनीय है और हम इसमें काफी अच्छा भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आई IEA की जिसमें वो कहती है कि 2020 से 27 की अवधि में 145 अतिरिक्त गीगावाट क्षमता के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लगभग दोगुना होने की संभावना है। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का निर्माण होने की संभावना है जिसके लिए हमें 2.44 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। ये तो हमने बात की कि हम अपने राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास कर रहे हैं। वहीं भारत सरकार ने अपने ग्लासगो सम्मेलन में पंचामृत योजना की अवधारणा प्रस्तुत की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 2030 तक भारत में हम नवीकरणीय ऊर्जा यानी अक्षय ऊर्जा से 500 गीगावाट तक की बिजली बनाएंगे। वहीं 50% ऊर्जा आवश्यकता अक्षय ऊर्जा से पूरी करेंगे 2030 तक। तीसरा वचन हमने दिया, हरित अर्थव्यवस्था की ओर हम अपने देश को लेके जाएंगे। चौथी है कार्बन घनत्व 50% तक हम 2030 तक करेंगे। 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अर्थात अपने द्वारा एमिट किए गए कार्बन को हम
नेट जीरो तक लेके

जाएंगे, जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। अब हम लेवल 4 पर पहुंच के बात करेंगे कि आगे की राह क्या हो सकती है, हमारे लिए एक रोड मैप क्या हो सकता है, फ्रेमवर्क क्या हो सकता है। हमारे लिए सबसे बड़ा प्रयास यही हो सकता है कि हम डेवलपमेंट को बढ़ावा दें, रिन्यूएबल एनर्जी में संभावित गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की खोज तथा उन्हें किफायती एवं सुलभ बनाने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है। वहीं हमें परमाणु ऊर्जा के विकास पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहीं हमें कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के संभावित परिणामों को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वहीं हमें आम जन को भी इस बारे में गहन विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि क्या है ऊर्जा के महत्व, हम अपनी ऊर्जा के देखने के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाएं, हम गैर पारंपरिक स्रोतों से आगे निकल करके, जीवाश्म स्रोतों से आगे निकल करके नए स्रोतों की तरफ जाएं। यही हमारे संभावित जो है कि रोड मैप्स हो सकते हैं। आखिरकार हमें ही विचार करना है कि हम अपने पृथ्वी को हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। बढ़ते हुए मरुस्थल, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से पृथ्वी का जला भुना मुंह या हंसती हुई पृथ्वी।

0: डेंगू चिकन गुनिया मलेरिया दिमागी बुखार से बचे के
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
3: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
4: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
2: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
4: आपका साइबर रक्षक।
5: दोस्तों, हमारी सेना केवल देश की सीमाओं की रक्षा करने वाली शक्ति नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों के विश्वास, साहस और सुरक्षित भविष्य का प्रतीक है। जब हम अपने घरों में सुकून से सोते हैं, अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की सोचते हैं, तब कहीं दूर हमारे सैनिक पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य निभा रहे होते हैं। उनके लिए देश की मिट्टी सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि माँ के आंचल जैसी पवित्र होती है। वे अपने परिवार से दूर रहकर भी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज है प्रादेशिक सेना दिवस। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि देश की सेवा केवल सीमा पर तैनात रहकर ही नहीं, बल्कि अपने सामान्य जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी की जा सकती है। भारतीय प्रादेशिक सेना ऐसे नागरिकों का संगठन है जो अपने नियमित पेशे या व्यवसाय के साथ साथ जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा और सेना की सहायता के लिए आगे आते हैं। इन जवानों में शिक्षक, डॉक्टर, कर्मचारी, व्यापारी और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग शामिल हो सकते हैं। इनका जीवन हमें सिखाता है दोस्तों कि देशभक्ति केवल नारों में नहीं, बल्कि कर्तव्य निभाने के जज्बे में दिखाई देती है। दोस्तों, प्रादेशिक सेना के जवान जरूरत पड़ने पर नियमित सेना की सहायता करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं, आपातकालीन परिस्थितियों, साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में भी अपना योगदान देते हैं। इनके लिए देश की सेवा एक जिम्मेदारी है जिसे ये पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ निभाते हैं। दोस्तों, इनके समर्पण से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि राष्ट्र निर्माण में हर नागरिक की अपनी अपनी भूमिका होती है। आज जब हम प्रादेशिक सेना दिवस मनाते हैं, तो हमें उन सभी लोगों के योगदान को सम्मान देना चाहिए जो अपने परिवार और पेशे की जिम्मेदारियों के साथ देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भी प्राथमिकता देते हैं। जी हाँ, हमारे सैनिक तो जिस प्रकार अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, वो बॉर्डर पर तैनात हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। ठीक उसी प्रकार हम समाज में रहकर भी अपनी भागीदारी इस जिम्मेदारी के प्रति दे सकते हैं। देश की सुरक्षा केवल सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी, आपकी, यानी कि हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए, राष्ट्रीय एकता बनाए रखनी चाहिए और जरूरत के समय देश के साथ

खड़े रहना चाहिए। यही प्रादेशिक सेना दिवस का सच्चा संदेश है कि देशभक्ति किसी एक वर्दी की मोहताज नहीं होती, बल्कि यह हमारे विचारों, कर्मों और समर्पण में दिखाई देती है।

दोस्तों चलिए कार्यक्रम में अब एक खास व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है उत्कलमणि गोप बंधु दास। जी हाँ, और आज है इनकी जयंती। इन्होंने अपना जीवन समाज की सेवा, शिक्षा और देश के प्रति समर्पण में लगा दिया। उन्हें ओडिशा में बड़े सम्मान और प्रेम से याद किया जाता है। दोस्तों गोप बंधु दास जी का जन्म 9 अक्टूबर 1877 में हुआ था। वे केवल स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे बल्कि समाज सुधारक, लेखक, पत्रकार और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले एक खास व्यक्तित्व भी थे। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति का जीवन तभी सार्थक होता है जब उसके प्रयासों से दूसरों के जीवन में भी बदलाव आए। गोप बंधु दास ने उस समय समाज की समस्याओं को समझा जब गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता लोगों की प्रगति में बड़ी बाधाएं थी। उन्होंने शिक्षा को समाज बदलने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना। इसी सोच के साथ उन्होंने सत्यवादी विद्यालय की स्थापना में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई। दोस्तों उनका उद्देश्य था कि ऐसी शिक्षा देना है जो विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित न रखे बल्कि उनमें सेवा, अनुशासन, साहस और मानवीय मूल्यों का विकास करे।

उनका जीवन भी हमें यही सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व सुविधाओं से नहीं बल्कि कठिन परिस्थितियों में लोगों के साथ खड़े होने में दिखाई देती है। वे जरूरतमंदों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और समाज के दुख दर्द को अपना दुख समझते थे। दोस्तों, चलिए कार्यक्रम में हम बात करते हैं विश्व डाक दिवस के बारे में। डाकघर और चिट्ठियों का रिश्ता कभी हमारे जीवन का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा हुआ करता था। एक चिट्ठी में किसी का प्यार होता था, किसी की चिंता, किसी की प्रतीक्षा और कभी कभी दूर बैठे अपनों की पूरी दुनिया समाई होती थी। विश्व डाक दिवस हमें उसी रिश्ते और उस व्यवस्था की अहमियत याद दिलाता है जिसने वर्षों तक लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखा। हर साल 9 अक्टूबर को दोस्तों यह दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई थी जिसने दुनिया भर में डाक सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक समय था, एक दौर था जब डाकिये के आने की आहट से घरों में उत्सुकता बढ़ जाती थी। कोई बेटे की चिट्ठी का इंतजार करता था तो कोई नौकरी के बुलावे का। त्योहारों पर भेजे गए शुभकामना पत्र और हाथ से लिखे संदेश रिश्तों में एक अलग ही अपनापन भर देते थे। दोस्तों, आज मोबाइल फोन, ईमेल और इंटरनेट ने संवाद को बेहद तेज बना दिया है, लेकिन डाक सेवाओं की उपयोगिता अब भी कम नहीं हुई है। सरकारी दस्तावेजों, जरूरी पत्रों, पार्सल और ऑनलाइन खरीदारी से जुड़ी वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाने में डाक विभाग की अहम भूमिका है। ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी डाक सेवाएं लोगों को जरूरी सुविधाओं से जोड़ती है। दोस्तों, यह दिवस यानी कि विश्व डाक दिवस केवल डाक व्यवस्था की उपलब्धियों को याद करने का अवसर नहीं है बल्कि उन कर्मचारियों के परिश्रम को सम्मान देने का दिन है जो मौसम और दूरी की परवाह किए बगैर हमारी चिट्ठियां और हमारा पार्सल हम तक पहुंचाते हैं। तकनीक चाहे कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, लोगों को जोड़ने का महत्व कभी भी कम नहीं होगा।

दोस्तों, चलते चलते एपीजे अब्दुल कलाम जी के इस विचार के साथ, जो कि समय की कीमत क्या मायने रखती है हमें सिखाता है, विचार है समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझें। जिसका अर्थ है कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, इंसान को हर परिस्थिति में विनम्र रहना चाहिए और दूसरों का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आज कार्यक्रम युववाणी का सफर यहीं तक। अब अपनी रेडियो हमसफर रानी राष्ट्रीय को कार्यक्रम से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। शाम के 5:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम घटनी।

सब बहिन लोगन के गौरी का राम राम। बहिन लोगन अपन बैठ के एक बार फिर लग गई और हम आप लोगन से मिले खातिर समय से जुट गए नहीं। और सुनावे आप लोगन का हाल समाचार बा, सब कुशल मंगल बा ना। बहिन लोगन देखा अबहिन तब पितर लोगन के विदाई हो रहल बा और यही के साथ साथ अपन जन शारदीय नवरात्रि यानी नौ देवी दुर्गा माता का आगमन भी हो रहल बा। और ये आगमन देखा रविवार से बा यानी कि 11 तारीख से शुरू बाटे। और अब जब भी बहन लोग देखे केहू भी अतिथि अगर हम लोग के यहाँ आवेला, हम लोग के सूचना मिल जाला, तो हम लोगों ने अपन घर द्वार साफ सुथरा धो के पोछ के ओढ़ना बिछौना चादर पर्दा धो के घर में ही जाला मकोड़ा नान बा, कहीं कानू गंदगी तो नान बा। नहीं तो आए वाला मेहमान का सोची है, इस सोच के हम लोगों ने अपने घर के कोना कोना के चमकावल जाला कि मेहमान आवे तो उनके अच्छा लगे। तो ई तो जगत जननी माता हैं, आ जब इनकर आगमन होई तो घर द्वार साफ सुथरा तो कर ही के पड़े। आ जब घर द्वार आप लोग साफ सुथरा कर ली हैं तो फिर देखो बारी आवेला मंदिर के साफ सफाई यानी पूजा स्थल के व्यवस्थित कर लें। मंदिर जहाँ भी हो भगवान का जो स्थान हो ओके साफ सुथरा करके गंगा जल से छिड़क करके शुद्ध कर लें। अब मंदिर में अगर कोनो पुरानी या खंडित वस्तु होके ओके अवश्य हटा दें। अब पूजन देखे सामग्री बा कि पहले से ही देखे जुटा ली है तो अच्छा रहे। और जैसे जौन भी बहन लोगों ने कलश स्थापना करें तो मिट्टी का कलश साफ जल गंगा जल मौली कलावा सिंदूर आम या अशोक का पत्ता जौन के पंच पल्लो भी कहल जाला, जौ और मिट्टी कलश स्थापना के लिए मिट्टी बालू साथ में जौ बोवे खातिर माता रानी का श्रृंगार वस्त्र चुनरी माई का मूर्ति चित्र दीपक प्रसाद घी तेल रुई बाती धूप कपूर फूल फल और नैवेद्य इतना कुल इकट्ठा कर लें आप लोग। फिर तैयारी आप लोग को बढ़िया से हो जाए फिर माता रानी के आप लोग कलश स्थापना करें, माई के स्थान पर बैठावें और आसन पर जमावें माई के। और भोग का सामान में जैसे मान लें आप लोग के थोड़ा सा तैयारी करे के पड़ेला कि हम लोग भोग का चढ़ावल जमाई के, तो ओकर भी तैयारी करके रखें। जैसे नैवेद्य के लोग भोग लगावे ना, फल का भी लगावे ना और मेवा का लगावे ना। अब जैसे मान लो बहन लोग अगर अखंड ज्योति जलावे के विचार कैले हैं तो एक लिए शुद्ध घी और पर्याप्त व्यवस्था पहले से ही कर लें। और व्रत और खान पान अगर आप लोग बहन लोग अगर 9 दिन का व्रत रखे का संकल्प लेते हैं तो देखें सात्विक फलाहार सामग्री जैसे सिंघाड़े का आटा सेंधा नमक फल मेवा ये सब पहले से तैयार रखें। और वहीं लोगों ने देखा लहसुन प्याज और तामसिक भोजन का त्याग करें और घर में अच्छा वाला मतलब वातावरण रखें, अच्छा माहौल रखें। और बच्चों के भी सिखावें कि चप्पल जूता बाहर रखें, हाथ मुंह धोएं पैर धोएं तब अंदर आवें। वहीं लोगों ने देखा जब इतना कुल तैयारी हो जाए तो माता रानी का आप लोग कलश रखें, माता रानी के आसन पर विराजमान करें और अपन यथाशक्ति तथा भक्ति करें। और साथ में देखे बहन लोगों आज है विश्व डाक दिवस। बहन लोगों देखे विश्व डाक दिवस हमके ये याद दिलावेला कि दुनिया भर के लोगन और व्यवसाय के लिए डाक सेवा कितना महत्वपूर्ण है। इस समुदाय के जोड़े और सामाजिक और आर्थिक विकास में डाक सेवा का जौन भूमिका बना ओकर जश्न मनावे का ही दिन है। बहन लोग देखा विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर के ए लिए मनावल जाला कि 1874 के यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु वर्न स्विट्जरलैंड में 22 देश मिलकर के एक संधि पर हस्ताक्षर कैले रहना, यही लिए विश्व डाक दिवस मनावे खातिर ये दिन चुनल गई है। और बहन लोगों ने अपन दिन तो आप लोग के यादें हुई अपन जमाना जब अपन पिया लोग परदेश रहें या घर के कोनो प्राणी भी परदेश

0: है और उनके पाती का इंतजार बेसब्री से रहे, और साथ में मनी ऑर्डर भेजना कि ना है, कुछ खर्चा पानी भेजना कि ना है, ये सब हम लोग का इंतजार रहे बेसब्री से। और चिट्ठी पाती के माध्यम से देखे बहन लोगों ने हम लोग अपन भावना जो शब्द में पिरो करके उन तक पहुँचावल जाए, और साथ में इंतजार रहे अपने डाकिया बाबू का यानी पोस्टमैन का, कि जब वही हैं तो गांव को लोग देखें उत्सुकता से, उनके नयन भर भर के देखें कि लागत बा कि हमारे यहाँ कोनो पत्र या मनी ऑर्डर आवत बा। बहन लोगों देखा ये दिन हमारे जीवन में डाक सेवा लोगन के जोड़े, संचार के बढ़ावा देवे, व्यापार के सक्षम बनावे और विभिन्न देशन के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के बढ़ावा देवे में मदद करेला, जैसे ये सेवा वैश्विक समुदाय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाला। भाई लोगों यही से संबंधित आज हम लोग बीच जानकारी भी है कि विश्व डाक दिवस पर विशेष जानकारी आशुतोष प्रसाद शुक्ल जो एक पोस्ट मास्टर हमारा, उनसे अपने बता सब इनका बातचीत है, आवे देर न कही जाए, जानकारी हम लोग सुनल जाए।
1: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, संचार के साधनों में डाक विभाग एक महत्वपूर्ण साधन है और डाक का इतिहास तो सदियों पुराना है। पूरे विश्व में डाक सेवाओं का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। देश के छोटे छोटे गांव और कस्बे से लेकर के शहर और हर राज्य में लाखों की संख्या में डाकघर उपलब्ध है। देखिए, जैसे प्रत्येक घर का एक अपना मुखिया होता है, उसी तरह से प्रत्येक डाकघर का भी एक प्रमुख मुखिया होता है, जिसे पोस्ट मास्टर कहा जाता है, जिनका काम डाक के डिब्बे में प्राप्त पत्रों को सही जगह पर पहुंचवाना होता है। और भी बहुत सारी सुविधाएं और सेवाएं प्रदान की जाती है। आज उन सुविधाओं और सेवाओं के बारे में जानेंगे बातचीत के माध्यम से। आज हमारे साथ आकाशवाणी ओबरा के स्टूडियो में आमंत्रित हैं आशुतोष प्रसाद शुक्ला जी, जो कि ओबरा डाकघर के पोस्ट मास्टर हैं। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। आशुतोष प्रसाद शुक्ला जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आपका।
1: सबसे पहले तो हम सबको आप ये बताएं कि आप ओबरा के डाकघर में अपनी सेवाएं कितने वर्षों से दे रहे हैं?
2: मैं ओबरा के डाकघर में 1998 से सेवाएं दे रहा हूं। लगभग 26 वर्ष मुझे सेवाएं देते हो चुका है।
1: तब तो काफी अनुभव है आपका इस डाकघर के बारे में। देखिए आशुतोष जी, प्रत्येक वर्ष जो है कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है।
2: जी जी।
1: तो इसे मनाने का उद्देश्य क्या है और इसके इतिहास और महत्व के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे।
2: डाक का इतिहास बहुत पुराना है। 1874 में जब डाक का आदान प्रदान आरंभ हुआ था, जो कि सुव्यवस्थित नहीं था, इसको सुव्यवस्थित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब मेरे यहाँ आई भारत के अंदर, इन्होंने एक व्यवस्था बनाई जिसको डाकघर का नाम दिया और कोलकाता जीपीओ बनाया। इन्होंने घुड़सवारों के माध्यम से डाक का आदान प्रदान सुगमता से करने के लिए और इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक मुख्यालय भी बनाया जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में स्थित है। वहां पर डाक के आदान प्रदान में सहयोग करने वाले संपूर्ण देशों का एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन के पश्चात इन्होंने अपने यहाँ एक संघ की स्थापना की जिसको यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कहते हैं।
1: अच्छा।
2: और ये 9 अक्टूबर 1969 को यह अस्तित्व में आया। अच्छा। इसी दिन से इसको प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर मनाया जाता है।
1: जी।
2: ऐसी दशा में हम लोग इसको केवल पत्र भेजने की व्यवस्था तक सीमित नहीं रखते हैं, हम लोग संपूर्ण भावनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। इसमें नवाचार अर्थात तकनीकी का प्रयोग तथा वित्तीय समावेशन और समाज को एक दूसरे से जोड़ने का सबसे सस्ता और अच्छा साधन बनाने की पूरी कोशिश की जाती है और इसमें हम काफी हद तक सफल भी हैं।
1: जी जी। अच्छा, अभी वर्तमान समय में डाक द्वारा लोगों को क्या क्या सेवाएं या सुविधाएं दी जा रही हैं डाक विभाग?
2: वर्तमान डाक विभाग केवल पत्र का परिवहन करने वाला संसाधन नहीं रह गया है। हमारे यहाँ संपूर्ण प्रकार की वित्तीय सेवाएं, बीमा, आधार कार्ड का पंजीयन,
1: अच्छा,
2: इत्यादि सभी कार्यक्रम होते हैं। और हमारे यहाँ तो इस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं कि गांव के गरीब से गरीब व्यक्ति जो लिखना पढ़ना तक नहीं जानते, वो भी वित्तीय समावेशन में भागीदार होकर सरकार द्वारा भेजी गई किसी भी प्रकार की सहायता को सीधे अपने घर पर डाकिया के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें डाकघर तक आने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है।
1: जी देखिए, अभी आपने कहा कि जैसे बहुत से गरीब हो या फिर जैसे पढ़े लिखे भी होते हैं, उनके लिए भी मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग जो आज भी नहीं जानते हैं कि अगर डाकखाने में किसी को

0: कहीं पैसा भेजना हो या फिर जमा करना हो, तो उनको जानकारी नहीं होती कि इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, किन किन प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं लोगों को।
1: डाक विभाग में पैसे भेजने के तमाम संसाधन वर्तमान समय में उपलब्ध हैं, वो तकनीकी के माध्यम से त्वरित सेवा उपलब्ध है
0: जी।
1: और आप इसके लिए या तो खाता खुलवा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे कस्बे के लिए धन को अंतरित करा सकते हैं
0: जी।
1: अगर आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की सुविधा है।
0: अच्छा।
1: और आप एक फॉर्म छोटा सा भरेंगे जिसमें कि हमारे कर्मचारी भी सहयोग करते हैं।
0: अच्छा, अच्छा।
1: भरने के पश्चात तत्काल वो पैसा आप द्वारा बताए गए पते पर डाकिया द्वारा आपके घर पर उसे वितरित कर दिया जाता है।
0: अच्छा अच्छा। देखें आशुतोष जी, बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं होता है कि सावधि खाते का क्या मतलब है, रेकरिंग वाले खाते क्या है, इसके अलावा बच्चों और महिलाओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं।
1: अगर धनराशि बहुत छोटी है
0: जी
1: तो रिकरिंग अर्थात आवर्ती खाता आप खोल सकते हैं जो 100 रुपए महीने से खोला जा सकता है।
0: अच्छा।
1: और इसे 5 साल के बाद परिपक्वता की राशि ले सकते हैं ब्याज सहित। इस पर बहुत अच्छा ब्याज भी है, 6.7% का।
0: अच्छा।
1: और आपके पास अगर धनराशि थोड़ी सी बड़ी है, 5,000-10,000 रुपए तक या इससे ऊपर, तो आप 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए इसे फिक्स कर सकते हैं और नियत अवधि के पश्चात ब्याज सहित आप उसे भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
0: ये रेकरिंग खाते के माध्यम से हो सकता है। और ये सावधि खाते का क्या तात्पर्य होता है?
1: सावधि खाते का तात्पर्य होता है कि इसमें धनराशि आप एक ही बार डाकघर में जमा करेंगे।
0: अच्छा।
1: और रेकरिंग खाते में अंतर ये होता है कि जो धनराशि आप तय करेंगे आरंभ में, वह धनराशि आपको सतत 5 वर्षों तक देनी पड़ेगी।
0: अच्छा।
1: वो इकट्ठा धनराशि आपको ब्याज सहित भुगतान की जाएगी,
0: किस्त के रूप में जमा करना पड़ता होगा। जी। और सावधि खाते में एक ही बार आप पैसा जमा करेंगे।
1: सावधि खाते में एक ही बार जो धनराशि जमा करेंगे उसकी आपको हमारे यहाँ से एक पासबुक मिलेगी जिस पर ब्याज भी अंकित होगा, और वह समय पूरा होने के पश्चात आप डाकघर में आएंगे और आपके खाते में वो ब्याज और धनराशि चली जाएगी।
0: जी जी। महिलाओं के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं?
1: हाँ, महिलाओं के लिए सुरक्षा खाता आरंभ किया है जिस पर 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज दे है। जैसे कोई महिला यदि 2 लाख रुपए जमा करती है तो उसे 32,000 दूसरे साल ब्याज सहित मिलेगा। ये केवल महिलाओं तक सीमित है।
0: उसके लिए दस्तावेजों की भी जरूरत पड़ती होगी जमा करने के लिए?
1: हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का खाता खोलने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की छाया प्रति आवश्यक है जो कि स्वयं प्रमाणित हो।
0: अच्छा अच्छा। और बुजुर्गों के लिए क्या?
1: बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन स्कीम, इसमें 8.2% का ब्याज दे है
0: जी,
1: ये भी करा सकते हैं। इसमें भी वो अपने आवश्यकता अनुसार जो भी धनराशि हो, 1,000 रुपए से लेकर जो भी इससे ऊपर, वो जमा करके और अपना ब्याज वो तिमाही अर्जित कर सकते हैं।
0: मतलब 3 महीने पर वो पैसे
1: 3 महीने के। और ये धनराशि लेने के लिए डाकघर नहीं आना पड़ता।
0: अच्छा।
1: या धनराशि उनके बचत खाते में स्वतः चली जाएगी।
0: अच्छा।
1: और हमारे यहाँ ATMs भी उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से वो कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से निकाल सकते हैं।
0: जी। और पेंशन धारकों के लिए क्या व्यवस्था है सर?
1: पेंशन धारकों के लिए मासिक आय योजना है जिसको MIS बोलते हैं। उसमें आप इकट्ठा 9 लाख से लेकर के 15 लाख रुपए तक जमा कर दें। जैसे आपने 15 लाख रुपए जमा किया तो 9,250 रुपए मासिक आपको 5 वर्षों तक देती रहेगी।
0: अच्छा,
1: ब्याज के रूप में।
0: अच्छा,
1: और
0: अच्छा।
1: पांचवें वर्ष आपको आपकी मूल धन राशि वापिस कर दी
0: जी। बहुत अच्छा शुक्ला जी। देखिए अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में था, वो प्रश्न ये कि जैसे कहीं भी मैंने देखा है जो डाक बॉक्स होता है वो लाल रंग का ही होता है, तो इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या कहेंगे?
1: लेटर बॉक्स का जो रंग है वो लाल इसलिए रखा गया है कि लाल रंग ऐसा रंग है जो कि बहुत दूर से दिखाई पड़ता है और आकर्षित करने की क्षमता रखता है
0: जी।
1: और आपने ये भी देखा होगा, सिग्नल हो चाहे कोई भी चीज हो, लाल ही रखी जाती है। हर देश का वातावरण एक समान नहीं होता है।
0: बिल्कुल।
1: कोहरा हो, धुंध हो, तो लाल रंग दूर से ही दिखाई पड़ता है कि मेरा लेटर बॉक्स दिखाई दे रहा है, हमें इसी में पत्र डालना है। आपके बाइक की गाड़ी के पीछे भी लाल रंग का ही होता है,
0: जो बत्ती जलता है जी। बिल्कुल,
1: दूर से ही दिखे।
0: बिल्कुल। देखें अब तो जो सारी सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो ऑनलाइन हो गई है आशुतोष जी। सारा लेखा जोखा जो है अब कंप्यूटर में है और काम करने के तरीकों में पहले से और अब में बहुत परिवर्तन हुआ है
1: जी।
0: तो आप ये बताएं कि आपके डाक विभाग में ऑनलाइन से संबंधित कामों को करने या फिर करवाने में किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है?
1: ऑनलाइन कार्य करते समय सबसे पहली चीज ये ध्यान में रखना होता है कि हमसे किसी प्रकार की त्रुटि न हो।
0: बिल्कुल।
1: और कभी कभी नेटवर्क का चला जाना या अन्य समस्याएं आती हैं।
0: बिल्कुल।
1: भारी भीड़ अगर इकट्ठा हो गई तो सभी को एक साथ संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसी दशा में हम लोग जो हैं ग्राहकों को बारी बारी से बुला के संतुष्ट करते हैं और उनकी सेवा तत्परता से करते हैं।

0: नींव है वो मजबूत बनी
1: बिल्कुल
0: रहेगी। जी देखिए, आपसे बड़ी ही अच्छी बातचीत हुई इस डाकघर और डाक विभाग के बारे में। इस जानकारी के लिए और कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
2: धन्यवाद।
3: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
4: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
5: बस यही पूछो वाई रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक वाई आपको फ्रॉड से बचाए।
3: हमेशा पूछो WHY, वाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
5: आपका साइबर रक्षक।
6: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात,
7: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
8: हेलो,
6: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
7: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
6: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
7: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
6: ओनली ऑन AIR ओबरा।
9: बहन लगन, हम लोग संदेश सुन ली है जा, उससे पहले जानकारी सुन ली है जा। विश्व डाक दिवस पर विशेष जानकारी जो आशुतोष प्रसाद शुक्ल जो एक पोस्ट मास्टर साहब जो बतावला है, कुल बतासा बहन से बातचीत भइल है, अब इन लोग को धन्यवाद दिहल जा। तो अर्पणा भागवत के आवाज में जगदम्बा माई का एक गीत सुनल जा, भोजपुरी फिल्म से, फिल्म का नाम है बंधन टूटे ना।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सर 5,000 रूपए लगाइए और 8,000 रूपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
2: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
3: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
4: बहन लोगन, देखा हम लोग अभी संदेश सुन लिए जा, और उससे पहले अपन अर्पणा भागवत बहन की आवाज में जगदम्बा माई के गीत सुनी है, जग माई से द मिलवाई ए जगदम्बा माई। तो वहीं लोगन देखा, जब ले माई दुनिया में रहें तब ले अपन मन भर सेवा सत्कार कर लेवे के चाहे, कहें कि सब रिश्ता वापस मिल सकत है लेकिन माई दोबारा वापस ना मिल सकत हैं। तो ए लिए जब तक माता हैं पिता हैं, जब तक उनका साया है सर पे और एक छत के भांति हैं वो, तो अब सेवा करे से आप लोग पीछे ना हटें। और बहन लोगों ने देखा, अब हम आप लोगों से बातचीत कर चाहें कि तन मन को स्वस्थ रखने के लिए योग ध्यान का भूमिका। तो बहन लोगों ने देखा, योग व्यायाम और ध्यान ये सब कैला से देखा तन मन पूरी तरह से स्वस्थ रहेला, और एक तरफ जहाँ तन स्वस्थ होला वहाँ मन प्रफुल्लित होला। और योग सूत्र के अनुसार देखा, योग का 8 अंग है, याम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग। बढ़ के कौन देखा पूरे अच्छा कर्म ना है योग से बढ़ करके, आ कौनो सूक्ष्म गुण ज्ञान नहीं बा, योग ही ज्ञान ज्ञान है और मोक्ष का परम मार्ग भी है योग। आम योग को देखे अर्थ जाना जाए कि शारीरिक स्वास्थ्य, योग के नियमित अभ्यास से शरीर आपका लचीला और बलवान बनेला, निरोगी बनेला, ऐसे मांसपेशी मजबूत बनेला और रक्त संचार सुधरेला, ऐसे मानसिक शांति मिलेला। आज के देखें भागदौड़ भरल जीवन में तनाव चिंता ये देखें आम हो चुका है।

0: तो हम लोग के प्राणायाम और ध्यान मन के शांत एकाग्र और तनाव मुक्त रखे में मदद करेला। तो हम लोग के समय निकाल के करे के चाहिए। अब वही लोग देखा, योग मन शरीर और आत्मा के आपस में जोड़े का एक प्राचीन अभ्यास है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ मिलन या जोड़ना। नियमित रूप से योग करे से शरीर स्वस्थ और लचीला बनेला और जन मन है हमेशा प्रफुल्लित रहेला। तो वही लोगन हम तो कहते हैं कि चलत चलाबाद हाँ एक बातचीत आप लोगों से और कहल चाहब हम कि वही लोगन देखा, अगर अपने स्वास्थ्य के हम लोग के हमेशा के लिए स्वस्थ रखे के है तो हम लोग के कुछ दिनचर्या जो पर सुधारे के चाहिए।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: वही लोगों देखा, स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए देखा कुछ जरूरी नियम बना लें आप लोग। काम धंधा तो हम उनके जिम्मे हमेशा रहे, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा मन बदलाव ले आई हैं तो आप लोग का स्वास्थ्य बेहतर रहे और डॉक्टर बहन या डॉक्टर भैया के चक्कर लगावे से बची हैं। और देखें, सबसे पहले है कि सवेरे पहले के भी देखें हम लोग अम्मा दादी के देख ले हुई हैं घर में कि वो लोग भोरहरिए उठ जात रहें। तो सूर्य भगवान के निकले से पहले आप उठ जाई हैं, उठ जाएं, अपन दरवाज़ा खोलें, भगवान जी को प्रणाम करें, धरती माता को प्रणाम करें और बाहर का हवा थोड़ा सा जाएं, टहलें, घूमें और घूम के टहल के तन ताज़ा ताज़ा हवा अपने शरीर में लेके आवें। तो ऐसे भी जो कहला मन अपन अच्छा रहला, चंगा रहेला। फिर घरे आ करके अगर आपके तन तन को मतलब अपन जो होला बिछा के आसन बैठ के अगर योग करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें और एक बार फिर दैनिक कार्य में लगें, जुटें, तो ऐसे का हो कि आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, मन भी प्रफुल्लित रहे। और यही के साथ आज के बैठकी के समेटे के समय भी हो गए ला। अगले बैठकी में फिर आप लोगों से बात हुई, मुलाकात हुई। आज बस इतना ही, तो चल जाता सब बहन लोगन के राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घरनी। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर। अब से कुछ ही पलों में यानी कि शाम के 6 बजे आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ है हम वेद प्रकाश पाठक। प्रदेश के जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानल जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में आज भयल प्रदेश कैबिनेट के बैठक में ही प्रस्ताव पारित कर गयी। मुख्यमंत्री बैठक के बाद मीडिया से बतियावत कहने कि कैबिनेट की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के तौर पर 25 वर्ष पूरा भइले के मौका पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित कर गयी हो।
1: उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद प्रधानमंत्री जी के आभारी है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की सौगात दी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट एवं भविष्य में देश

0: सबसे बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है। अतः यह मंत्री परिषद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा जेवर रखने का प्रस्ताव भी पास करती है।
1: कैबिनेट बैठक में 18 शहरन में 1725 एसी इलेक्ट्रिक बस चलौले के साथ ही जनहित को कई गो और यो फैसलो लेहल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी परिषद के अनुमोदित जीएसटी सुधारन के नया दौर को स्वागत कैले हमें। प्रधानमंत्री कहले कि गिरफ्तारी प्रावधानन के हटौले अपराध के श्रेणी से बाहर कैले आ प्रक्रिया के सरल बनौले से जुड़ल सिफारिशन को सकारात्मक प्रभाव पड़ी। श्री मोदी कहले कि एकर मुख्य उद्देश्य त्वरित निर्णय अनुपालन लागत में कमी स्वचालित धन वापसी आ भरोसा आधारित प्रशासन हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरा कैले हले हमें। उनकर इजतरा सेवा आ सुशासन के प्रति लगातारे प्रतिबद्धता को मिसाल रही हो। आज के हमने के खास श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा का पहल कैसे नौजवानन में परीक्षा का दबाव कम करके उनके आत्मविश्वास के बढ़ावा देले हो।
2: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और इस तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
3: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
2: गोरखपुर की छात्रा पिंकी ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम ने न सिर्फ उनके मन से परीक्षा का डर निकाला बल्कि काफी कुछ सिखाया भी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चलाए जा रहे परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम से काफी हमें सहायता मिली है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और परीक्षा को लेकर काफी हिचक भी दूर होता है।
2: इस कार्यक्रम के जरिए छात्राओं के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: सर्वोच्च न्यायालय केंद्र राज्य न केंद्र शासित प्रदेशन के निर्देश देले हवे कि वो मोटर दुर्घटना दावा से जुड़ल 4 डिजिटल प्लेटफार्म के 4 हफ्ता के अंदर आपस में जुड़े जैसे फर्जी बीमा दावन पर रोक लगावल जा सके आ मवाजा के निपटारा में तेजी ले आवल जा सके। एगो रिपोर्ट।
5: इन प्लेटफॉर्म में ई विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट EDAR वाहन और सारथी पोर्टल तथा भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो शामिल हैं। इनके जोड़ने से दुर्घटना की रिपोर्ट गाड़ी और बीमा के रिकॉर्ड और पहले के दावों के बारे में जानकारी को आसानी से साझा किया जा सकेगा। इसमें हिट एंड रन के मामले और प्रधानमंत्री राहत योजना भी शामिल होगी। न्यायालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे बिना देरी किए EDAR पोर्टल पर जरूरी डेटा अपलोड करें क्योंकि अभी तक कुछ ही राज्यों ने ऐसा करना शुरू किया है। न्यायाधीश एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने कुछ बीमा कंपनियों के प्रमुखों को न्यायालय के पिछले निर्देशों का पालन न करने के लिए अवमानना का नोटिस भी जारी किया।
1: मौसम विभाग आज बिहने प्रदेश के पूर्वी जिलन में कहीं कहीं बरखा चाहे गरज चमक के साथ बौछार पड़ने का संभावना जतौले हो। विभाग एहि इलाकन में 11 अक्टूबर से मौसम शुष्क रहले का संकेत देले बा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA UGC नेट दिसंबर 2026 सत्र बदे पंजीकरण शुरू कर देले हो। योग्य उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF सहायक प्रोफेसरशिप चाहे PhD बदे वेबसाइट UGCnet.NTA.NIC.in के जरिया से ऑनलाइन आवेदन कर सके। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।
6: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर।

शाम के 6:05 हो रहे हैं। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए आपको जानकारी दे दी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे करंट अफेयर्स। शाम 6:10 पर

0: कार्यक्रम होगा ग्राम जगत लोकगीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:05 पर। फिल्म संगीत ये कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे रात्रि 8:15 पर और शाम 6:50 पर। रात्रि 8 बजे और 8:30 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत और रात्रि 10 बजे आपका पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का म्यूजिक गैलरी हम लेकर हाजिर होंगे। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम होगा रात्रि 9:15 पर और सबरस ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:31 पर। श्रोताओं एक बार पुनः बता दें, करंट अफेयर्स आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। श्रोताओं ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार मंजू देवी पत्नी राधेश्याम निवासी ग्राम जौराही थाना बबनी जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश जो पिछले कुछ दिनों से लापता है हुलिया इस प्रकार है। उम्र 30 वर्ष, लंबाई 5 फीट 3 इंच, हुलिया सांवला रंग, गोल चेहरा, इखरा बदन, पहनावा नीले रंग की सलवार सूट। श्रोताओं एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार अंजलि पुत्री नाबालिग निवासी ग्राम कटौली थाना दुद्धी जनपद सोनभद्र उत्तर प्रदेश ये दिनांक 13/9/2026 से लापता है। हुलिया इस प्रकार है। उम्र 22 वर्ष, लंबाई 5 फीट लगभग, हुलिया सांवला रंग, गोल चेहरा, इखरा जिस्म, पहनावा लाल सूट सलवार और चप्पल सैंडल में। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। FM 102.7 पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: श्रोताओं जल ही जीवन का आधार है और इसका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। घर में टपकते नलों को तुरंत ठीक कराना, जरूरत के अनुसार ही पानी का उपयोग करना, वर्षा जल संचयन करना, पेड़ पौधे लगाना ऐसे सरल कदम हैं जिन्हें हर व्यक्ति अपना सकते हैं। यदि हर परिवार जल बचाने का संकल्प ले तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध रहेगा। आज बचाया गया हर बूंद पानी कल के सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी बनेगा।

आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है एफएम 102.7 पर। शाम के 6:10 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब
1: सब पंचन के
0: राम
1: राम।
0: अचलू भैया राम राम।
1: आपो के राम राम।
0: देखे बिल्कुल
1: इस समय कैसन चलत बा मौसम का हाल चाल?
0: भाई देखे अपने पंचायती में हम लोगन पहले झूठ गए पहले बा सही बात बा कि मौसम के हिसाब से तापन हाल चाल वही हिसाब से दिखा।
1: बिल्कुल बिल्कुल देखा दैनिक कार्य और व्यवहार खातिर जन बा जागरूकता कितना जरूरी होला। इस समय मौसम परिवर्तन के दौर चल रहा बा जौना के असर देखा अपने जनजीवन पर साफ।

0: देखे के मिल रहा बा। अब कुछ
1: बिल्कुल
0: समय पहले देखा लगातार बरखा हो रहा है होत रहा है और उसे जन बाद जग जीवन एकदम बेहाल रहा।
1: बिल्कुल बात सही कहला हाशलू भैया। देखा बरखा थमला के बाद ना कई जगह जोन बाकी कूड़ा कचरा के अंबार लाग जाला और नाली में गंदा पानी जमा हो जाला। ये गंदगी के जल जमाव से जोन बाकी देखा मच्छर मक्खी का प्रकोप जोन बाकी
0: बढ़
1: बढ़
0: गया।
1: जाला, आशंका ज्यादा रहेला। और देखिए ऐसा परिस्थिति में डेंगू हा, मलेरिया हा, चाहे डायरिया हा, और भी संचारी रोग जैसन होला वो देखा फैले के आशंका बढ़ जाला।
0: बिल्कुल
1: ऐसे हमनी सभी के देखा अपन घर और आसपास के चाहे जोन भी जगह बा सार्वजनिक जगह बा के साफ सुथरा रखे के प्रयास करे के चाहिए बराबर।
0: बिल्कुल देखा बता सब हैं कहे के मतलब कि देखा अभी नवरात्र आए वाला बा, साफ
1: भैया
0: सफाई तो
1: आवे वाला
0: हमेशा
1: का एक दिन बादे बस काल भर
0: बिल्कुल
1: बात
0: बिल्कुल
1: बा।
0: तो इसने भी देखा साफ सफाई का तो और ध्यान रखे के चाहिए,
1: बिल्कुल
0: खासतौर से कूड़ा कचरा के एहर और फेंके के बजाय निर्धारित जगह पे डाले के चाहिए।
1: बिल्कुल
0: घर
1: बिल्कुल
0: के आसपास पानी जमा होके मत नहीं, और नाली का नियमित तौर पे सफाई करें।
1: एकदम
0: और देखा बुखार हो, उल्टी दस्त हो या कोनो भी और बीमारी के लक्षण अगर दिखाई दे तो तुरंत जनवा अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जा करके अपन हालचाल बतावे के चाहिए डॉक्टर साहब के।
1: बिल्कुल सही बात कहा हाशलू भैया।
0: और देखा ये मौसम के बदलाव में साफ सफाई और सावधानी अगर अपनावल जाए तो अपने परिवार भी जनवा संचारी रोग से सुरक्षित रह सकेगा।
1: बिल्कुल, और दादी नानी का नुस्खा भी देखा कहीं ना कहीं अपन बढ़िया काम करेला, जो चाहे काढ़ा होके
0: बिल्कुल
1: या फिर अजवाइन के साथ होके, लहसुन तेल का मालिश होके, ये फायदा ही फायदा करेला। और देखिए अंशलू भैया, स्वच्छता अपनौला से स्वस्थ जीवन का देखा एक पहला आधार मानल जाला।
0: बिल्कुल
1: और ऐसे हमनी सभी के अपन घर आसपास के वातावरण के साफ रखे के चाहिए। और बरसात देखा बिन मौसम बरखा भी जब हो रहा बा तो देखे बरसात के बाद जो जमा हो जाला कूड़ा कचरा चाहे गंदा पानी तो कई तरह के बीमारी के कारण तो बनबे करेला। साथ ही साथ घर के आसपास जो पानी जमा होला ओके हम लोगों के नहीं होके देवे के चाहिए,
0: कहे
1: के में बिल्कुल मच्छर पैदा होला।
0: बिल्कुल,
1: और जोन भी देखा गर्मी के वजह से हम लोग टंकी कूलर भर के खूब हवा खात रही जा, वो देखा हम लोगों के साफ सफाई चाहे गमला में पानी होता, टूटल फूटल बर्तन होला, प्लास्टिक का डब्बा रहला तो बरसात के पानियों में जमा हो जाला, तो ओके ध्यान से सफाई करके ओके कहीं रख देवे के चाहिए और कबाड़ वाला के दे देवे के चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और घर का कचरा डस्टबिन में ही डाले के चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: कूड़ादान होला तो
1: उसमें
0: डाले के चाहिए और ओकरा एक निर्धारित जगह पे ही फेंके के चाहिए। खाना बनावे या खाए से पहले जनबा साबुन से अपन हाथ जरूर धोए, कहे से कि हमेशा साफ और सुरक्षित पानी का इस्तेमाल करे से जनबा अपन जनबा स्वास्थ्य सही रहेगा।
1: बिल्कुल,
0: और अगर मान ला कि आजकल तो आरओ का जमाना चल गई बा, लेकिन अगर अपने अपने गांव देहात में आरओ का उतना नहीं बा तो उम्मीद जनबा ओके पानी के उबाल करके जनबा ओके ठंडा करके तब पियल जाए,
1: या फिर भैया हमें क्लोरीन का गोली डाल देवल जाए रात भर पड़ा रहे तब वो पानी
0: तब वो साफ हो जाला। बिल्कुल सही
1: फिटकरी होला भैया,
0: हाँ ओके चला दे तो थोड़ी देर बाद गंदगी बैठ जाए नीचे। और फल और सब्जी के साफ पानी से धो करके तब जब उन खाए बासी और दूषित भोजन के खाए से बचे के चाहिए।
1: एकदम भैया एकदम सही बात कर रहा, देखा खाना पानी की तो बात है ये बा, और घर के साथ ही साथ गली नाली और जोन भी सार्वजनिक जगह बाओ के सफाई में भी अपन सहयोग देवे के चाहिए। और याद रखें हम लोगों की स्वच्छ घर स्वच्छ गली या स्वच्छ गांव से ही स्वच्छ समाज का निर्माण हो सकेला। और संचारी रोग से बचाव खाली सरकार भा अपने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि देखा हमें हर नागरिक के भागीदारी जरूरी बा। अपन गांव मोहल्ला में साफ सफाई का अभियान जो चल रहा बा तो में अपन सहयोग देबल बहुत जरूरी बा, और देखा स्वच्छता के महत्व बतावल बहुत जरूरी बा।
0: बिल्कुल, कहीं कूड़ा कचरा का ढेर हो या जल जमाव देखे तो संबंधित विभाग की जानकारी दिहल जाए, मच्छर से बचे खातिर मच्छरदानी लगावे और जरूरत के अनुसार पूरे बांह वाला कपड़ा जरूर पहने। खांसी देखा मौसम बदल तो बदल इसमें तो खांसी हो या जुखाम हो इसमें आवे का ज्यादा आशंका रहेला, तो अगर खांसी या छींक आवे तो मुंह पे नाक मुंह के पास या नाक के पास
1: रुमाल
0: रुमाल या
1: अपन
0: गमछा रख लें या कोहनी से ढक करके जनबा अपने हाथ के सफाई पे ध्यान दें और पिए के पानी का स्रोत के गंदगी से बचा के और शौचालय का इस्तेमाल जरूर करें
1: शौच खातिर के। बिल्कुल बात सही कहा आशलू भैया। और देखे जोन बाना की जैसे छींक होला चाहे खांसी आवला तो लोग ऐसे ही मुंह खुला करके खांसे ना, तो उसे कहला कि छींक के माध्यम से भी छोट छोट जो कीटाणु जीवाणु रहलन वो देखा ये संक्रमण फैलावे के कारण बनेला। तो बच्चा बुजुर्ग चाहे कमजोर लोगन के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देवल बहुत जरूरी बा। एक वजह से अगर देखा कोनो व्यक्ति के लगातार बुखार चाहे दस्त या फिर और भी गंभीर लक्षण दिखाई दे रहा बा तो बिना देरी कैले भैया स्वास्थ्य केंद्र पर जांच करावल जाए, बीमारी के लक्षण छिपावे के बजाय समय पर इलाज करावल देखा बहुत जरूरी बा। कहल जाला ना एक तो पहले की इलाज से बेहतर बचाव बा।

0: बिल्कुल
1: लेकिन अगर लक्षण देख ले ली तो हम लोगों के समय पे इलाज करावल बहुत जरूरी बा। और हमन के मिल के एक काम और जरूर करे करे के चाहिए अचलू भैया, कि
0: का
1: स्वच्छता अपनाए संचारी रोग से बची।
0: बिल्कुल सही बात कहलिन बता सबहिन। और देखा और अपने जनपद के स्वस्थ सुंदर और रोग मुक्त बनावे खातिर जन बा अपन सहयोग जरूर प्रदान करे के चाहिए।
1: बिल्कुल
0: और देखा बता सबहिन हमन का बात बत कही तो होत रही, लेकिन आज के पंचायती में होम्यो चिकित्सा अधिकारी महोदय हुआ डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता भैया वो जुटल बाड़न। और देखा संचारी रोग के कारण और बचाव के उपाय खातिर का का जरूरी हो सकेला ये विषय पर मुनई भैया से बात बत कही करत हुआ। तो हम तो कहते कि एगो संदेश बा, उस संदेश सुनला के बाद जौन बा हमहन के जानकारी या संदेश चला हमहन बाद में सुनल जाई, पहले जानकारी सुन
1: भैया
0: लें।
1: देखा जानकारी भी हम लोगन सुने के चाहिए, लेकिन देखा एक चीज कहा ना कि जो हम लोगन के जानकारी बाटे वो देखा बहुत महत्वपूर्ण स्थान और पंचायती में और काका बा अपने पंच भैया लोगन के यो जोगा दिल जाए, ताकि देखा लोग सोचे ना कि एक एक ठे बतावल जाला और भाई हो सके कौन जानकारी कौन मन फिर उनके खातिर के फायदेमंद होला।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: देखा अभी तक जो जानकारी के बात कर लो कि सुनल जी, ओकरे अलावा भी और जानकारी बा कि लवणीय मृदा में सब्जी उत्पादन संभव, जो उनके अंशुमान मौर्य जो उनकी शोध छात्र से आपके बातचीत बा
0: बिल्कुल। और देखा
1: एक
0: साथ
1: भी
0: साथ
1: सुनल
0: जन
1: जाए।
0: बा मधुपुर मंडी से जन बा बाजार भाव आयल बा, पुनवासी भैया अपन हमेशा की तरह आज भी सहयोग प्रदान कैले हुए।
1: बिल्कुल, और देखे अपने पंचायती में जो है ना मनफेर का भी एगो क्रम होला, और मनफेर के खातिर आज अपने पंचायती के एकदम बिल्कुल अपने मनफेर से सराबोर करी हैं डॉक्टर मनु यादव, उनके संगतिया लोगन का गावल डोमकच सुनल जाए। भैया देखा डोमकच हो के चाहे गरमा जोन होला ना, वो आदिवासी लोगन के एक बड़ा महत्वपूर्ण विधा होला। और देखे जो भी
0: खास तौर से
1: आदि
0: अपन जो अंचल सोनभद्र
1: अंचल
0: बा
1: बा जंगल
0: वो
1: पहाड़
0: जन
1: के
0: बा
1: इलाका
0: जन
1: हा।
0: जनजाति जन मानल जाला, तो
1: हाँ
0: ऐसे में देखा जन उनकर विधा बा मनफेर का जन विधा बा उनके अपने समाज से अपने जमीन से जुड़ेला।
1: बिल्कुल, जंगल पहाड़ से अपन प्रकृति से जुड़ल रहल हैं, और प्रकृति में ही वो अपन देखा गीत संगीत के रचना करके अपने मानर के थाप पे अपन गीत गौनाई करना, तो एक सुनल जाये।
0: और साथ ही साथ
1: लेकिन
0: देखा आज का जो मौसम के
1: मौसम
0: बाद
1: बा
0: बा तो मौसम में जोन बा न्यूनतम तापमान आज के जोन बा वो 23 डिग्री सेल्सियस बा और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस बा,
1: हाँ
0: आर्द्रता जोन बा 60% बा। और बाकी का कुछ जानकारी जोन तकनीकी जानकारी
1: विशेषज्ञ
0: बा
1: से जानल
0: वो
1: जाये।
0: जोन बा वो अधिकारी से जानल जाये मौसम वैज्ञानिक से।
1: बिल्कुल, लेकिन जानकारी के जैसन की बात भैला तो संचारी रोग का कारण और बचाव के का उपाय बा डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता होम्यो चिकित्सा अधिकारी से मुनि भैया के बातचीत बा, ओके सुनल जाये। बाकी उससे पहले कुछ संदेश बा
0: वो जरूर
1: ओके
0: सुन ले।
1: सुनल जाये।
2: सर 5,000 रुपए लगाइए और 8,000 रुपए प्रॉफिट पाइए, ये देखिए प्रूफ का स्क्रीनशॉट।
3: वाओ, स्क्रीनशॉट का प्रॉफिट असली है या सिर्फ स्क्रीन पे? व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स में फेक प्रॉफिट्स और स्मॉल रिवॉर्ड से ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। इसलिए
4: हमेशा पूछो WHY Why कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।
5: सत्यनिष्ठा अपनाए, भ्रष्टाचार मिटाए, मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। सत्यनिष्ठा से समृद्धि NTPC रिहंद द्वारा आयोजित त्रैमासिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनहित में प्रसारित।
6: पंच भैया लोग देखें ये समय जैसन कि हम लोग जानत है कि संचारी रोग जागरूकता अभियान चलल है, इस संचारी रोग का है एकरे प्रति कैसे अपने पंच भैया लोगन के ग्रामीण भैया लोगन के जागरूक कैल जा सकला एकरे बारे में आज हम लोगन जानब। आज हमारे यहाँ मुलाकात डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता साहब से हो गई, आपसे ही जानल जाए संचारी रोग के बारे में और एकरे प्रति जागरूकता कैसे अपने पंच भाई लोगन में हो सकल है, एकर चिकित्सा का हो सकल है। डॉक्टर साहब नमस्कार।
7: नमस्कार पंच भाइयों।
6: डॉक्टर साहब ये बताओ कि ये जवान संचारी रोग बा ये संचारी रोग है का? पहले
7: संचारी रोग का मतलब उसके सब नाम में ही निहित है
6: जी।
7: जैसे एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जो बीमारियां तेजी से फैलती हैं उन्हें संचारी रोग कहा जाता है।
6: अच्छा,
7: अब संचारी रोग के कई कारण हैं, उसमें प्रोटोजोआ भी हो सकता है, वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं और फंगस भी हो सकते हैं।
6: अच्छा,
7: उसके कई कारण हैं और कई वाहक भी हैं। वाहक में जैसे मच्छर जनित रोग हैं, वो भी संचारी रोग के सबसे मुख्य कैटेगरी, तो मच्छर जनित रोगों पर उस पर ही हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं
6: जी जी।
7: उसके बाद जो है हवा से भी फैलता है, दूषित जल के पीने से भी संचारी रोग फैलते हैं।
6: अच्छा डॉक्टर साहब, ये अक्सर मौसम के अनुसार बरसात मौसम में संचारी रोग फैले का अधिक माने उम्मीद रहा है?
7: जी बरसात जैसे अपने आप

0: अपने एक सुहावना मन लाता है, वैसे ही अपने साथ कुछ बीमारियां भी लेके आता है। बरसात के समय में होता क्या कि जगह जगह पानी का जल जमाव होता है
1: जी।
0: उसके कारण मच्छर उत्पन्न होते हैं और दूषित जल एक जगह से दूसरे जगह फैलता भी है
1: जी जी।
0: बारिश की वजह से जैसे लोग खुले में अगर शौच कर रहे हैं तो जल जब पानी बरसेगा तो वो शौच बह के एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, वो बीमारी को फैलाएगा। इसलिए बरसात में इस तरह की बीमारियां ज्यादा फैलती हैं।
2: अच्छा, सरकार भी अपन चाहता था कि संचारी रोग के प्रति जन जागरूकता फैले, तो ये जन जागरूकता कैसे फैल सकल है?
0: देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक संचारी रोग के रोकथाम के लिए एक विशेष अभियान चलाया हुआ है
1: जी।
0: उसमें लोगों को जाग जाके जागरूक करना होता है। तो उसमें करना क्या है, बिना जन सहभागिता के हम लोग क्या है ट्रीटमेंट कर सकते हैं
1: जी जी।
0: लेकिन अगर हम रोग से बच जाएं वो सबसे बढ़िया है, हम उसके कष्ट से बच जाएंगे। रोग होने पर तो इलाज है, वो अलग बात है, लेकिन हम रोग होने से पहले ही बचाव कर लें, उसके लिए क्या हमें जन जन को जागना होगा, हर व्यक्ति को अपने जागरूक रहना होगा। जागरूक करना क्या है, उसमें बहुत कुछ नहीं करना है, बस अपने आसपास साफ सफाई रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें
1: जी।
0: जैसे विभिन्न फटे हुए टायर, कूलरों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं गर्मी के दिनों में
1: जी।
0: हफ्ते या 15 दिन में पूरा पानी निकाल के उसको कूलर को सुखाएं फिर चालू करें
1: जी।
0: जहां पानी निकालने की संभावना नहीं है वहां तेल, जो तेल है उसको थोड़ा सा डाल दें, वो एक फैल के एक लेयर बना लेती है और ऑक्सीजन से संपर्क पानी का टूट जाएगा और उसके अंदर जो भी मच्छर के लार्वा होंगे वो मर जाएंगे।
1: अच्छा,
0: तो इस तरह से जन जागरूकता ही सबसे मुख्य है। अगर जनता जागरूक रहेगी तो उसको बीमारी होगी ही नहीं।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कहते हैं डॉक्टर साहब, अगर जन जागरूकता रही तो निश्चित बात की बीमारी न हो। लेकिन बरसात के मौसम में बीमारी बहुत अधिक होला, तो वो बीमारी से कैसे अपन पंच भाई लोग अपने आप के बचा सका ना, बचाव बदे उपाय का कर सकें?
0: उपाय भी बहुत साधारण है। जैसे हमारा सोनभद्र घने वनों का क्षेत्र है
1: जी,
0: तो यहाँ मच्छरों से समस्या ज्यादा होती है, तो मच्छरदानी का प्रयोग करें
1: जी।
0: अगर आप मच्छर प्रभावित क्षेत्र में जा रहे हैं तो फुल पैंट या फुल बांह का शर्ट पहने। उसके बाद जो है ये देखें कि आसपास कहीं पानी इकट्ठा ना हो, जैसे गमलों में, कूलर में, टूटे फूटे डब्बों में, गाड़ियों के जो फटे टायर रहते हैं उसमें भी पानी इकट्ठा होता है
1: जी,
0: वो ना इकट्ठा हो। इस तरह से चीजों से हमें ये बचाव के बहुत अच्छे साधन है। दूषित जल ना पिए, पानी अगर आपके यहाँ प्रदूषित है तो एक बहुत साधारण सा उपाय होता है, एक रस्सी में फिटकरी को बांध के उसमें 2-3 बार घुमा दें, पानी जो है स्वच्छ हो जाएगा। फिर उसको खौला लें, बैक्टीरिया भी जो उसके अंदर रहेंगे मर जाएंगे। तो इस तरह स्वच्छ पानी का उपयोग करें, भोजन भी संतुलित लें
1: जी जी।
0: संतुलित भोजन भी स्वस्थ रहने में बहुत ही कारगर होता है। जैसे अगर कोई बच्चा कुपोषित है
1: जी,
0: तो वो रोग से लड़ नहीं पाएगा, उसको बीमारी तुरंत उसके ऊपर हावी हो जाएगी। इसलिए हमें संतुलित आहार लेना है, पोषण युक्त भोजन करना है। सरकार इसके लिए भी प्रतिबद्ध है, स्कूलों में जो है मिड डे मील की व्यवस्था, गर्भवती महिलाओं के लिए जो है पोषण युक्त भोजन की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था में सरकार लगी हुई है। बस हमको उसमें सहयोग करना है और सरकार के साथ कदम मिला के चलना है।
2: बिल्कुल सही बात कहते हैं डॉक्टर साहब। एक चीज और अपने अंचल में देखल जा रहा कि यहाँ अभी भी जौन पेचिस वगैरह बा या डायरिया बा, एकर शिकायत बहुत अधिक है, तो डायरिया से बचे बदे अपन जौन पंच भैया लोग हम का उपाय करें व्यवहारिक और जो चिकित्सकीय व्यवस्था बा ओकरे अनुसार?
0: देखिए पंच भाइयों, डायरिया जैसी बीमारी दूषित जल पीने से होता है
1: जी।
0: तो स्वच्छ पानी का सेवन करें। हमारे जो है सोनभद्र क्षेत्र में बहुत ही तेजी से जो है आरओ जल की सप्लाई की व्यवस्था की जा रही है, जल्द ही वो चालू हो जाएगी और हर घर हर गांव में जो है स्वच्छ पीने के लिए जल उपलब्ध होगा जल्द ही। तो पानी स्वच्छ पिए, भोजन से पहले हाथ अच्छे से साबुन से धोएं, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है ये
1: जी।
0: इसीलिए स्कूलों में बच्चों को खाना खाने के पहले आदत डलवाई जाती है कि मिड डे मील के पहले हाथ कैसे धोया जाए। टीचर लोग अध्यापक लोग बताते हैं कि कैसे कैसे हाथों को उंगलियों के बीच में रगड़ रगड़ के अच्छे से साबुन से हाथ धोना है, तभी भोजन करना है
1: जी।
0: इससे भी हम बच सकते हैं डायरिया जैसी बीमारियों से। उसके बाद जो है अगर डायरिया हो रहा है तो हम अपने आप को डिहाइड्रेट होने से रोकें, यानी पानी इलेक्ट्रोल या फिर ORS का घोल नियमित रूप से लेते रहें और अपने नजदीकी जो भी चिकित्सकीय केंद्र है, वहां जाके सलाह लें।
2: जी जी बिल्कुल सही बात डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब,

0: खान पान संतुलित कैसे रखें अपन पंचभैया लोग, जैसे खास तौर से कहीं पंच भाई लोग बाजार गई ना, तो जौन कटल पिटल चीज बा, फल फूल बा, ओके ले ली हैं, या फिर जौन खुला चीज बा बाजार में बिकत आए समय ओकर सेवन करे लगे हैं, तो ऐसे कैसे बचें?
1: इससे बचना बहुत जरूरी है।
0: जी
1: जो खुले हुए और कटे हुए फल होते हैं वो भी एक बीमारी का बहुत ही अच्छा स्रोत है, क्योंकि खुले हुए फलों पे मक्खियां बैठती हैं, वो गंदे
0: जी
1: स्थानों पे बैठ के आएंगी और लार्वा और अंडे दे देंगी कटे हुए फल पे। फिर हम जब आप उसको सेवन करेंगे, उसका लार्वा या अंडा हमारे शरीर में जाएगा और वो अपने लाइफ साइकिल को पूरा करते हुए
0: जी
1: बैक्टीरिया या वायरस को हमारे शरीर में उत्पन्न करेगा और हम रोग से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए बाहर बाजार में बिकने वाले, खास तौर से बारिश के दिनों में, खुले हुए खाद्य पदार्थ, कटे हुए फल आदि का सेवन करने से बचना चाहिए।
0: बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, एक साथ साथ जौन अपन पंच भैया लोग हुआ, वो जैसे कभी कभी ठंडा अधिक भोजन, जैसे आज शाम को भोजन कल सवेरे कर लेना, गांव में अक्सर ही देखल जाला, तो ऐसे भी वो बचें। अच्छा, जैसे डायरिया बा या पेचिस बा या मलेरिया बुखार बा, तो उनमें जौन होम्योपैथी चिकित्सा बा डॉक्टर साहब, तो उनमें कौन कौन दवा ऐसन बाई जौन अपने पंच भैया लोगन बदे वो कारगर हो सकें?
1: बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। जैसे मच्छर जनित रोगों को लें तो उसमें मलेरिया, डेंगू और चिकुनगुनिया मुख्य रूप से आता है।
0: जी
1: उसके बचाव और रोग होने पर इलाज दोनों ही बहुत ही कारगर रूप से होम्योपैथी में उपलब्ध है, तो हम एक एक
0: जी
1: करके चर्चा कर लेंगे। जैसे चिकुनगुनिया, आज
0: जी
1: से 15 साल पहले बहुत तेजी से चिकुनगुनिया फैला हुआ था,
0: जी
1: तो उस समय हम लोगों ने एक दवा आती थी लीडम पाल 200,
0: जी
1: अगर उसका एक डोज 15 दिन में सेवन किया जाए तो चिकनगुनिया होने की संभावनाएं घट जाती हैं। उसी तरह से अगर मलेरिया से बचाव करना है तो चाइना 200 15 दिन में एक बार अगर एक डोज दिया जाए तो चाइना तो मलेरिया होने की संभावनाएं घट जाती हैं। वैसे
0: अच्छा
1: ही एक बीमारी बचा आपका डेंगू फीवर, जिसको डेंगू बुखार बोलते हैं, वायरस से
0: जी
1: ये भी होता है और इसको काटने वाला मच्छर दिन का मच्छर होता है।
0: अच्छा
1: हाँ, तो दिन में भी हमें बचाव रखना है, तो उसके लिए यूपेटोरियम पर्फ करके एक दवाई आती है, उसको भी 200 पोटेंसी में अगर हम 15 दिन में एक बार सेवन करें तो डेंगू मच्छर से फैलने वाला डेंगू मलेरिया, डेंगू बुखार नाम का रोग होने की संभावना कम हो जाती है। और हो
0: जी
1: जाने पर इन्हीं दवाइयों के सेवन करने से ठीक भी हो सकता है। कुछ महत्वपूर्ण दवाइयां हैं जिसको हम लोग मलेरिया और डेंगू जैसे फीवर में लेते हैं, जैसे रस्टॉक्स 30, यूपेटोरियम 30, बेलाडोना 30, ये सब दवाइयां जो है बहुत ही अच्छी हैं, बहुत कारगर हैं। लेकिन हम पंच भाइयों को सलाह देंगे कि अगर उनको ये रोग हो जाता है तो अपने पास के उपस्थित राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में विजिट करें और वहां जाके चिकित्सीय सलाह के साथ दवाइयों का सेवन करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा, डायरिया वगैरह होता तो?
1: डायरिया डायरिया भी बहुत कॉमन है बरसात के दिनों में, उस समय अगर होता है तो होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छी दवा है आर्सेनिक एल्बम 30,
0: जी
1: अगर इसका सेवन किया जाए डायरिया होने पर या पहले से ही, तो भी डायरिया होने की संभावना कम हो जाती है। हाँ, और उसमें करना क्या है हमें कि अपने आप को हाइड्रेट भी रखना है। अगर
0: अच्छा
1: आपको डायरिया, ऐसा लग रहा है कि आपको डायरिया हो रहा है और आपको अभी समय लग सकता है डॉक्टर की सलाह लेने में, तो ORS का घोल पीना शुरू कर दें।
0: जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी आज अपने पंच भाई लोगन के मिलल, चलत चलावत ओहन लोगन से का कहल चाहिए, उनके का सहेजल चाहिए?
1: पंच भाइयों को बस यही हम कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, जल का जमाव न होने दें, गंदा जल और दूषित जल का जमाव न होने दें, भोजन से पहले हाथ धोकर खाएं, खुले में शौच ना करें। ये 4 सूत्रों का अगर आप जीवन में पालन करेंगे तो आप जो है संचारी रोगों से काफी हद तक बच के रहेंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपसे मुलाकात भइल और इतना बढ़िया जानकारी के बात भइल, ऐसे जवन अपन पंच भाई लोग हम वो जरूर लाभ उठे हैं, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
3: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
4: बस यही पूछो वाई रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए, एक वाई आपको फ्रॉड से बचाए।
2: हमेशा पूछो WHY, वाई कहता है कैप्टन वाई ऑफ SBI,
4: आपका साइबर रक्षक।
5: अश्लु भैया, देखें अभी हम लोगन संदेश सुन ली है, और उससे पहले जो अपने मुनई भैया बातचीत कर लेना, डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जो उनकी होम्यो चिकित्सा अधिकारी हवन, उनसे जानकारी मिलत रहा संचारी रोग के कारण और बचाव के का उपाय करल जाए विषय पर।
6: बिल्कुल
5: निश्चित तौर पे देखा, डॉक्टरी सलाह तो अपने जगह पे महत्वपूर्ण स्थान रखबे करेला, साथ ही जो हम लोगन शुरुआती में साफ सफाई और अपन खान पान नियमित रखे के बात कह लिए जा, वो देखा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जरूरी।
6: बिल्कुल बिल्कुल सही कहते।

0: बता सकें ना देखा, जैसे अपने स्वास्थ्य के ख्याल रखे खातिर जन बा संचारी रोग से बचे के जरूरत बा, वैसे ही अपने किसान भाई लोग के भी अपन फसल के रोग और कीट से बचावल बहुत जरूरी बा। खेत में समय समय पर फसल के निरीक्षण करे से रोग और कीट का शुरुआती लक्षण का पता चल जाला, जिससे किसान भैया लोग के चाहे कि फसल के जरूरत के हिसाब से संतुलित खाद और उर्वरक के प्रयोग करें।
1: बिल्कुल सही बात कहला हर्षलू भैया। देखा जौन भी जैविक अपन कीटनाशक होला नीम आधारित बा, चाहे जैविक उपाय हम लोगन अपनाईला, उसे देखा हानिकारक कीट के प्रकोप कम कैल जा सकेला। और जरूरत पड़ला पर ना कृषि विशेषज्ञ भैया लोगन के और जौन भी होलन उनकर सलाह चाहे उनकर मतलब बात के ध्यान से सुनी ले जा, तो उनके सलाह से उचित कीटनाशक आ फफूंद नाशक के प्रयोग अगर हम लोगन करी तो दवाई के मात्रा में भी देखा हमेशा निर्धारित निर्देश के अनुसार भी होके के चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और एक ही दवाई बार बार प्रयोग करे से ना देखा कीट में जो प्रतिरोधक क्षमता होला ना विकसित होके लागेला,
0: बिल्कुल
1: ओकर असर कम हो जाला।
0: बिल्कुल।
1: तो कीटनाशक जो कीट है उन्हें बढ़े लागेलन। और खेत में देखा खर पतवार के नियंत्रण आ चाहे फसल चक्र अपनौला से देखा हम लोगन अगर ये काम करी तो फायदा होला।
0: होला। और देखा दवाई के छिड़काव करत के समय दस्ताना या मास्क या गमछा उमछा हो या कुछ भी सुरक्षा के साधन हो ओकर इस्तेमाल जरूर करे के चाहिए। ये तरीका से किसान भैया लोग देखा अपन फसल के सुरक्षित रख सकेलन और लागत घटा के अच्छा फसल उपज प्राप्त कर सकेलन। और किसान भाई लोग देखा आज हमनी के बात करब घुलनशील उर्वरक के जो उनकी खेती के समय और मेहनत दोनों बचावेला।
1: जरूर भैया, देखे जौन भी घुलनशील उर्वरक होला ना ये देखा पानी में आसानी से घुल जाला और पौधा के जरूरी पोषक तत्व तो उपलब्ध करावला।
0: बिल्कुल।
1: और एकरे सिंचाई के पानी के साथ ड्रिप सिस्टम से पौधा के जड़ तक पहुंचावल जा सकेला और इस तरीका से पौधा के जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व तो भी मिलेला और खाद के उपयोग जो दक्षता होला ना वो देखा बढ़ जाला।
0: बिल्कुल।
1: और साथ ही साथ जो बाकी पारंपरिक तरीका है खाद डाले में जो भी अधिक समय और मेहनत लागेला ओकरा में देखा कमी आवला।
0: और देखा घुलनशील उर्वरक के प्रयोग सब्जी फल या कई गो अन्य फसल में कइल जा सकेला और हालांकि हर फसल खातिर जनबा एकर मात्रा और समय अलग अलग हो सकेला।
1: बिल्कुल भैया, देखा बातचीत तो होत रही और आगे भी हम लोग जानकारी शामिल कर अपने पंचायती में, तो देखे जो आपके बातचीत भैल बा अंशुमान मौर्य की शोध छात्र हवन लौड़ी अमृदा में सब्जी उत्पादन संभव कैसे बा, ए बारे में आपके जो बातचीत बा हम तो कहते कि चला आपकी जानकारी अपने तक ही ना अपने पंच भैया बहन लोगन के भी सुनावे और लोग गुने।
0: बिल्कुल। किसान भाइयों नमस्कार। देखिए हम लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं और खेती किसानी से जुड़ने में कई तरीके की समस्याएं आती हैं। देखा जाता है कि सामान्य फसलों की उत्पादकता लवणता के कारण प्रभावित होती है, वहीं वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से ऐसी भूमि को धीरे धीरे अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। आज के समय में जनपद सोनभद्र के किसानों के लिए लवणीय मिट्टी में सब्जी फसलों की खेती एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक कृषि अवसर बन सकती है। तो आज लवणीय मिट्टी में सब्जी फसलों की खेती में क्या संभावनाएं हो सकती हैं? कृषि शोध छात्र जो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या से हैं अंशुमान मौर्य जी आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं। अंशुमान जी आकाशवाणी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: सबसे पहले तो अंशुमान भाई आप ये बताइए कि ये लवणीय मिट्टी होती क्या है, हमारे किसान भाइयों को आसान भाषा में बताइए।
2: जी बिल्कुल। जब हमारे फसल में अंकुरण जमाव यानी जिसे कहते हैं उसकी वृद्धि फसल की और उपज प्रभावित होने लगे सारे पोषक तत्वों को देने के बावजूद, तो किसान भाइयों मान लें आप लोग कि हमारी मृदा जो है लवणी है। इसे हम अगर वैज्ञानिक भाषा में कहें तो डेसी सीमेंस प्रति मीटर के रूप में नापते हैं, लेकिन किसान भाइयों आप लोग अगर मृदा जांच केंद्रों पर नहीं जा पा रहे हैं तो इसे सामान्य कुछ लक्षणों से पहचान कर सकते हैं। अगर कोई किसान अपने खेत के सतह पर सफेद चमकीली परत के रूप में देखे या फिर सिंचाई के बाद जमीन जो है ऊपरी सतह जमीन की जल्दी कठोर हो जा रही है।
0: अच्छा, अच्छा।
2: या फिर बीजों का असमान रूप से अंकुरण, यानी कि आप कोई बीज खेत में डाल रहे हैं तो कुछ बीज 2-3 दिन में जमाव दिखेगा लेकिन कुछ बीजों का जमाव 5-7 दिन में दिखेगा।
0: अच्छा।
2: तो इसका यह एक लक्षण है कि आपकी मृदा जो है लवणी मृदा है।
0: अच्छा अच्छा। इसका कुछ फायदा या नुकसान किस परिप्रेक्ष्य में किसान इसको देख सकता है?
2: किसान जो है कि लवणीय एक तरह से किसानों के लिए बाधा का ही विषय है, लेकिन इसे हम लोग अवसर के रूप में बदल सकते हैं वैज्ञानिक के उचित सलाह एवं मृदा जांच के बाद।
0: अगर मान लीजिए कोई

0: किसान भाई हैं वो
1: जी
0: मृदा जांच अक्सर वैसे तो कराते रहते हैं,
1: जी जी
0: लेकिन कभी वो मृदा जांच नहीं करा पाते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि वो ये तय नहीं कर पाते हैं कि यह फसल जो है हमारे इस मिट्टी के लिए उपयुक्त है, ये कैसे
1: जी
0: ऊपर जाने।
1: जी अगर आप देखेंगे कि कद्दूवर्गीय फसल जो होती है, जिसमें से आप करेला देखेंगे, लौकी देखेंगे, या फिर टमाटर चुकंदर की खेती जो है लवणी मृदा के लिए उपयुक्त होती है।
0: अच्छा
1: लेकिन अब शोध के माध्यम से, ICR इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप कुछ बीज प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आप लवणी सहनशील बीज भी जो है कि वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया जा रहा है, और आप मार्केट में देखेंगे तो कुछ उपलब्ध भी हैं।
0: अच्छा
1: अगर आपकी भूमि लवणी है तो उन बीजों का चयन खेती के लिए कर सकते हैं, जिससे कि आपकी खेती मुनाफे की होगी।
0: अच्छा, जैसे अंशुमान भाई आपने अपनी बताया कि ये ज़्यादातर
1: जी
0: नुकसान के लिए ही जाना जाता
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो हम ये पूछना चाहें कि लवणता जो है वो पौधों को नुकसान कैसे पहुंचा सकता है।
1: जी जैसे कि लवणी मृदा है तो सबसे पहले मिट्टी की ऊपरी सतह को कॉम्पैक्ट बना देती है, जिससे कि ऑक्सीजन सुचारू रूप से मृदा में नहीं संचारित हो पाता है। पहली एक घटना हो गई। दूसरी घटना यह है कि ज्यादा लवणी मृदा जब हो जाती है तो उसमें अगर पानी की, अगर नमी की कमी होती है तो वापस पौधे से ही खींचने लगती है,
0: अच्छा
1: जिससे कि पौधों में एक मुरझाना, जिसे कहते हैं गांव देहात की भाषा में,
0: हाँ सही
1: उस
0: बात
1: तरह से देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे कि अगर जल मिट्टी से पौधे में नहीं जा रहा है तो पोषक तत्वों का जो मिट्टी से हमारे पौधे के बीच में जाता है, उस एक तरह से रुकावट का काम करने लगेगा।
0: बाधा पहुंचाती हो।
1: जी जी
0: अंशुमान भाई, जैसे वैज्ञानिक से सलाह लेने के बाद किसान भाई अगर विचार बना लेते हैं
1: जी जी
0: कि हमें जो है इस लवणी मिट्टी को जो है एक संभावना
1: जी
0: सब्जी के खेती के तरीके से बनाया जा सकता है,
1: जी
0: तो हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करें या मिट्टी की तैयारी कैसे करें बुआई से पहले
1: जी
0: उसके।
1: यह एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर हम लवणी मृदा में खेती की बात करें तो ज्यादातर सबसे पहले किसानों को ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे फील्ड से जल की निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि लवणी मृदा, अगर जल जमाव भारी हो रही है आपके खेत में तो लवण की मात्रा जो है कि स्थिर खेत में रहती है, लेकिन अगर आपके जल निकास की व्यवस्था है तो कहीं ना कहीं लवणता की मात्रा घटती है। वहीं किसान को ये कोशिश करना चाहिए कि फसल बुआई से पहले एक समान रूप से समतल फील्ड तैयार करें।
0: अच्छा
1: कभी कभी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि हम लोग ऊसर भूमि के नाम से भी जानते हैं, तो कहीं कहीं आप उसमें फसल को देखेंगे कि अच्छा रहता है, कहीं कहीं खराब रहता है।
0: अच्छा
1: तो वो आप जो है कि मृदा का जो कि समतलीकरण अगर सही से नहीं करेंगे तो घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर आपके जो है कि खेत में अतिरिक्त जल का जमाव हो रहा है तो
0: जी
1: उसे जो है कि बाहर निकाल दें,
0: जी जी
1: और मृदा में ज्यादा से ज्यादा जैविक खादों का जो है कि मिश्रण करते रहें। जैविक खाद मिश्रण करने से मृदा की संरचना में सुधार होता है, मृदा की जल धारण करने की
0: ये
1: क्षमता
0: क्षमता बढ़
1: बढ़ती है,
0: जाएगी।
1: वहीं जो पौधा होता है उसके जड़ के लिए बेहतर वातावरण मिलता है।
0: बनाता है
1: जी।
0: जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। इसी के क्रम में अगर हम आगे बढ़ें, मान लीजिए खेतों की तैयारी तो हो गई, लेकिन बीज का चयन कैसे करें और बीज चुनाव करते समय क्या क्या सावधानी रखें।
1: जी, अगर आप लवणी मृदा में खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लवण सहनशील किस्म के बीजों का चयन करें। यह आप लोग अगर कहीं बीज भंडार में जाते हैं या फिर कृषि विज्ञान केंद्र पर जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को कहेंगे कि नहीं, हमें लवण सहनशील किस्म के बीज चाहिए, तो वहां पर उपलब्ध होता है।
0: अच्छा
1: और दूसरी बात सबसे ध्यान देने वाली यह है कि जिस बीज का अंकुरण प्रतिशत सर्वाधिक हो उस बीज का चयन आप हम कर सकते हैं लवणी मृदा के लिए, क्योंकि लवणी मृदा जो है अंकुरण को प्रभावित करती है। अगर हमारे बीज के अंकुरण प्रतिशत 90% या 80% से ज्यादा है तो वो हमारे लिए बेहतर साबित होगा।
0: अच्छा
1: और स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल भी कुछ बीज होते हैं। परिस्थिति का मतलब यह है कि आप किस जलवायु के रूप में हैं। अगर आप सोनभद्र की आप बात करें तो उसके अनुसार आप लोग बीज का चयन करें। कभी कभी किसान भाई, जैसे भिंडी की खेती है, जाड़े की खेती के लिए अलग किस्म भिंडी की बनी हुई है और गर्मी के लिए अलग बनी हुई है, और वहीं बरसात के लिए अलग।
0: अंशुमान भाई, हम एक चीज़ ये पूछना चाहेंगे
1: जी जी
0: कि जैसे अपने जनपद की बात अगर हो रही है, तो अपने जनपद की जो भौगोलिक स्थिति है वो काफ़ी असमान है। मारकुंडी के ऊपर की स्थिति कुछ और है,
1: जी
0: मारकुंडी
1: जी
0: के
1: जी
0: नीचे की स्थिति कुछ और है, तो
1: जी
0: ऐसे में हमारे किसान भाई भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर हमारे किसान भाई कौन कौन से सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं।

0: हम अक्सर देखते हैं कि अगर आपने कहा कि रावस्टसगंज साइड जो कि भौगोलिक रूप से ऊंचाई पर है, और उस क्षेत्र में अगर कर्मा बेल्ट या खैराही बेल्ट में देखा जाए तो सब्जियों की खेती बहुत तेजी से होती है, और बहुत सारे किसान वहाँ की ट्रेनिंग भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से भी ले रहे हैं, और KVK में भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, और स्टेट यूनिवर्सिटी भी है जो कि उनकी किसानों को ट्रेनिंग मुहैया करा रही है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कहने के मतलब कि उसमें टमाटर वगैरह, जैसे कर्मा की बात कर रहे हैं तो उधर
0: हाँ
1: टमाटर वगैरह की खेती बहुत अच्छे से होती है।
0: होती है
1: ये तो रही कि कैसे तैयारी करें खेत की, किस तरह के बीज का चयन करें। अब आती बात सिंचाई की,
0: जी।
1: तो सिंचाई प्रबंधन हम कैसे कर सकते हैं?
0: जी लवणी मृदा में हम ज्यादातर ड्रिप सिंचाई करें तो बेहतर होगी। कभी कभी किसान जो है कि जलाशयों का भी प्रयोग सिंचाई के लिए करते हैं। लवणी मृदा के लिए जलाशयों का जल प्रयोग करने से पहले उसे जांच कर लेना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है कि जलाशयों में जल अलग अलग जगहों से इकट्ठा होता है जो कि लवण को अपने साथ ला करके मिश्रित हो जाता है। कभी कभी लवणी जल भी होता है जो कि लवणी मृदा में जाता है तो उसकी मात्रा को और बढ़ा
1: बढ़ा
0: देता
1: देता
0: है।
1: है।
0: इसलिए किसान भाइयों को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी लवणी मृदा है तो एकत्रित जल जो जलाशयों से आप सिंचाई के लिए प्रयोग करें तो एक बार जल का भी जांच करा लें,
1: करा लें। कहने का मतलब कि चाहे जल की लवणता हो चाहे मृदा
0: मृदा
1: लवणता
0: की
1: हो,
0: लवणता
1: दोनों में संतुलन होना बहुत
0: संतुलन
1: जरूरी है,
0: होना, नहीं तो पौधों को नुकसान
1: नुकसान
0: पहुंचाएगा।
1: हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। एक जो मुख्य बात किसानों के मन में रहता है कि जैसे जो परंपरागत खेती करते चले आ रहे हैं
0: जी
1: उसकी अपेक्षा अगर हम लवणीय मृदा के माध्यम से जो सब्जियों की खेती अगर करना शुरू
0: जी
1: करें
0: जी
1: तो इनके आय में क्या वृद्धि हो सकती है या कमी हो सकती है?
0: जी यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका है। इसमें हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि आपकी मृदा लवणी है तो आप परंपरागत खेती करते आए हैं, जैसे कि आप धान लगाते हैं उसके बाद गेहूं की खेती करते हैं। इस अवधारणा को आप लोग कृषि वैज्ञानिकों की सहायता से उनके सलाह लेकर के बदलिए। अगर आप ज्यादा मुनाफा की खेती करना चाहते हैं तो भारत सरकार की तमाम योजनाएं आपको ट्रेनिंग के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं,
1: जी
0: और आप इसे सब्जी की खेती की तरफ ट्रांसफर करिए। अगर
1: बिल्कुल।
0: आप सब्जी की खेती की ओर परिवर्तित करते हैं इसे तो कहीं ना कहीं ये मुनाफे की तरफ आपको खेती ले जाएगी, क्योंकि सब्जी जो है कि ज्यादातर उत्पादन वाली फसल है और कम समय की फसल है, इसलिए कहीं ना कहीं किसान भाइयों को ज्यादा मुनाफा
1: मुनाफा
0: देगी।
1: हो सकता है,
0: जी
1: तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। और अंशुमान भाई, देखिए आपको आकाशवाणी रेडियो के माध्यम से बहुत से किसान भाई लोग आपको सुन रहे हैं, तो चलते चलाते हमारे किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: अंत में हम अपने किसान भाइयों को दो लाइन का संदेश देना चाहेंगे कि मिट्टी की सही जांच, सही फसल का चुनाव और संतुलित प्रबंधन, यही लवणी भूमि में मुनाफेदार सब्जी उत्पादन की पहचान है।
1: जी। तो देखिए किसान भाइयों, आज अंशुमान मौर्या जी जो कि कृषि शोध छात्र हैं आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में शोध कर रहे हैं, तो इनके माध्यम से कई तरीके की जानकारी आज हम लोगों को सुनने को मिली। लवणी मिट्टी में सब्जी फसलों की खेती की संभावनाओं और वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, और आपके सुझाव निश्चित रूप से सोनभद्र के किसानों को अपनी भूमि की क्षमता को समझने और बेहतर कृषि योजना बनाने में मदद कर सकती है। तो अंशुमान भाई, आपको इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: तो भैया देखें आपकी जानकारी जो अंशुमान मौर्य से भइल, लोणी मृदा में सब्जी उत्पादन संभव है पर विधिवत जानकारी मिलल, इनके बहुत बहुत धन्यवाद देवल जाए।
2: और लेकिन इतना अच्छा जानकारी के बाद जिन बा मौसम की भी जानकारी बा,
1: वे बात हाँ।
2: तो उनके जो तकनीकी रूप से का जानकारी मिलल बा,
1: सुनल जाए।
2: ओके सुनल जाए।
3: नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों, पिछले दो तीन दिनों में आप लोगों ने महसूस किया होगा कि गरज चमक के साथ, तेज हवा के साथ कहीं कहीं बारिश भी देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम अगले तीन चार दिनों की बात करें, प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार मौसम को लेकर कोई विशेष चेतावनी नहीं है। हालांकि स्थानीय मौसम में बदलाव संभव है और शाम में कहीं कहीं हल्की ठंडक महसूस हो सकती है। ऐसे मौसम में अगर हम फसलों की बात करें तो सबसे पहले

0: ये सब आपको पता है कि इस समय जो है कुल विकास हो रहा है और कहीं कहीं तुराई भी हो रही है, और पत्ता गोभी फूल गोभी की बात कर ले तो उसमें गोभी बनना शुरू हो गया है। तो बारिश के बाद क्या होता है ना कि खेत में अगर पानी जमा होता है तो वो इन सब सब्जियों के लिए ना बहुत नुकसानदायक होता है। ये जो है पत्तियों पर धब्बे, सफेद चूर्ण जैसे लक्षण फलों के सड़ने का संकेत होता है। तो ऐसे में क्या है ना कि सब्जी वाली फसलों की निगरानी करना बहुत जरूरी है, और जैसे ही आपको दिखे कि फसल तैयार है, सब्जी तैयार है, उसको तुरंत तुड़ाई करके मार्केट में भेज दें। और किसान भाई आप लोग, जैसे कि एक बात और, छोटी बातें होती हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि किसान भाई सोचते हैं कि भाई हम सब्जी की तुड़ाई उड़ाई कर लिए हैं शाम में ही और उसको यहाँ से बोरा वोरा में भर के रख दिए हैं तो हमको सुबह जल्दी मार्केट पहुंच जाएगा। लेकिन भाई इसमें आप लोग देखे होंगे कि भाई आप सब्जी की तुड़ाई करके कोस लगा हुआ भर देते हैं बोरे में और सुबह जब उसको खोलते हैं तो सब्जियां जो है कुछ हद तक खराब हो जाती हैं। तो आप पूरा मेहनत आपका जो है फालतू चला जाएगा, इसलिए इन सब चीजों की जो है विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और इसी क्रम में अगर हम बात करें दूध वाली पशुओं की, तो किसान भाई चूंकि मौसम बदल रहा है इसलिए पशुओं को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो इसी क्रम में पशुशाला को साफ रखें, सूखा और हवादार रखें और संतुलित आहार खिलाएं, जिससे कि होता नहीं कि भाई अगर आपकी पशु दुधारू है, दूध दे रही है लगातार, तो उसमें उसकी दूध को मात्रा को बढ़ाने के लिए जो उचित आवश्यक पोषक तत्व है उसको देंगे तो आपको दूध जो है स्वस्थ मिलेगा और अधिक मिलेगा और आपको उसका फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।
1: तो अश्लू भैया देखें इतना बढ़िया मौसम के जानकारी भर, तो मौसम के साथ साथ बाजार भाव की भी जान ले जाए
2: बिना देर के लिए बाँचे
1: दो बिल्कुल के? तो देखें लाल आलू 1200 रुपए प्रति क्विंटल में भैया और पुनवासी चौहान भैया भिजले हुआ, और सफेद आलू जो है कि 900, प्याज 4500, टमाटर 4000 रुपया, बोड़ा 3000 रुपया, कोड़ा 1500, अरुई 2500, बंडा 2500, लंबा बैगन 1800 और गोल बैगन 3000 रुपया, परवल 6000, लौकी 2200, करेला 3000, भिंडी 2000, डिनुआ 2500, कुंडरू 1800, तोरई 3000 रुपया, और जन बाकी मुरई 4000, हरी मिर्च 5000, लहसुन 1100, धनिया 20000 रुपए भैया बढ़िया बा, और पालक देखें 4000 रुपया, अदरक 10000 रुपया, सूरन 3800, और खिक्सा 10000, खीरा 3000, मकई 1500, पपीता 1500, गाजर 3000, शिमला मिर्च 6000, चुकंदर 3000 और करौंदा 4000, कच्चा केला 1500 रहा, और सैकड़ा के भाव देखा जाए तो फूल गोभी 3500, पत्ता गोभी 3000 और निबुआ रहा 500 रुपये प्रति सैकड़ा।
2: सैकड़ा तो ये तो बाजार भाव मधुपुर मंडी का, तो पुनवासी भैया के दिया जाए धन्यवाद
1: बिल्कुल। और देखे मौसम बदला था भैया, तो अपन स्वास्थ्य का भी ध्यान हमेशा रखल जाए ताकि हम लोग अपन खेती बाड़ी हो चाहे अपने परिवार का देखभाल बढ़िया से कर सकी जा
2: सके, यही आशा के साथ आज अपन पंचायती
1: समेटल जाए। चले
2: सब पंचन के
1: राम राम।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं लता मंगेशकर को।

फिल्म चांदनी में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। इस गीत को संगीत दिया था शिवहरि ने और शब्द रचना थे आनंद बख्शी की। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनाते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में।

जख्म इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक को, और इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। FM 102.7 पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से। शाम के 7:05 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं डॉक्टर मन्नू यादव और इनके साथी। आइए सुनते हैं इनके स्वर में सबसे पहले कहरवा।

इसी के साथ कार्यक्रम लोकगीत अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये उभरा केंद्र है FM 102.7 पर। अब से कुछ ही मिनट में अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव समेत 39 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दीपावली और होली पर एक एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल की योजना रहेगी जारी। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य जीते। और झांसी में कल से शुरू होगी 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। 3 डिवीजन की 29 टीमें लेंगी हिस्सा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में विकास, औद्योगिक निवेश, कृषि, रोजगार, तकनीक और जन कल्याण से जुड़े 39 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव भी पारित किया गया। कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री की 25 वर्षों की यात्रा सेवा, समर्पण और राष्ट्र प्रथम की भावना से संचालित रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नए आत्मविश्वास के साथ चतुर्मुखी प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
1: कर्मियों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नए आत्मविश्वास के साथ चतुर्मुखी प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उत्तर

0: प्रदेश मंत्रिपरिषद इस बात के लिए सदैव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आभारी रहेगी कि उन्होंने राज्य के विकास को निरंतर अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच से आज उत्तर प्रदेश विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी का नया मॉडल बनकर उभरा है।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री की ओर से उत्तर प्रदेश को मिली एक बड़ी सौगात है। ये एयरपोर्ट आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था, उद्योग, पर्यटन और वैश्विक कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। इसी भावना के साथ कैबिनेट ने एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किए जाने का प्रस्ताव पारित किया है।
0: उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री जी की आभारी है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर की सौगात दी, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट एवं भविष्य में देश का सबसे बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है। अतः यह मंत्रिपरिषद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा जेवर रखने का प्रस्ताव भी पास कर दी।
1: कैबिनेट बैठक में दीपावली और होली पर एक एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल देने की योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती संबंधी नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। बैठक में प्रदेश की नगरीय परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसके तहत लखनऊ, कानपुर सहित प्रदेश के 18 शहरों में ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मॉडल पर 1725 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर भदोही किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
2: जनपद भदोही में भारतीय संत परंपरा के महत्वपूर्ण संत एवं समाज सुधारक के रूप में प्रतिष्ठित संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के द्वारा किए गए सामाजिक एवं सांस्कृतिक योगदान के दृष्टिगत उनकी स्मृति एवं सम्मान में जनपद भदोही का नाम परिवर्तित किए जाने पर विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि जनपद का नाम संत रविदास नगर भदोही रखा जाए। आखिर में उनकी दी गई विशेष बात यह है कि उनका नाम भी रहेगा संत रविदास जी का, भदोही भी रहेगा।
1: बैठक में ब्याज माफी योजना 2026 लागू करने और खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 की धान क्रय नीति को भी मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 10 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य शामिल हैं। आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। राज्यसभा सदस्यों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होना था। भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित सदस्यों में धर्मपाल सिंह, राम प्रकाश पाल, श्रुति गंगवार, विद्यासागर सोनकर, प्रियंका सिंह रावत, राधाकांत ओझा, गोपी कृष्ण पांडे और राम प्रताप सिंह शामिल हैं। समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव और धनराज नाथवानी राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 10 अक्टूबर को होने वाले सीजेपी विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में मेट्रो और रेल सेवाएं पूरी तरह बंद न की जाएं। ये निर्देश दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास बंद करने और रेलवे के कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द करने के फैसले के बाद आया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से जारी रहनी चाहिए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के प्रयासों से लोगों का जीवन बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आप जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को नीति आयोग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।
3: नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से योजना आयोग का स्थान लिया।

0: इसे वित्तीय आवंटन करने वाली संस्था के बजाय एक नीति निर्माण संस्था के रूप में तैयार किया गया है। नीति आयोग 3 प्रमुख माध्यमों के जरिए काम करता है। वर्ष 2017 में नई दिल्ली में नीति आयोग की तीसरी गवर्निंग काउंसिल शासी परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस मंच के माध्यम से केंद्र और राज्य एक टीम के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं।
1: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति बदलते वैश्विक परिदृश्य में देश के भविष्य को तैयार करने को, देश को सशक्त करने का एक बहुत ही उचित मंच है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देश के लिए नीतियां तैयार करते हैं।
0: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा कि नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद को मजबूत करता है।
2: नीति आयोग का लक्ष्य है कि भारत में ट्रांसफॉर्मेशन लाए और ये जो हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलके एक कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म करे, उसमें कोऑपरेशन भी करे, कॉम्पिटिशन भी करे और आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग करे।
0: नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक और केंद्र राज्य संवाद के मुख्य मंच के रूप में कार्य करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: झांसी में कल से 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 शुरू होगी। इसमें 3 डिवीजन की कुल 29 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट का समापन 21 अक्टूबर को होगा। उत्तर प्रदेश हॉकी के अध्यक्ष और खेल निदेशक डॉ आरपी सिंह ने आज लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि उत्तर प्रदेश को इसकी मेजबानी मिलना गौरव की बात है।
4: उत्तर प्रदेश तो सदैव खेलों को दुनिया में विकास कर रहा है और उसी के सापेक्ष हमने वो राष्ट्रीय चैंपियनशिप ले लिया, जिसका कल उद्घाटन हो जाएगा 10 तारीख को और 21 अक्टूबर को उसका समापन किया जाएगा।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव समेत 39 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। अब नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दीपावली और होली पर एक एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल की योजना रहेगी जारी। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित। भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य जीते। और झांसी में कल से शुरू होगी 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप। 3 डिवीजन की 29 टीमें लेंगी हिस्सा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।
1: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.7 पर।

शाम के 7:31 हो रहे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं सपना अवस्थी और सुदेश भोसले को, और इस गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने। तो चलिए क्रांतिवीर का फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
4: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
5: हेलो,
3: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
4: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
3: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
4: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
3: ओनली ऑन AIR ओबरा।

अग्नि साक्षी इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति को। इस गीत को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म कोहराम से, हरिहरन और अलका याग्निक की आवाजों में। संगीत है दिलीप सेन समीर सेन का।

0: अंकुश इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे पूर्णिमा को, और संगीत दिया था कुलदीप सिंह ने। आकाशवाणी उपले से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

परिंदा इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और सुरेश वाटकर को। इस गीत को संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। और इसी के साथ कार्यक्रम सब रस अब समाप्त होता है।

FM 102.7 पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है और रात्रि के 8 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
1: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
2: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
0: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Why ऑफ SBI,
2: आपका साइबर रक्षक।
3: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
4: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे।

0: म्यूजिकल रिदम के साथ।
1: हेलो,
2: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
0: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
2: डायल करिए 0544529710 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
0: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।

आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है एफएम 102.7 पर। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कुछ दिल ने कहा, आइए इस फिल्म में सुनते हैं उदित नारायण को। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत है निखिल विनय का।

मुझसे दोस्ती करोगे कार्यक्रम का अगला गीत इस फिल्म से लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल है और संगीत है राहुल शर्मा का।

वो लम्हे इस फिल्म में आप अभी सुन रहे थे ग्लेन जॉन को। सईद कादरी के बोल थे और संगीत था प्रीतम का। और इसी के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है एफएम 102.7 पर। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: शब्द रचना जावेद अख्तर के थे और आप सुन रहे थे जगजीत सिंह को।
1: आपके 4,800 रिवॉर्ड पॉइंट्स आज एक्सपायर हो रहे हैं, अभी रिडीम करें।
2: अरे वाह, मेरे इतने पॉइंट्स कैसे आए?
3: बस यही पूछो Why? रिवॉर्ड पॉइंट्स के नाम पर आए किसी अननोन लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचिए। एक Why आपको फ्रॉड से बचाए।
1: हमेशा पूछो WHY, Why? कहता है कैप्टन Y ऑफ SBI,
3: आपका साइबर रक्षक।

शब्द रचना इब्राहिम अश्क के थे और आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह को। इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। तमिलगा वेत्री कड़गम ने भी तमिलनाडु में विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटें जीती। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने पुदुचेरी में एक सीट पर जीत हासिल की। असम के नौगांव लोकसभा क्षेत्र में भी भाजपा विजय रही। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशन कल तक बंद रहेंगे। नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच आने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द की गई। भारत ने कहा, स्थायी श्रम प्रमाणन कार्यक्रम पर अमरीकी फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवीपिल्ले को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और रांची में भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में 3 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तमिलगा वेत्री कड़गम ने 2-2 तथा ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल कर ली है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल की रेजी नगर और नंदीग्राम में जीत हासिल की। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कड़गम TVK ने दारापुरम और मधुरांतकम में जीत हासिल की। पुदुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजय रही। असम के नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजी नगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। श्री मोदी ने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। उन्होंने पुदुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जीत लोगों की भलाई और उनके बेहतर भविष्य के लिए काम करने में पार्टी को और मजबूती देगी। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।

0: आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इनमें राजीव चौक, लोक कल्याण मार्ग, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ, पटेल चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस सहित कई स्टेशन शामिल हैं। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को छोड़कर बाकी सभी संबंधित स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं दिल्ली में सराय काली खां और न्यू अशोक नगर नमो भारत स्टेशन आज रात 9 बजे से कल रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। इस दौरान दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं तय समय पर सुचारू रूप से चलेंगी। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। शंकर रोड वंदे मातरम टी पॉइंट से नई दिल्ली की ओर जाने वाले गोल चक्करों, झंडेवाला, पंचकुइया मार्ग, मंडी हाउस, अशोक रोड से जंतर मंतर रोड, विंडसर पैलेस और टॉलस्टॉय मार्ग से जनपथ क्रॉसिंग तक के लिए मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। यात्रियों को पहले से यात्रा की योजना बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि स्थायी श्रम प्रमाणन पर्म कार्यक्रम के संबंध में अमेरिका के फैसले से दोनों देशों की साझा महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने में मुश्किल होगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रतिभाओं का आवागमन भारत और अमेरिका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय पेशेवरों को अवसर मिलते ही हैं, साथ ही अमरीकी कंपनियों को भी अत्याधुनिक प्रतिभा, नवाचार, अनुसंधान, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और रोजगार सृजन के माध्यम से समान रूप से लाभ मिलता है। श्री जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पर्म कार्यक्रम H-1B वीजा से अलग है।
2: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्म H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। पर्म आवेदनों का निलंबन अपने आप में मौजूदा H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों डिपेंडेंट्स यानी की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि प्रभावित कंपनियां के योग्य कर्मचारियों की स्थायी निवास अथवा ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है।
1: श्री जायसवाल ने अमरीका के उपराष्ट्रपति J.D. वेन्स की गैर अमरीकी कामगारों पर टिप्पणियों को अनुचित बताया।
2: हम मानते हैं कि इस तरह के वर्णन अवांछित हैं और उस तथ्य को नजरअंदाज करते हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना इतिहास पीढ़ियों से आए उन प्रवासियों द्वारा गढ़ा गया है जिनके श्रम, उद्यम और नवाचार ने उसकी वृद्धि और समृद्धि में योगदान दिया है। ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना जिससे दुखद ऐतिहासिक और उपनिवेशिक विरासत के संदर्भ जुड़े हों अत्यंत आपत्तिजनक है।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत में किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की अनुमति नहीं है। देश में स्टारलिंक को संचालन लाइसेंस पर कांग्रेस के रुख की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार राजस्व साझा किए जाने के आधार पर कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी।
3: There are three parties that have got licenses.
4: तीन कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस दिए गए हैं। इनमें रिलायंस जियो, वन वेब और स्टारलिंक शामिल हैं। राजस्व शुल्क से जुड़ी व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तीनों कंपनियों को अलग अलग निर्धारित शर्तों और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, साथ ही सभी जरूरी प्रक्रियाओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद ही प्रत्येक कंपनी परिचालन शुरू कर सकेगी।
3: Done by each one of them individually.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 साल पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को हकीकत में कैसे बदला जा रहा है।
1: सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक की नींव है और किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक अहम आधार है। इनका इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूरसंचार, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा और आधुनिक विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में होता है। पिछले दो वर्षों में वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में 20% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में 6 राज्यों में 12 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है। नई दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
2: भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आईटी विशेषज्ञ प्रसून शर्मा ने कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा अब केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा जा रहा है।
3: सेमीकंडक्टर जर्नी,
4: भारत अब सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में केवल उपभोक्ता और डिजाइनर बने रहने के बजाय चिप निर्माण और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर तकनीक को AI, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक ऑटोमेशन जैसे क्षेत्रों से जोड़ना भी है।
3: इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन,
1: भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में रणनीतिक क्षमताएं विकसित करने से लेकर एक व्यापक घरेलू इकोसिस्टम तैयार करने तक का बदलाव आया है। इन प्रयासों से भारत सेमीकंडक्टर के हर क्षेत्र में काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से निरंतर कौशल उन्नयन और उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुकूल ढलने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में विश्व कौशल प्रतियोगिता में शामिल भारतीय टीम के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने ये बात कही।
5: हमने अपने आप को भी टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, विश्व में जो नए नए बदलाव आ रहे हैं, बदलाव की दृष्टि से अपने आप को ढालना पड़ता है। आपके पास क्या है, कितनी डिग्रियां हैं, उसका अपना महत्व है ही, लेकिन आपको आता क्या है, उसका जवाब है स्किल। जीवन में कोई न कोई स्किल होना चाहिए, तब जाकर के आप काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: चीन में 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में टीम इंडिया ने 6 रजत पदक और उत्कृष्टता के लिए 20 पदकों के साथ 10वां स्थान हासिल किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायविद नवनीतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज के दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से तय नहीं होती, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आधुनिक सैन्य उपकरणों के एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में उभर रहा है। रांची में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 250 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 249 रन बनाए। संजू सैमसन ने 82 रन की पारी खेली। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा है कि वर्तमान अल नीनो की स्थिति और तेज होने की संभावना है। संगठन के नवीनतम मासिक वैश्विक मौसमी जलवायु अपडेट के अनुसार इसके कारण दुनिया के अधिकांश हिस्सों में औसत से अधिक तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव की संभावना है। इससे विभिन्न क्षेत्रों में सूखे और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा।

आकाशवाणी का ये उबरा केंद्र है एफएम 102.7 पर। रात्रि के 9:15 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और संगीत है ओपी नैयर का। तो आइए फिल्म सीआईडी में सुनते हैं शमशाद बेगम को।

सत्यनिष्ठा अपनाएं, भ्रष्टाचार मिटाएं, मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। सत्यनिष्ठा से समृद्धि NTPC रिहंद द्वारा आयोजित त्रैमासिक जागरूकता अभियान के अंतर्गत जनहित में प्रसारित।

साहिर लुधियानी के बोल थे और संगीत था एन दत्ता का धर्मपुत्र। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले को। कार्यक्रम का अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं एक बार फिर से आशा भोसले की आवाज में। फिल्म का नाम है उमराव जान। शब्द रचना शहरयार के हैं और संगीत है खयाम का।

उमराव जान। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले को। शब्द रचना शहरयार के थी और संगीत दिया था खयाम ने। और इसी के साथ कार्यक्रम भोले बिसरे गीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। अब से कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे करंट अफेयर्स।

हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.7 पर और रात्रि के 10 बज रहे हैं। श्रोताओं, संगीत की दुनिया में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें न मुलाकात की जरूरत होती है और न पहचान की, बस एक पसंदीदा गीत और बीच की दूरी बस मिट जाती है। और इसी भावना के साथ हम हाजिर हैं आपके ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी में, और मैं हूं कार्यक्रम में आपके साथ रानी राजश्री। अगले एक घंटे तक आपकी ईमेल से मिली फरमाइशी गीतों के साथ हम साथ होंगे, और आप भी अगर अपने पसंद के गीत इस कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं और अपने विचारों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं अपने पसंदीदा गीतों को, तो अपना पूरा नाम, पता और अपने पसंद के गीत के बारे में बताते हुए हमें मेल करें इस आईडी पर akashvaniobra@gmail.com, यानी कि akashvaniobra@gmail.com। तो आइए अब शुरू करते हैं गीतों के इस खूबसूरत कारवां को, सुनते हैं फरमाइशी गीतों का ये कार्यक्रम। श्रोताओं, आपका ईमेल पढ़ते ही लगा कि कुछ रिश्ते दूरी से नहीं एहसासों से जुड़े होते हैं। आपके संदेश में छुपी भावनाओं को अब सुरों का साथ देने का समय है, तो आइए आपकी फरमाइश और आपके जज्बातों को एक खूबसूरत नगमे के हवाले करते हैं। तो इस गीत के लिए जो फरमाइश आई है वो आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, और हमें मेल किया है दिनेश वर्मा जी ने, और इनके साथ सुनना चाहा है इस गीत को करुणा वर्मा जी ने।

श्रोताओं, ईमेल की दुनिया भले ही कुछ शब्दों में सिमट जाती है, लेकिन उन शब्दों के पीछे भावनाओं की पूरी कहानी होती है। कभी कोई गीत याद बनकर आता है तो कभी किसी अपने की आवाज बन जाता है। ऐसी ही एक प्यारी फरमाइश हमारे पास आई है और वो हमें भेजा है डिलारी रोड मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख अताउर रहमान और शेख हबीबुर रहमान जी ने। तो चलिए अब इस एहसास को संगीत में महसूस करते हैं और सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, सुरों का यह खूबसूरत सफर जारी है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी केवल आकाशवाणी ओबरा एफएम 102.7 पर। आपकी ईमेल से सजी यह संगीत महफिल आपका ही इंतजार कर रही है, तो अपनी फरमाइश भेजना न भूलिए इस आईडी पर akashvaniobra@gmail.com यानी कि akashvaniobra@gmail.com पर। आप हमारे साथ अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, अपने पसंदीदा गीतों को सुन सकते हैं और साथ ही साथ अपने विचारों, अपने गीतों को किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। तो हमें इस ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सोमवार और शुक्रवार को रात्रि 10 बजे से। कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी से जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम में अब जो अगली फरमाइश हम शामिल करने जा रहे हैं, जो हमें बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश, अंजनी रोशनी सारवा, बेबी ख्याति सारवा ने भेजा है और साथ ही सुनना चाहा है डोंडी लोहारा जिला बालोद से देवशंकर तामुरिया, प्रभा देवी तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी पूजा राधिका, पोता मास्टर अलकबीर। और आपने अपनी फरमाइश के माध्यम से प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता नाना पाटेकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहा है, तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद पर फिल्म गमन का ये गीत, जिसे गाया है सुरेश वाटिकर ने।

तो चलिए कार्यक्रम के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला ईमेल अब शामिल करते हैं, जो आया है गांव शोभापुर मेरठ कैंट से और सुनना चाहा है दिग्दर्शन गौर और कविता गौर जी ने, और साथ ही साथ इनके मित्रगण दिव्यांशु यादव, संजय ढिंगिया, अनिल जैन, राधा नामदेव और दर्शन भाई। और आपने अपनी इस गीत के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर जी को अर्पित करना चाहा है, और आपकी ये बात कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, वाकई आकाशवाणी ओबरा परिवार की ओर से भी हमारी भी यही कामना है। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म दुश्मन का ये गीत।

किसी ने अपने दिल की बात लिखी, किसी ने किसी खास के नाम गीत भेजा और किसी ने पुरानी यादों को फिर से जीने की फरमाइश की। सच कहें तो गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, उन्हें महसूस भी किया जाता है। तो आपकी इसी खूबसूरत फरमाइश को आगे बढ़ाते हुए पेश है फिल्म तिरंगा का ये गीत, और इसके लिए फरमाइश आई है पलारी छत्तीसगढ़ से, जिसे भेजा है नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन, कृष्णा देवांगन, और साथ ही कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा। और इसी गीत के लिए फरमाइश आई है डेर पाटन गुजरात से धीरज वी रबारी जी की, और साथ ही फरमाइश आई है गांव फरांसी जिला हिसार से, और सुनना चाहा है राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी ने। तो चलिए आप सभी की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म तिरंगा का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला ईमेल जो हम अब शामिल करने जा रहे हैं वो आया है जिल्हा नादेड यताला महाराष्ट्र से और सुनना चाहा है इस गीत को शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल। और आप सभी को आपकी फरमाइश का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे ना थे।

और साथ ही साथ इस खूबसूरत गीत के लिए हम शामिल करने जा रहे हैं अजित कसाना जी को, साथ ही साथ माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, लदावली जिला मुरादाबाद से। तो आइए आप सभी को सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये गीत।

0: म्यूजिक गैलरी केवल आकाशवाणी ओबरा FM 102.7 पर आपकी ईमेल से सजी यह संगीत महफिल आपका ही इंतजार कर रही है, तो अपनी फरमाइश भेजना न भूलिए इस आईडी पर akashvaniobra@gmail.com यानी कि akashvaniobra@gmail.com पर। आप हमारे साथ अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, अपने पसंदीदा गीतों को सुन सकते हैं और साथ ही साथ अपने विचारों अपने गीतों को किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। तो हमें इस ईमेल आईडी पर मेल करें और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं सोमवार और शुक्रवार को रात्रि 10 बजे से।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
1: डायल करिए 05445297100 मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
0: कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हम जो ईमेल शामिल करने जा रहे हैं, मन की लोरमी छत्तीसगढ़ से हमें भेजा है नारायण खांडे, रजनी खांडे, तुषार खांडे और समीर खांडे जी ने। और साथ ही साथ इस गीत के लिए हम शामिल करने जा रहे हैं यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खट से और विनोद खट से जी को। और साथ ही साथ इस गीत के लिए हम शामिल करने जा रहे हैं ग्राम लसूटिया पाता, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी। तो चलिए आप सभी को हम सुनवाते हैं फिल्म संघर्ष का ये गीत।

आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी और कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो हम सफर रानी राजश्री। कार्यक्रम में अगली फरमाइश के लिए जो हम मेल शामिल करने जा रहे हैं वो आया है पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से, जिसे भेजा है राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। तो चलिए आप सभी को आपकी फरमाइश का ये गीत हम सुनवाते हैं, शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। फिल्म का नाम है मेरा घर मेरे बच्चे।

आकाशवाणी ओपरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी और मैं हूं आपके साथ आज इस सफर में रानी राजश्री। कार्यक्रम की अगली जो फरमाइश आई है वो आई है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से और सुनना चाहा है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, कैथल, डॉक्टर अमनदीप। साथ ही साथ कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। तो चलिए आप सभी की फरमाइश पर आपके रेडियो सेट पर ये गीत।

0: श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपके मन पसंद गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपकी भावनाओं को नई अभिव्यक्ति दी होगी। यदि आप भी अपने प्रियजनों के लिए कोई पसंदीदा गीत डेडिकेट करना चाहते हो या फिर अपनी यादों से जुड़ा कोई गीत हमारे साथ साझा करना चाहते हो तो हमें मेल करें। हमारा ईमेल आईडी है akashvanioobra@gmail.com। आपका हर ईमेल हमारे लिए अनमोल है और आपकी फरमाइश हमारे इस संगीत सफर को और भी आत्मीय बनाती है। अपनी फरमाइश हमें इस ईमेल पते पर भेजिए। हो सकता है अगली बार आपके नाम और आपकी पसंद का गीत इस मंच के माध्यम से आप सुन सकते हैं। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपनी रेडियो साथी रानी राश्री को। नमस्कार। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ईमेल के माध्यम से आपकी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक गैलरी। आकाशवाणी का ये ओबरा केंद्र है FM 102.7 पर। अब से कुछ ही पलों में यानी कि रात्रि के 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने भी दारापुर और मदुरांतकम में सीटें जीत ली हैं। पुद्दुचेरी की तट्टान चावड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस विजयी रही। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भाजपा के देवाशीष शर्मा ने जीत हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि असम के नौगांव और पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम तथा रेजीनगर के चुनाव नतीजे दिखाते हैं कि लोगों का भाजपा एनडीए के सुशासन पर भरोसा है। उन्होंने भाजपा उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। श्री मोदी ने पुद्दुचेरी के तट्टान चावड़ी में जीत के लिए एनडीए की सहयोगी पार्टी AINRC को भी बधाई दी। आज शाम विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर लगे आरोपों के सिलसिले में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने मांग की है कि EVM का इस्तेमाल बंद किया जाए और चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने इस मामले में सबूत मांगे हैं और वे उन्हें सबूत सौंपेंगे। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर कल प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध प्रदर्शन को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। संयुक्त पुलिस आयुक्त नुपुर प्रसाद ने कहा कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन या किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन देना अनिवार्य है।
2: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
1: सुश्री प्रसाद ने कहा कि CJP ने पहले भी पुलिस के दिशा निर्देशों और खुद के आश्वासनों का पालन नहीं किया था। पुलिस ने कानून व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से आज रात 9 बजे से कल तक 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने का निर्णय लिया है। इधर रेल मंत्रालय ने कल सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को कल कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली मेट्रो और रेल सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं करने का निर्देश दिया है। न्यायालय की पीठ ने कहा है कि यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन सेवाएं नियंत्रित तरीके से चलनी चाहिए। न्यायालय ने कहा है कि सुरक्षा के लिए सेवाओं को नियंत्रित करना और उन्हें पूरी तरह बंद करना अलग अलग बातें हैं। भारतीय मूल की दक्षिण अफ्रीकी न्यायवेद नवीनतम नवी पिल्लई को शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुश्री पिल्लई संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ मानवाधिकारों और समानता को बढ़ावा देने के लिए काम किया। हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन कल से झांसी में किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 21 अक्टूबर तक चलेगी। प्रतियोगिता के तीन डिवीजनों में 29 टीमें मुकाबला करेंगी। डिवीजन ए का फाइनल मुकाबला 21 अक्टूबर को होगा। देश भर की हॉकी टीमों के बीच 10 अक्टूबर से वर्चस्व की लड़ाई होगी। इस संस्करण में डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी होंगे, जिसमें टीमों को पिछले संस्करण की रैंकिंग के अनुसार समूह में बांटा जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.7 पर। रात्रि के 11:05 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 4 बजे अपने कार्यक्रमों के साथ हम

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की अमावस्या तिथि। तदनुसार 10 अक्टूबर 2026 प्रातः के 4:03 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 4:08 हो रहे हैं। प्रस्तुत है महिषासुर मर्दिनी।

0: 天也大也大把他当那不他不的写的大大大大不对的呀很可的下目的上下样
1: पूर्व कल्प के अवसान के पश्चात प्रलय काल में जब समस्त संसार कारण सलिल में परिणत हुआ तब भगवान विष्णु ने अपनी संपूर्ण शक्ति प्रभाव संग्रहित कर कारण समुद्र में मंडित ग्रहण की अनंत शैया योग निद्रा में मग्न हो गए। भगवान विष्णु की योग निद्रा के अवसान पर नाभि कमल से जाग उठे वावी कल्प के सृष्टि विधाता ब्रह्मा, परंतु विष्णु के कर्णमल से उत्पन्न मधुकैटभ असुर

सर्वशक्तिमान विश्व पिता विष्णु को जागृत करने हेतु जगत की स्थिति संहार कारिणी विश्वेश्वरी जगत जननी हरिनेत्र निवासिनी निरुपमा भगवती को सवन मंत्रों के द्वारा उद्बोधित करने का उपक्रम किया।

स्वाहा वन स्वधा वन ही वशत्कार स्वरात्मिका सुधा त्वम शरीरित्ये त्रिधामत्रात्मिका स्थिता अर्धमत्रा स्थिता निव्या यानि चर्या विशेषतः त्वमेव सा त्वं सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वैव धार्यते सर्वं तवैतत्सृज्यते जगत् तवैतत्पाल्यते देवी त्वमस्यन्ते च सर्वदा विसृष्टौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा सकृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्महे महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्वञ्च सर्वस्य गुणत्र विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रि गोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वविश्वरी त्वं ह्री त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि त्वं शान्ति इक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाण भूषुणी परिघायुधा सौम्य सौम्यतराशेष सौम्य सरस्वती सुन्दरी।

तामसी देवी सबन से प्रबुद्ध हो, विष्णु के अंग प्रत्यंग से बाहर प्रकट हो आई, भंग हुई भगवान विष्णु की योग निद्रा। तत्काल उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया और छिन्न कर डाला मधु कैटव का मस्तक। ब्रह्मा पुनः ध्यान मग्न हो बैठे, इधर दुर्धर्ष दैत्यराज महिषासुर के पराक्रम से परास्त हो देवतागण स्वर्गाधिकार से वंचित हुए, अत्याचारों से

कारण ब्रह्मा के वरदान से ही था महिषासुर अपराजेय। उनके द्वारा दैत्यराज का क्षय असंभव जान उनके निर्देशानुसार देवताओं ने कमल योनि ब्रह्मा जी को अपना प्रतिनिधि बना वैकुंठ में जा देखा। भगवान विष्णु और देवाधिदेव भगवान शिव परस्पर आलाप मग्न है। ब्रह्मा जी ने अपने मुख से कह सुनाई महिषासुर के दुर्विषह अत्याचार की करुण कहानी। स्वर्ग भ्रष्ट देवताओं

आप सुनते ही परम शांति योगीवर महादेव का सुगौर मुखमंडल क्रोध से रक्त कमल के समान लाल हो उठा। शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण की तन गई भृगुतियां।

महाशक्ति के आह्वान से आकाश में निनादित हो उठे महाशंख। विश्व योनि विष्णु और महारुद्र के शरीर से प्रस्फुटित हो निकली तेज की परम ज्योति। ब्रह्मा और देवगण के मुखमंडलों से निकल चला तेज। पर्वत प्रमाण ज्योति पुंज ने प्रज्वलित उताशन के तुल्य। देवी प्रमाण किरणों से दिग्मंडल को पूर्ण कर दिया। तेज रश्मिया एकत्रित हो परमा सुंदरी रूपवती दिव्य देवी मूर्ति में परिणत हुई। जगन मातृका महामाया के दर्शन कर

है तथापि देवगण के कार्य सिद्ध हेतु सर्वदेव शरीर तेज पुंज से प्रकाशित उनका अभिनव आविर्भाव हुआ महिषमर्दिनी रूप में। देवी सज्जिता हुई विचित्र रूपा रणचंडी रूप में। हिमाचल ने सिंह वाहन दिया विष्णु ने चक्र पिनाकपाणि शंकर ने शूल यम ने दंड कालदेव ने सुतीक्ष्ण खंग चंद्र ने अष्टचंद्र शोभा से युक्त चर्म सूर्य ने धनुर्बाण विश्वकर्मा ने अभेद वर्म ब्रह्मा ने अक्षमाला और कमंडल कुबेर ने रत्न हार दे डाला। सभी देवताओं ने महादेवी को नाना अलंकारों से अलंकृत एवं विविध प्रहरणों से सुसज्जित कर उनसे असुर विजय यात्रा के निमित्त प्रार्थना की। रणगुंद विध्वनि से विश्व चराचर निनादित हो उठे। यात्रा के पूर्व सुरनर लोकवासियों ने

अष्टादश भुजी सिंह वाहिनी मूर्ति का परिग्रह धारण कर फूका अपना शंख, देवी के रणाह्वान का अनुसरण कर ससैन्य दौड़ पड़ा महाबलशाली महिषासुर। असुर राज देख स्तंभित हुआ, तेजस्विनी महालक्ष्मी की तेज प्रभा से त्रिलोक ज्योतिर्मय हो उठे। उनका मुकुट आ

माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते। मयूर कुक्कुट वृजे महाशक्ति धरे नघे कौमारी रूप स्थाने नारायणी नमोस्तुते। शंकर